आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि। तदनुसार 10 जुलाई सन 2026 ईस्वी प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: तो भी सस्ता जान सद्गुरु प्राप्त करब कतेक दुष्कर अछि, ई एहि कथन सँ स्पष्ट। गुरु तखने प्राप्त भ सकै छथि जखन कि मनुष्य अहंकेर त्याग कऽ दिया। शीश दिए कहबा सँ महात्मा कबीरक यह अभिप्राय छनि जे शिष्यकेँ गुरुक प्रति पूर्ण समर्पण भाव हेबाक चाही, तखनहि शिष्य गुरुसँ किछु प्राप्त कऽ सकै छथि। एकठाम आर संत कबीर कहै छथि,

0: जब मैं था तब गुरु नहीं, गुरु है तो हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाही। जावत स्व अथवा अहंकार परित्याग नहीं कह देल जाय छ, ताबत गुरुक कथन में शंका व संदेहक पूर्ण संभावना बनल रहे छ। श्रवणेन्द्रिय द्वारा ओ ग्रहण त कैल जाय छ, किंतु मनः पटल पर ओ स्थायी नहीं भ सके छ। गुरुक कथनक प्रति अस्ति नास्तिक द्वंद्व मन में बनले रहे छ। एहना स्थिति में शिष्यक श्रम त व्यर्थ होइत ही अछि, गुरुक प्रयास सेहो पानि में चल जाय छ। तैं शिक्षणक प्राचीन पद्धति में गुरु के सर्वोच्च स्थान देल जाय छल, आ हुनका सब किछु बुझबाक प्रशिक्षण आरंभ सँ शिक्षार्थी के देल जाय छल। तत्वान्वेषी के त स्व केर त्याग करब परमावश्यक अछि, कारण तत्व चिंतनक प्रक्रियाक आरंभे स्व वा अहंकार त्याग सँ होइ छ। क्यो सिद्ध पुरुष छलाह, हुनका संग में पारस पाथर रहन। पारस पाथरक संस्पर्श सँ कुधातु स्वर्ण में बदल जाय छ। पारस पाथर ओ नुका कर रखथि, ककरो ज्ञात नहीं रहेक जे हिनका संग में पारस छन। शिष्यो लोकन के नहीं बुझल रहन, कोना ने कोना एकटा हुनक निकट केर शिष्य के ज्ञात भ गेलै जे गुरुजी के संग में पारस पाथर छन, किंतु कत छन कहाँ छन से ओकरा नहीं बुझल रहे। ओ सतत एही चेष्टा में रहे जे कोनहुना गुरु से ओ पाथर लऽ लेल जाए। ओ गुरु के विश्वास पात्र बनबाक चेष्टा करय लागल, गुरु प्रसन्न भेलखिन। एक दिन शिष्य मनक बात हुनका कहलकन, गुरुजी हमरा पारस पाथर चाही। गुरु पाथर देबा लेल तैयार भ गेला, लौह पेटिका दिस इंगित करैत बजला, ओ पेटी उठा लौ। शिष्य पेटी उठा लेन, पेटी में ताला लागल छल, चाभी नहीं छले, ताला तोड़बाक उपक्रम होमय लागल। शिष्य के शंका छले जे गुरुजी ठक तने रहला अछि, कारण जो एही पेटी में पारस पाथर रहते तखन त ई पेटी सोनाक बनि गेल रहते। ताला टूटल, ओहि में पुरान वस्त्र में लपेटल छल पारस पाथर, ओहि में सब पाथर बाहर कै शिष्य के दैत गुरु बजला, पाथर वस्त्र में लपेटल छल, तैं ई पेटी स्वर्णमय नहीं भ सकल। ब्रह्म आ जीवक संयोग हेबा में वा गुरु शिष्य में संबंध स्थापित करय में स्व अथवा अहं ओहिना बाधक होइ छ, जना पारस पाथर आ लोहक बीच संपर्क हेबा में ई वस्त्र। जँ पारस वस्त्र सँ आवृत नहीं रहित तँ पारसक संपर्क सँ लौह पेटिका सोनाक बनि गेल रहतैक। आध्यात्म चिंतन में स्व केर त्याग अनिवार्य होइ छ। गुरु शिष्य संबंध सेहो तखने सुदृढ़ होइ छ जखन के शिष्य स्व केर त्याग कऽ पूर्ण समर्पण भाव सँ गुरुक समक्ष तत्वज्ञान प्राप्त करबा लेल उपस्थित होइ छ।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, अब सुनिए दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।
2: किसान हो लोकन आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी, हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। हरेक किसान भाई लोकन के मन में ई गप रही छे कि हम सब अपन खेत सँ कोना नीक से नीक गुणवत्तापूर्ण उपजा ली। एहि लेल फसिल में पोषक तत्व सभक प्रबंधन पर बेस ध्यान देव आवश्यक अछि। तऽ आउ किसान भाई लोकनि आइ कृषि चर्चा में एहि संबंध में विस्तार सँ गप करी। उर्वरक के बहुमूल्य हेबाक कारण आ अभाव के कारण एकर व्यवहार जँ जैविक पदार्थ के संग मिला कऽ कयल जाय तऽ फसिल पर बेसी लाभ होइत अछि। रासायनिक उर्वरक के जैविक खाद अथवा जीवाणु खाद के संग मिला कऽ व्यवहार कयला सँ एकर उपयोगिता

0: मे बेस वृद्धि भ जाइत अछि। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के मूल उद्देश्य जैविक खाद, जैव उर्वरक आ रासायनिक उर्वरक के संतुलित मात्रा में व्यवहार क खेत के माटिक उर्वरा शक्ति बेसी काल धरि बनाकर राखल जा सकैत अछि। फसिल में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के मुख्य चरण एहि तरहे अछि, संगे ऐसा फसिल के गुणवत्ता में वृद्धि होइत अछि आ लागत सेहो कम होइत अछि। पहिल अछि माटिक जाँच, कार्बनिक आ जैविक खाद, जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक आ सूक्ष्म पोषक तत्व सभक व्यवहार। माटिक जाँचक संबंध में जँ विचार करी तऽ किसान भाई लोकनि एकटा निश्चित अंतराल पर अपन अपन खेत के माटिक जाँच निश्चित रूप से करा लेबाक चाही। ऐसा माटि में उपलब्ध पोषक तत्व जेना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के संबंध में नीक जका जानकारी भेटत अछि। संगे ऐसा कोन पोषक तत्व के कतेक मात्रा व्यवहार करी अइ संबंध में सेहो नीक जका जानकारी भेट सकैत अछि। कार्बनिक आ जैविक खाद, खेत के तैयारीक समय में प्रति एकड़ सरल गोबरक खाद 5 टन के हिसाब से सामान्य रूप से व्यवहार करक चाही। वर्मी कंपोस्ट व कंपोस्ट के व्यवहार सेहो करब उचित अछि। एकर अतिरिक्त फसिल चक्र में दलहनी फसिल सबके निश्चित रूप से शामिल करक चाही, ऐसा बेस लाभ होइत अछि। रासायनिक उर्वरक, किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान राखल जाय जे खाद उर्वरक के अनुशंसित मात्रा में यूरिया व डीएपी के व्यवहार करब उचित अछि। कम व बेसी मात्रा में व्यवहार कखनो नहीं करक चाही, ऐसा लाभक बदला में हानि भ सकैत अछि। नाइट्रोजन के फसिल के अलग अलग अवस्था में देबाक चाही, जेना रोपा व बाग काल में, फूल आबो काल में, कल्ला जखन फूटे लगाय ओहि काल में, ऐसा बेसी लाभ भेट सकैत अछि। एकर अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व सभक व्यवहार में बेस सकांक्ष रहब आवश्यक अछि। फसिल में खाली जैविक खादक व्यवहार नहीं कर सकै छी, किएक एमे पोषक तत्व सभक मात्रा कम होइत अछि। संगे ई पोषक तत्व सब फसिल के गाछ सबके सने सने बड कम मात्रा में प्राप्त होइत अछि। रासायनिक उर्वरक के व्यवहार सँ फसिल में मात्र एकटा वा दूटा पोषक तत्व सभक आपूर्ति होइत अछि। समेकित पोषक तत्व सभक प्रबंधन सँ फसिल में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व सभक प्राप्ति होइत अछि। किसान भाई लोकनि रासायनिक उर्वरक के 10 टन जैविक खाद वा नील हरित शैवाल के संग मिला कऽ व्यवहार कयला सँ धान के फसिल में अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 कम कयल जा सकैत अछि। संगे फास्फेट के सेहो बचत कयल जा सकैत अछि। 5 टन बायोगैस सलरी, कंपोस्ट व जलकुंभी धान आ गहूँम के फसिल में 40 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर के दर सँ अपने बचत कऽ सकै छी। जैविक खाद के संग फास्फोरस के घुलनशील बनब वाला फास्फो बैक्टीरिया के व्यवहार चूनायुक्त व अम्लीय माटि में फास्फोरस के मात्रा ऐसा बढ़त अछि।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी

0: तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में 4थे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंग में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, जो आंख के रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ ही गला, नाक, कान के भी विशेषज्ञ हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं के लिए मोतियाबिंद के कारण और उसके निदान पर। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का ये है क्या, कारण क्या है?
3: मोतियाबिंद हमारे देश में अंधापन का प्रमुख कारण है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आँखों की पुतली के मध्य में एक पारदर्शक लेंस होता है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें आँखों के अंदर प्रवेश कर दृष्टि पटल, जिसे रेटना कहते हैं, पर छवि बनाती है और मनुष्य देख पाता। बढ़ती उम्र के कारण या किसी अन्य कारण से भी पारदर्शक लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या लेंस अपारदर्शक हो जाता है,
2: यानी ये जो
3: अपारदर्शक लेंस को मोतियाबिंद कहते हैं।
2: इसके कारण क्या है?
3: मोतियाबिंद, सबसे सामान्य मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के कारण 50 से 60 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और रोगी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। उम्र के कारण जैसे बालों में सफ़ेदी

0: चमड़े में परिवर्तन होता है, उसी तरह लेंस में भी परिवर्तन आता है। हेरिडिटी या आनुवांशिकता की भी इसमें प्रमुख भूमिका है।
1: क्या इसमें खान पान का भी कोई असर होता है?
0: जी हाँ, निश्चित ही। भोजन में विशेष रूप से प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, खासकर विटामिन सी, राइबोफ्लेविन की कमी और विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है।
1: तो इसके अलावे और क्या क्या जो प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक या रासायनिक कारण हो सकते हैं जो आँखों पर असर डालते हैं?
0: अन्य प्रमुख कारणों में सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनका आँखों पर असर होता है, और यही कारण है कि हमारे देश में मोतियाबिंद के रोगी ज़्यादा हैं। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सिगरेट पीने वालों में भी मोतियाबिंद उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। चोट, आँखों में चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: क्या डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को हो रक्त में, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो, इन सब का भी असर होता है क्या मोतियाबिंद?
0: डायबिटीज़ का तो असर होता है, डायबिटीज़ के असर से मोतियाबिंद आँखों में हो सकता है, और आँखों में पहले से मोतियाबिंद है तो वो, और उसका उपचार न किया जाए तो मोतियाबिंद जल्दी पकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा आँखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके असर से भी, जिनके कॉम्प्लिकेशन से भी मोतियाबिंद हो सकता है।
1: तो इसको कैसे पहचाने का, एक आम आदमी उसका लक्षण कुछ होता होगा जो पहचान सके?
0: जी हाँ, मोतियाबिंद के रोगी के आँखों की रोशनी बिना दर्द के धीरे धीरे कम होती जाती है। एक ही चीज़ का दो या तीन दिखना या चार दिखना, इसे डिप्लोपिया या पॉलियोपिया कहते हैं, ये हो सकता है। और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि किसी रोशनी के स्रोत के चारों तरफ रंग बिरंगे धारियों वाले, जिसे कलर्ड हैलोज कहते हैं, वो उत्पन्न होता है, और रोगी की शिकायत होती है कि उसके उसे रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ रहा।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की स्वास्थ्य चर्चा में मोतियाबिंद क्या है, उसके लक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। अब सुनिए ये भजन, स्वर है जयंती देवी और सहेलियों का।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है हरिहरन का।

सुरेश वाडकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर है जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 से। फिल्म संगीत का समय होगा 10:00। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीई

आरती का समय होता है 11:30 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे बानो को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 2:10 आप सुनते हैं 2:10 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे तरुण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम संध्या 5:00। 7:00 जायजा आप सुनेंगे 6:10 से। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:15 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम काम घर आप सुना करते हैं 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होता है 7:00। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर। साहित्य की यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। और फिल्म संगीत पर आधारित हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय होगा 10:00। यह था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत में फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है।

0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिकादेशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिकादेशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय

0: प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला का आजुक अंक में हम छे मणिकांत झा।
1: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार प्रतिभा जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हमरा लोकन करै छी सुविचार सँ।
1: नीति श्लोक है, कहते हैं नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणम, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अर्थात मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है, रूप का आभूषण गुण होता है, और गुण का आभूषण ज्ञान होता है, ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। इसीलिए व्यक्ति का रूपवान होना तभी सार्थक है जब सच्चे गुण, सच्चा ज्ञान और क्षमा उसके भीतर मौजूद हो।
0: और कार्यक्रम में आगा बढ़ेत उनटा भी ऐतिहासिक पन्ना। आजुक दिन, आजुक तिथि अर्थात

0: 10 जुलाई इतिहासक पन्ना में किया विशेष रूप से जानल जाइए तै पर एक नजर।
1: आज के दिन यानी 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों का पहला बड़ा विद्रोह था। यह विद्युत प्रणालियों के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध आविष्कारक और वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 10 जुलाई 1962 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेलस्टार 1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया था। 10 जुलाई 1973 की बात करें तो कैरेबियाई द्वीप देश बहामास को ब्रिटेन से औपचारिक स्वतंत्रता मिली थी। बहामास में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के महान पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को हुआ था और 10 जुलाई को ही 1940 में नाजी जर्मनी की वायुसेना द्वारा दक्षिणी इंग्लैंड पर हवाई हमले के साथ बैटल ऑफ ब्रिटेन की शुरुआत हुई थी।
0: तो इतिहासक पन्ना से रूबरू भेलहुँ हमरा लोकनि आ कार्यक्रम में आगा बढ़ी। वर्तमान में अगर अभी तो एखन वर्षा ऋतु से हमरा लोकनि जे छै से गुजरि रहल छी और वर्षा ऋतु अपन किछु किछु प्रभाव जे छै से आब देखेनाइ शुरू कयलक है। पछिला दू तीन दिन सँ किछु किछु सक्रिय भेलै। आइ तऽ हमरा लगैए सम्पूर्ण देश में मानसून जे छै से अपन स्थिति पसारि रहल है और दरभंगा और लग पास में आइ भोर सँ वर्षा भऽ रहल है, से चिक्कन वर्षा भऽ रहल है। वर्षा के कारण जे छै से जल जमाव के स्थिति शहर में कैटा सड़क पर सेहो देखा में आबि रहल है। तो बरसात के समय में कने स्वास्थ्य पर ध्यान अपन राखी। स्वास्थ्य पर ध्यान तो सब समय में रखबाक छै, लेकिन अलग अलग मौसम में अलग अलग ढंग से ध्यान रखनाई जे छै से आवश्यक होइ छै। तो एखन जना आब वर्षा भऽ रहलै है तो बहुत लोग के अहाँ देखबेन जे आनंद पूर्वक जे छै से वर्षा में भिजैत और इम्हर उम्हर जा रहल है, आबि रहल है, तो वो फिर स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक भऽ जाता है।
1: देखिए ना, मौसम के अनुकूल ही हमें अपने आप को रखना चाहिए, ढालना चाहिए, क्योंकि मौसम का असर जो हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल ना पड़ जाए इसके लिए हमें खुद ही सावधानी रखनी होगी। साफ सफाई की बात करें तो घर आंगन की सफाई तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं देते हैं। कोई ऐसा डब्बा है हमारे आलय में, आंगन में, जिसमें बारिश का पानी भर गया है तो उस सबको फेंक देना चाहिए या डब्बे को पलट के रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। और भींगने की बात आपने कही तो भींगने से परहेज तो निश्चित तौर पे करनी ही चाहिए, क्योंकि तुरंत देखने को मिलता है कि सर दर्द से या सर्दी से बुखार से परेशान हो जाते हैं हम सब यदि भींग जाते हैं।
0: तो ये सब बात पर मैं ध्यान देबाक छै और कार्यक्रम में आगा बढ़ी छी और सुनी छी मैथिली सुगम संगीत।

0: कुंज बिहारी मिस को भी हम लोग सुन रहे थे, इन्हें धन्यवाद देते हैं और जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं मणिकांत झा। आइए सुनते हैं मणिकांत झा से हालचाल।
1: नमस्कार। बिहार में 1 करोड़ नव राशन कार्ड बनाओल जाए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अभियान के चला कर एक लक्ष्य के शीघ्र प्राप्त करवा के निर्देश पदाधिकारी लोगों के दलन है। वो विभागक सब योजना के लाभार्थी के अद्यतन डेटाबेस तैयार करवा आ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सब लाभुक तक योजना के लाभ पहुँचेबाक व्यवस्था सुनिश्चित करवाक बात कहलन है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है जे राज्य के सब किसान के प्रातःकाल 6 बजे से संध्या 6 बजे तक कृषि फीडर से बिजली भेटत, ऐसे सुनिश्चित करवाक निर्देश ओ पदाधिकारी लोगन के दलन है। मुख्यमंत्री काल्हि लोक सेवक आवास में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के संग बैसार कैलन। एहि मध्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता आ भविष्यक आवश्यकता के अनुरूप नव परियोजना पर विचार विमर्श कैलन। मुख्यमंत्री कहलन कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्य के तेजी से प्राप्त कैल जाए, पात्र

परिवार के योजना के अधिकतम लाभ देवाक लेल जन जागरूकता बढ़ाओल जाए आ सब प्रक्रिया के सरल एवं समयबद्ध बनाओल जाबाक अछि। मानसून देश भर में प्रसार पाबि लेलक है। मानक तिथि 8 जुलाई से 1 दिन के देरी से एहि बेर देश भर में एकर प्रसार भ गेल है। एहि बीच राज्य में वर्षा के कमी एखनो 53% है। मौसमविद के अनुसार आई राज्य के 4 जिला में भारी बारिश के अलर्ट जारी कैल गेल है, जाहि में दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ पश्चिमी चंपारण शामिल है। एहिठाम भारी बारिश के चेतावनी जारी कैल गेल है। राज्य भर में मेघक आवाजाही बनल रहत आ संगे छिटफुट बारिश के अनुमान सेहो लगाओल जा रहा है। ओतहि समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, सारण आ वैशाली में गरज तरह के ऑरेंज अलर्ट सेहो जारी कैल गेल अछि। पटना में मेघक आवाज

0: संगे छिटफुट बारिश के अनुमान सेहो लगाओल जा रहा है। ओते समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, सारण आ वैशाली में गरज तरह के ऑरेंज अलर्ट सेहो जारी कयल गेल अछि। पटना में मेघक आवाजाही के संग छिटपुट वर्षा संभावना व्यक्त कयल गेल। राज्य में मानसून ट्रफ के अयला के बाद बादल के सक्रियता अखन बनल रहत। मानसून ट्रफ अखन डेहरी, धनबाद, दीघा होइत उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी तक जा रहा है, जाहिसँ किछु जगह पर भारी तो किछु जगह पर मध्यम वर्षा के स्थिति अखन बनल रहत। काल्हि कटिहार जिला में एक दू स्थान पर नीक चिक्कन वर्षा के दर्ज कयल गेल। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के सुविधा शुरू करवाक व्यवस्था तेज कर देल गेल। एकरा लेल दरभंगा के संसद सह लोकसभा में पार्टीक सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर काल्हि नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भेंट क के बात कयलनि और एयरपोर्ट से जुड़ल कैटा मुद्दा पर चर्चा सेहो कयलनि। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

हालचाल में है, पुनः अपने स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 78वां स्थापना दिवस काल दरभंगा में धूमधाम से मनाल गए। जिला इकाई के दिस से एकर राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में सेहो एकरा मनाल गए। परिषद के राष्ट्रीय मिश्र स्थानीय मिश्र टोला स्थित परिषद कार्यालय पर जिला संयोजक झंडोत्तोलन कैलन। ए अवसर पर कार्यकर्ता राष्ट्रहित एवं छात्रहित के लिए कार्य और अधिक गति से करबाक संकल्प लेलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग में द्वितीय सेमेस्टर के छात्र काल धर्मवीर भारतीय महाकाव्य नाटक अंधायुग के मंचन कैलन। कलाकार लोकन के चरित्र के मनोवैज्ञानिक जटिलता सशक्त और सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत क खूब वाहवाही लुटलन। विशेषकर अश्वत्थामा आ गांधारिक भूमिका दर्शक पर नीक प्रभाव छोड़ सकल। इंडक्शन क्लास दीक्षारंभ कक्षा के उद्देश्य छात्र के नव शैक्षणिक वातावरण में समायोजित करब आर हुनक सहज महसूस करबाक मदद पहुँचेबाक लेल होइत अछि। ई हुनका शिक्षण संस्थान के लोकाचार और संस्कृति के विकसित करबाक संग हुनका अन्य छात्र और शिक्षक के संग परस्पर संबंध बनेबा में सेहो मार्गदर्शक के काज करैत अछि। सीएम साइंस कॉलेज में काल्हि 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस सत्र 2026-30 के छात्र लोकन के बीच आयोजित इंडक्शन क्लास में भौतिकी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार दास ई बात कहलन। राज्य के विश्वविद्यालय में 9 PG रेगुलेशन लागू भ गेल है। एकरा अंतर्गत 1 वर्षीय आ 2 वर्षीय कोर्सक फीस तय क देल गेल है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अदा हसनैन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 1 वर्षीय 2 सेमेस्टर आ 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर PG कार्यक्रम के लिए यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एवं रेगुलेशन 2026 के मंजूरी दे दलन। एकरा संग वर्ष 2018 से लागू च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के पुरान नियम समाप्त भ गेल। ई व्यवस्था बिहार के सब राज्य विश्वविद्यालय में लागू भ गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में

0: प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक साहित्यकार शोध चिंतक डॉक्टर सुभद्र झा की जयंती काल मनाओल गए। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण के अध्यक्षता में संगोष्ठी सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। मैथिली भाषा आ साहित्य के विकास में डॉक्टर सुभद्र झा के योगदान विषय पर अपन संबोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कर्ण डॉक्टर सुभद्र झा से जुड़ल अनेक संस्मरण के साझी कैलन आ कहलन जे डॉक्टर झा मात्र एक विद्वान लेखक नहीं छला अपितु मैथिली भाषा आत्मा के बुझा वाला संवेदनशील चिंतक छला। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: हालचाल के बाद एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। और कार्यक्रम में हम सभी हालचाल के बाद प्रस्तुत करते हैं मौसम की जानकारी। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मौसम सेवा विभाग केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जो मौसम का पूर्वानुमान हम बता सकते हैं वह है 10 से 12 जुलाई के आसपास की 8 से 12 जुलाई के पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा तेज झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में ज़्यादातर दिनों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं, हालांकि 10 से 12 जुलाई के बीच घने बादल आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिलों के अनेक स्थानों पर 11-12 जुलाई के बीच अच्छी वर्षा हो सकती है। अन्य जिलों में पूरी तरह से कम वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है, हल्की हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 50% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में हवाएं मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। और अभी वर्तमान की बात करें तो आपने बताया कि बारिश से सभी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए ना हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और धान की खेती का या जो स्वर्णिम समय है वो बीतते सा जा रहा है और एक जोरदार बारिश हो जाने से सभी किसान झूम उठते हैं और किसान खुश तो फिर सभी खुश, क्योंकि अन्नदाता उन्हें कहा जाता है।
0: और ई वर्षा जे छै से पानि जीवन के लेल बहुत आवश्यक छै और जीवन के आवश्यकता के लेल पानि लऽ कऽ वर्षा अबैए, वर्षा ऋतु अबैए। तऽ एहि ऋतु के अपनाओ तऽ हर ऋतु के स्वागत जे छै से हमसब बड़ा उल्लासपूर्वक करै छियै और सब ऋतु के अपन अपन महत्व छै। तऽ ओहिमे वर्षा ऋतु पावस ऋतु जे तकर एकटा और विशेष महत्व भऽ जाइ छै, किए तऽ जल ही जीवन है और ओहि जल के लऽ कऽ ई ऋतु अबैए। तऽ एकर स्वागत हमरा लोकनि कऽ रहल छी और जेनाकि हमरा लोकनि एखन बुझलहुँ सुनलहुँ हालचालमे और अहूँ मौसम पूर्वानुमानमे कहलहुँ जे एखन सम्पूर्ण देशमे मानसून सक्रिय भऽ गेल है। तऽ ई नीक बात अइ, वर्षा अगर कम भऽ जाइ छै तऽ ओकर बहुत कुप्रभाव पड़ै छै, तैँ अगर वर्षा भऽ रहल है तऽ नीक बात अइ। आओर हमरा सबके जल संचयन के दिस सेहो ध्यान देबाक चाही और जे वर्षा के जल हमरा सबके प्राप्त होइए ओ बर्बाद नहि भऽ जाए, ओ सोझे बहिकर नदी में नहि चलि जाए, तकर लेल सेहो चैक के आवश्यकता छै। और आवश्यकता छै जे केना ओकरा हम संजोग के अपना लग में राखि सकी, कैटा विधि छै ओकर, जेना छत पर सँ जल खसै छै और नाली में जाइ छै, नाली से फिर बड़का नाली में, बड़का नाली से फिर कतौ नदी नाला में बहिके चलि जाइ छै, तऽ ओ पानि जे छै से एको बूंद धरती के भीतर नहि जा पबै छै। धरती के भीतर जाबे पानि नहि जेतै ताबे वाटर लेवल जे छै जलस्तर जे छै से ऊपर नहि आयत। आ हमसब तऽ पछिला 2-3-4 साल सँ
1: अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्या शहर की बात करें क्या गाँव को देखें, हर जगह पानी के लिए एकदम
0: हाहाकार
1: मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वाटर लेवल जो पानी का जो स्तर है वो एकदम ही नीचे चला गया है, जिसके कारण चापाकल सब कोई बोलते हैं कि मेरा चापाकल सूखा हुआ है, और जिसके कारण क्या मोटर आप लगा के रखिएगा।

0: चापाकल में पानी ही नहीं है तो फिर तो बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना सबको करना पड़ रहा है। इसका यही कारण है कि पानी की बर्बादी, जल की बर्बादी।
1: कहबी छे जो धन घटल जाए और आप बढ़ल जाए, संसाधन घटल जा रहा है और जनसंख्या बढ़ल जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो इहो बात जो छे जनसंख्या पर में नियंत्रण एकरा लेल बहुत आवश्यक छे और वो एकदम चिंता करे के विषय छे जे जनसंख्या आप सब कोना नियंत्रित करी, ओकरा केना नहीं बढ़ दिए, केना ओकरा व्यवस्थित क के राखी। तो इस पर में तो चर्चा हम सब करब, फिर लंबा चर्चा है ओ पर में। लेकिन हमरा लगे जो इस पहिने अगर गीत नाद दिस प्रवेश कर जाए तो हमारे श्रोता वर्षा ऋतु के जो आनंद लड़ रहा है उनमें सोना में सुगंधि आवेदन और वर्षा ऋतु के आनंद में गीत खूब संवर्धन करतन। तो आओ सुनी सुंदर सनक ई फिल्म संगीत।

0: बड़ से फुहार, बहुत सुंदर गीत एखन हमरा लोग सुन रहा छलू है और फुहार पड़ियो रहा है दरभंगा लग पास में चिक्कन वर्षा एखन भोर में लगभग 6 बजे से शुरू है और से भ रहा है।
1: और धान की जो खेती है, धान की रोपनी जो हो रही है, इसकी रोपाई तो बहुत ही तेजी से किसान भाई अपना कार्य को शुरू करेंगे और कर रहे होंगे।
0: ये असल में प्रतिभा जी की छह बिया खसेवा के जो बेर छे ते काल में वर्षा के अभाव रहले, तो बहुत ठाम तो बिया के अभाव छे, लेकिन तकरा बाद जत जत बिया अय उपलब्ध उत कादो शुरू भ गेल हैत और शुरू भ जात और रोपनी शुरू भ जात। तो आज जत बिया नहीं छलै तकरा लेल जे छै से बहुत बढ़िया भ गेलै जे आब बिया खसब के समय हुनका सबके भेटतै।
1: हाँ, कुछ लेट तो हो ही गया है, देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सभी प्रयासरत होंगे कि कैसे हम किस तरह से इस कमी को पूरा करें। किंतु एक बात कहना चाहेंगे कि बीज की कमी को तो फिर भी पूरा किया जा सकता है, लेट या सवेर, कुछ दिनों की देर हुई है लेकिन पूरा उसको कर सकते हैं किसान भाई। किंतु जमीन की जो कमी हो जाती है, खेत की जो कमी हो जा रही है, उसकी कमी की भरपाई कौन कर पाएगा? क्योंकि जो खेती योग्य भूमि है, गांव की बात करें या शहर की बात करें, जो मेन शहर में पूरे मकान भरे हुए हैं, पूरी आबादी भर गई है, बिल्डिंग सब बन गए हैं, तो फिर वो जो एक खेतीहर जो जमीन है उधर ही और बढ़ते जा रही है, देखने को मिलता है। दरभंगा की बात करें, मधुबनी की बात करें, या कहीं की भी बात करें, या फिर ग्रामीण इलाकों की ही बात करें, तो खेतीहर भूमि जो है, खेती योग्य जो भूमि है, उस पे भी घर बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं हम सभी मनुष्य, क्योंकि इसका एक ही मुख्य कारण है, वो है जनसंख्या में वृद्धि। एक परिवार से चार परिवार होते जा रहे हैं, चार से फिर आठ होते जा रहे हैं, तो सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबके लिए घर बनाने के लिए जमीन ही चाहिए। और ऐसे में ये हो रहा है कि उपज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खेती ही नहीं होगी तो फिर उपज बढ़ेगा कैसे? ये तो दिनानुदिन घटते ही जा रहा है और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। इसमें निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण पे जो है काम करनी होगी, ध्यान देनी होगी।
0: जनसंख्या नियंत्रण के गप जो है से अपना सभा को तब बहुत पहले एकर आवाज उठल छल और उसमें अगर अतीत में जाओ तो बच्चे दो ही अच्छे एकर जे छै से नारा चलल छले और ओहि नारा के लोग पालन सेहो बहुत हद तक कलन। और पछिला किछु वर्ष से एहि पर मे जे शिक्षित परिवार कहि सकै छी अहाँ, जे शिक्षा जिनका मे जे परिवार मे गेलै तैठाम ई बात आबि गेलै जे बच्चे दो ही अच्छे सब बढ़िया एक अच्छे वाला मे आबि गेलै। बहुत परिवार मे नव तुर के जे लोग छथि तिनका देखबै जे एकैटा बच्चा हुनका छनि, ओ बेटा होइ कि बेटी होइ, सबके समान भाव सँ बेटा बेटी मे फर्क बुझनाइ जे छै से लोक बंद केलक और ओहि पर मे हुआ लगलै ई बात जे जनसंख्या के नियंत्रण कैल
1: किस तरह से किया।
0: लेकिन तकरा बादो बहुत रास एहन परिवार छथि जाहि ठाम शिक्षा के दीप ढंग सँ नहि जरि रहलै है, नहि जरलै है, ततो जे छै से ओ निर्वाध गति सँ जनसंख्या बढ़ि रहलै है और ओहि परिवार में 5-7-10 बच्चा सेहो अहाँ के भेट जाए।
1: हाँ, जबकि उन्हें दिक्कतों का सामना बहुत ही करना पड़ रहा है, पालन पोषण के लिए, या फिर उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो अपने बच्चे को, क्योंकि कमाने वाले एक हैं या दो हैं और खाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, फिर भी उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे अशिक्षा है।
0: हाँ, बिल्कुल। तो

0: शिक्षा के दीप हुनका लोकनि तक पहुँचै आओर जनसंख्या के नियंत्रण करी जे बात अहाँ कहलहुँ जे जमीन घटि रहल है आ लोक बढ़ि रहल है जमीन तऽ घटि की रहल है जमीन तऽ जतबे छलै ततबे छै लेकिन ओहिमे चूँकि लोक बेसी बढ़ि रहलै है तऽ जमीन स्वतः बुझाइ छै जे घटल जा रहल है जमीन तऽ नहि घटयवला छै नहि बढ़यवला छै
1: निर्माण हो रहा है कंपनी फैक्ट्री बन रहे हैं तो इस तरह से जो खेती योग्य भूमि है उसमें तो बहुत ही कमी
0: उत्पादन कम भऽ जेतै आओर खेनहार बेसी भऽ जेतै तऽ तहन तऽ अनबैलेंस होवक जे स्थिति छै से भए जेतै तैं ओहिपर मे मनुष्य हमरा लोकनि छी आओर मनुष्य विवेकशील प्राणी होइए हमरा सबमे विवेक अइ मनुष्य आओर पशुमे जे छै से मुख्य रूपसँ विवेकके अन्तर छै विवेक पशुमे नहि होइ छै आओर मनुष्यमे होइ छै हमसब ज्ञानी कहाइ छी अपना आपमे तऽ ओहि बातके चरितार्थ करबाके सेहो आवश्यकता छै खाली किताबमे लिखल रहतै जे मनुष्य एक ज्ञानी प्राणी है तऽ ताहि कहलासँ नहि हेतै ओकरा हमरा सबके असामान्य जीवनमे जे छै से अपन काजसँ अपन क्रियाकलापसँ देखबऽ पड़त जे वास्तवमे हमसब ज्ञानी छी आओर ओ बुझै छी
1: आओर उसका परिणाम दुष्परिणाम हम पर ही पड़ता है मनुष्यो पर ही पड़ता है देखिए ना ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है जन की संख्या जो है जन भागीदारी जो है वो किसी भी देश की शक्ति होती है पर जब उपलब्ध साधनों से अधिक जनसंख्या वृद्धि होने लगे तो फिर ये शक्ति क्या समस्याओं को ही जन्म देती है
0: अति सर्वत्र बढ़ जाए
1: जी बिल्कुल और आज विश्व के कई देशों की तरह हमारा देश भारत भी जो है वो तेजी से बढ़ती आबादी की चुनौतियों का सामना करते जा रहा है बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है स्वास्थ्य पर पड़ेगा रोजगार पर पड़ता है आवास की बात हमने की है अभी और पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर भी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है बहुत ही आवश्यक हो गया है कि इस पर विचार हम सभी को करना पड़ेगा करना चाहिए बढ़ती आबादी के कारण रोजगार के अवसरों पर दबाव बढ़ता है जिससे बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं इसके साथ जो हमने कहा कि खेती तो प्रभावित हो ही रही है भूमि की कमी हो ही रही है और जल संसाधनों का भी बात करें तो जल संसाधनों पर भी बढ़ते दबाव के कारण से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में कमी आ रही है देखिए ना अब टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है गली मोहल्लों में
0: तो बात ये जखन अहाँ दोहन करऽ लगबै प्रकृति सब प्रदत्त जे संसाधन है तकर दोहन करऽ लगबै आओर दोहन तेज गति से करबै बेसी लोक हेबै तऽ बेसी गति से तेज गति से करबै आ उदाहरण के लेल एकटा देखियौ जे पहिले लोक जे स्नान करै छला है तऽ ओ पोखरिमे आ कि धारमे जा कऽ स्नान करै छला है दू डुब्बी चारि डुब्बी दस डुब्बी जतेक काल नहाय अहाँ दस मिनट नहाय पाँच मिनट नहाय आधा घंटा नहाय एको बूंद पानि ओहिमे बर्बाद नहि होइ छलै है लेकिन आइके युगमे हर घरमे बाथरूममे लोक स्नान
1: इसका कारण एक ये भी है कि अब वो ताला भी नहीं है कहीं देखने को आपको ताला भी नहीं मिलेगा देखने को और जहाँ है भी तो वहाँ के लोग
0: उपयोग नहीं कर रहे यहाँ जो चीज के तो वो जो चीज से पड़ता पड़ जाए और पड़ता पड़ला से वो खराब हो जाते खत्म हो जाते तो वही कारण से जो है से जल के खपत बहुत बेसी बढ़ गए हम सब जहन धियापुता छो तो चार घैल पाँच घैल दस घैल पानि में जो है से एक परिवार के गुजर चल जाए और घैलची पर में घैल राखल रही है और वही पानि राख कर लेकिन आई अहाँ नजर घुमा के देख लियो तो 500 लीटर और 1000 लीटर के टंकी हर छत पर अहाँ के भेटत और वो टंकी दू बेर तीन बेर भरऽ पड़े भरि दिन में तखन वैसे काज चले
1: और सबसे बड़ी बात की हम अपने घरों में हर घर में देखते हैं लगभग यदि बात की जाए तो जल की बर्बादी जो हो रही है वो जो आरओ का जो प्रचलन चला है तो आरओ से जो वेस्टेड पानी जो होता है उसका जो बर्बाद होने वाला पानी तो वो ऐसे ही हम सभी उसको नाले में बहा देते हैं तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं देखिए ना उस पानी को जमा करके हम रखें किसी टब में रखें बाल्टी में रखें और उसे कपड़े तो धोए ही जा सकते हैं बर्तन तो की सफाई तो हो ही सकती है तो ये सब चीज़ ध्यान देने की बात है या फिर आप पौधे में फूल के पौधों में पानी डाल रहे हैं या सब्जी है सब्जियों को लगाए हुए हैं आप अपने बगीचे में तो उसमें उस पानी का व्यवहार करें तो ये सब चीज़ बहुत ही आवश्यक है ध्यान देने के लिए
0: जल के संचयन जे छै से बहुत आवश्यक छै ओकरा संरक्षित कर रखनाय जे छै से बहुत आवश्यक छै और जनसंख्या नियंत्रण पर मे काज करब जे छै से सबसे बेसी आवश्यक छै
1: क्योंकि यह जो है भविष्य की बड़ी चुनौती बन सकती है अभी टैंकर से पानी आ रहा है डब्बे में भर के हम रख रहे हैं तो अभी मान लीजिए परिवार में 6 सदस्य हैं

0: पांच सदस्य हैं या सात सदस्य हैं, वही जाके सात कल होके 21 बनते हैं, 28 बनते हैं, तो फिर वो टैंकर के पानी का भी कोई पड़ने वाला नहीं है असर, उससे काम चलने वाला है नहीं, और भूमिगत जल की क्या अवस्था है वो हम सभी देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं इसको।
1: प्रतिभा जी, आई जे छे से शुक्र,
0: हाँ,
1: आज शुक्र दिन का हम सब गांधी कथा सेहो सुनै छी अपना कार्यक्रम में, तो हमर विचार है जे गप सब सब पहले गांधी कथा सुन ली,
0: फिर
1: तकरा बाद फिर गप सब के मौका लागत तक
0: और सुनवाएंगे एक फिल्म संगीत भी समय रहने से।
1: हाँ।
0: तो पहले सुन लेते हैं अभी गांधी कथा।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। गांधी जी हमेशा छुआछूत और हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे। 17 अगस्त 1932 को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी, तब इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने एक योजना पेश की और इसे गांधी जी के समक्ष रखा। गांधी जी ने कहा कि मैंने योजना के प्रत्येक पहलू पर गौर किया है और मुझे यह योजना पसंद नहीं आई। मैं हरिजनों के बीच कोई भेदभाव नहीं चाहता और न ही मैं यह चाहता हूं कि विधानसभाओं के हरिजन सदस्य हिंदुओं के किसी राजनैतिक एहसान से दबें। उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिले। दोनों में इस योजना पर चर्चा हुई और अंबेडकर ने गांधी जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के उपवास के चौथे दिन अंबेडकर ने हिंदू नेताओं के सामने अपनी नई मांगें पेश की। मैकडोनाल्ड ने अपने फैसले में प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग को 71 स्थान दिए, लेकिन अंबेडकर ने 197 की मांग की। गांधी जी हरिजन स्थानों के लिए प्रारंभिक चुनाव 5 वर्ष में समाप्त करने के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर इस अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष करना चाहते थे। 24 सितंबर को हिंदू नेताओं और अंबेडकर में फिर बातचीत हुई और तय हुआ कि विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए 147 स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। गांधी जी ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। उसी दिन यरबदा समझौते का मसविदा तैयार किया गया और गांधी जी के अतिरिक्त सभी हिंदू तथा हरिजन परामर्शकारों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन गांधी जी तब तक अपना उपवास तोड़ने को तैयार नहीं थे जब तक ब्रिटिश सरकार इस समझौते को मैकडोनाल्ड के फैसले के स्थान पर स्वीकार करने को राजी ना हो। लंदन में रविवार के दिन मैकडोनाल्ड, सर सैमुअल होर तथा लॉर्ड लोथियन ने बैठक की और लंदन तथा नई दिल्ली में यह घोषणा कर दी कि उन्होंने यरबदा समझौते को स्वीकृति दे दी है, अतः गांधी जी अपना उपवास तोड़ लें। 26 सितंबर सोमवार को कस्तूरबा जी ने गांधी जी को नारंगी का रस पिलाकर गांधी जी का उपवास तुड़वाया। गांधी जी के इस उपवास के कारण पूरे देश में सुधार और आत्मशुद्धि की लहर दौड़ गई। इस उपवास से अस्पृश्यता का अभिशाप तो नहीं मिटा, लेकिन इसके बाद सार्वजनिक रूप से अस्पृश्यता का समर्थन समाप्त हो गया। इस उपवास के बाद राजनीतिक लोग चाहते थे कि गांधी जी राजनीति में बने रहें, लेकिन गांधी जी हरिजनों तथा किसानों के कल्याण कार्य में लग गए, जिससे उनके अनेक मित्रों को

दुख हुआ। गांधी जी समाज सुधार को ही स्वतंत्रता का मार्ग समझते थे। फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और यंग इंडिया के स्थान पर हरिजन निकाला। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए 3 पत्रिकाएं हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और हरिजन शुरू की। ये तीनों पत्रिकाएं हरिजनों की सेवा में समर्पित थीं। अस्पृश्यता निवारण जब तक न होगा तब तक साबरमती आश्रम में प्रवेश न करने की गांधी जी ने शपथ ली और वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर वहीं रहने लगे। 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व यद्यपि जवाहरलाल नेहरू ने संभाला, लेकिन वे गांधी जी को ही कांग्रेस का अस्थाई महाअध्यक्ष मानते थे। वे गांधी जी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और इस तरह एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक पार्टी बन गई थी, जिसका पूरा श्रेय गांधी जी को मिला।

0: गांधी कथा ई साप्ताहिक कार्यक्रम हमरा लोकन के रहैया प्रत्येक शुक्र को एकरा सुनै छी त एखन सुन रहल छलो हे और चर्चा करैत रही अपना सब जनसंख्या वृद्धि पर में जी जनसंख्या वृद्धि एकटा मूल मंत्र अगर हमरा लोकन बुझी त अपने सभक लेल जे छै से खतरनाक है त ओकरा नियंत्रित क के राखब सब गोटा के जे लेल छै आवश्यक है और ओय पर में जे जतेक काज करी जतेक चिंतन करी उससे आवश्यक है अपना अगल बगल में जत शिक्षा के दीप नहीं ठीक से जर रहले है और उत जनसंख्या वृद्धि भ रहले है निर्वाध गति से बहुत तेज गति से तो हुनका सबके सेहो किछ अपना दिस से जे छै से विचार विमर्श त क बुझा सुझा क हुनका सबके कहियन जे जनसंख्या नियंत्रित करूं
1: क्योंकि एकमात्र शिक्षा ही साधन है कि हम सभी इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं समझ सकते हैं कि भविष्य में हमारे लिए कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाए
0: तो बच्चा संतान सबके निक लगै छै और हेबाको चाहिए लेकिन एकटा नियंत्रण में रह के आठ टा दस टा संतान अगर नहीं हेतै दुइटा संतान हेतै तीनटा संतान हेतै और अगर पढ़ल लिखल भ जायत शिक्षित रहत तो ओ समाज के लेल अहाँ के लेल देश के लेल निक काज करैत रहत गप सबके तो अंत नहीं छै प्रतिभाजी जते गप करब तते गप होइत रहते और समय बांधल है अपना सभक तो उसमें एक टा गीत नाद के आनंद से हो लेवाक चाहिए
1: हाँ, आओ सुनी सुंदर समय तो हाँ। ये ना चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत

0: बरसारानी जम के बरसो, बहुत सुंदर ई गीत एखन हमरा लोग सुन रहा छो है। यह गीत जे से कार्यक्रम के समापन दिस से लोग चल आयल है। तो आब आजुक ए अंक से मणिकांत के
1: और प्रतिभा प्रीति को दीजिए विदा।
0: नमस्कार मिथिला।

0: ভোর হইতে উঠি যাও, কি একটা ইজতক পহিল কিরণ সঙ্গ ফুলায় লাগত আছে, ফুল প্রকৃতি মে ঘোরায় লাগত আছে, ঊর্জা আবাওয়ালা কাল লেল।
1: প্রগতি তখনই ভ সকিয়ে যখন পুরুষ আর মহিলা সমান রূপ সে সব ক্ষেত্র মে এক রঙ হুনকা অধিকার প্রাপ্ত হেতেন।
2: আ মনুখ লেল তো বুঝু অত্যন্ত জরুরি, পানি বুনি নেই হ্যাত তো খেতি নেই হ্যাত, আর খেতি যা নেই হ্যাত উপজা নেই হ্যাত তো আমরা লোকেন খ্যাব কি।
3: মামা বলে জানে বাবা দেনে জাদা।
4: নমস্কার মিথিলা, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाश
8: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
9: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल। हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं

0: और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फायदा पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया

0: लिया करेगा। यूरेनियम की आपूर्ति गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Landmark uranium deal with Australia, headlines Hindustan Times. Three antiquities from Tamil Nadu dating back to 11th and 12th centuries are to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government formed seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in five-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथनी एल्बिनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
4: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region.

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुक को 11,1100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भारी पैमाने पर लंबित ट्रैफिक चालानों के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोगों से फर्जी ट्रैफिक चालान से सावधान रहने की अपील की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार SMS या WhatsApp के माध्यम से मिलने वाले ट्रैफिक चालान के लंबित रहने के संदेशों को आधिकारिक पोर्टल echalan.parivahan.gov.in पर सत्यापित करें। PIB ने कहा है कि फर्जी संदेशों के जरिए पहुंचे लिंक पर क्लिक करने से साइबर ठगों द्वारा OTP चोरी किया जा सकता है या बैंक खाते या UPI से अनधिकृत लेन देन हो सकता है। PIB ने लोगों को ऐसे लिंक नहीं खोलने की सलाह दी है। परिवहन विभाग राज्य भर के निजी स्कूली वाहनों का लेखा जोखा रखने के लिए इसी महीने एक पोर्टल लॉन्च करेगा। विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर सभी स्कूल अपना पंजीयन कराएंगे। पोर्टल पर वाहन और उसके चालकों का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। पोर्टल के माध्यम से वाहनों के फिटनेस और बीमा पर भी नजर रखी जाएगी। सचिव ने कहा कि स्कूली वाहनों को लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी यातायात पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा

0: की प्रस्तावित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और साथ ही सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं को प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति डॉ CP राधा कृष्ण 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्राइड और बिपार्ड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति डॉ CP राधा कृष्ण 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्राइड और बिपार्ड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नदियों में कटाव निरोधक कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए।

0: गए हैं। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से एक भी जान नहीं जाने देने के संकल्प के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC के माध्यम से एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत दक्षिण पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी को आज मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम यात्रा और जनाजे की नमाज में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारी भीड़ के कारण ताबूत को हवाई मार्ग से दरगाह तक पहुंचाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी को आज मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम यात्रा और जनाजे की नमाज में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारी भीड़ के कारण ताबूत को हवाई मार्ग से दरगाह तक पहुंचाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज से प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को शक्ति संवाद आयोजित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे शारदा पाठशाला कहलगांव में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों में महिला पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्राओं से सीधा संवाद करेंगी। इस दौरान वे छात्राओं को जीवन कौशल, अधिकारों और भविष्य निर्माण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगी। प्रदेश के सेतु मिश्रा ने चीन के ओरदोस में चल रही पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोतिहारी के सेतु मिश्रा के अलावा आस्तिक प्रसाद और दो महिला

0: मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे, खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित होगा। दैनिक जागरण ने रेलवे बोर्ड से जुड़ी खबर पर लिखा है, रेलवे में अनुकंपा पर नियुक्त आश्रित भी ओपीएस के हकदार। दैनिक भास्कर ने ईओयू की कार्रवाई पर लिखा है, उत्पाद निरीक्षक ने 21 साल की नौकरी में 2 करोड़ 36 लाख की अवैध संपत्ति बनाई। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत, 1100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। राष्ट्रीय सागर लिखता है, टेंडर घोटाला में ऋषुश्री की याचिका खारिज। आज अखबार की सुर्खी है, पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट बनेगा विश्वविद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स रिले का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी
1: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता कहानी पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच हमारा फोन नंबर है 0627222481 मोबाइल नंबर है 9430029353
0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के
0: आकाशवाणी दरभंगा सुनते रहिए
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिया था हमने फिल्म सर से। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फूल और कांटे से। आवाजें अनुराधा पडवाल और कुमार सानू की है, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

गोपी किशन फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें कुमार सानू और पूर्णिमा की थी, गीत के बोल थे समीर के और संगीत था आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म यलगार से, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाजों में। गीत अजीज कैसी का है और संगीत चन्नी सिंह का।

0: ऐ मेरी हमरत मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

गुलाम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में गीत के बोल थे समीर के और संगीत था जतिन ललित का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है विजू शाह का।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ये दिल लगी से, लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वरों में। गीत समीर का है और इस गीत को संगीत से संवारा है समीर सेन और दिलीप सेन ने।

सलामी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत समीर का था और इस गीत को संगीत से संवारा था नदीम शरवन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। आज हम इसमें सुन रहे थे सरोद वादन अलाउद्दीन खान से। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
3: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
3: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता है।

0: रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा

나온 옷하매. 남탓 빠트리. 야한 와한 꾸치 캣 꾸치 조프리야 पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने सुने सुने सुने सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर,

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

कोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम रह सकते हैं।
4: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो
1: सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
5: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
6: धन्य हो,
5: धन्य हो।
7: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: ल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: अरे बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए। मैंने आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग अभी आपने सुना।

प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, बज चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12, और ये समय होता है खास उन श्रोताओं के लिए जिन्हें पसंद हैं नए फिल्मी गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का नए फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रेया घोषाल के गाए फिल्म लापता लेडीज के इस खूबसूरत गीत के साथ।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में भी आप सुन रहे थे फिल्म जवान का ये गीत, जिसे लिखा था कुमार ने, संगीत निर्देशन अनिरुद्ध रविचंद्र का था। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। गायक कलाकार हैं सचिन चिगर, वरुण जैन और राघव चैतन्य। गीत के बोल लिखे हैं इंद्रनील ने, संगीत निर्देशन सचिन और जिगर की जोड़ी का।

जुबिन नौटियाल की आवाज में भी आप सुन रहे हैं फिल्म रेड 2 का ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत निर्देशन रोचक कोहली ने किया है।

यह है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा, ज़ारायस खान, नबील शौकत अली की। गीत के बोल लिखे हैं कुमार और खादिम हुसैन ने। संगीत निर्देशन तनिष्क बागची और साजी अली का। फिल्म का नाम है खेल खेल में।

विशाल मिश्रा, नबील शौकत अली और ज़ारा एस खान के गाए फिल्म खेल खेल में के इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ और नए फिल्मी गीत लेकर हम आएंगे आपके लिए शाम 5:40 पर। अब समय हो रहा है श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का।

बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे गीत का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी बात है। विषय है जल संचय कितना जरूरी है। कहा गया है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। यदि आज हम पानी की एक एक बूंद बचाएंगे तभी आने वाला कल सुरक्षित होगा। आज शहरों से लेकर गांवों तक जल संकट गहराता जा रहा है। कहीं भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है तो कहीं गर्मियों में पीने के पानी के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में जल संचय केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। घर की महिलाएं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। रसोई, घर की सफाई, कपड़े धोने और बागवानी जैसे दैनिक कार्यों में अगर थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हर दिन हम लोग चलें तो बहुत सारा हम लोग पानी बचा सकते हैं, जल संचित कर सकते हैं। बहनों, चलिए जानते हैं कि हम अपने घर में जल संचय कैसे कर सकते हैं। वर्षा जल के संचय की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर घर में कोई भी नल टपक रहा है तो तुरंत उसकी मरम्मत करवाएं। अगर हम लोग घर में जैसे सब्जियां धोते हैं तो उसके पानी का उपयोग पौधों में करें। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे पुदीने के पौधे हैं, धनिया पत्ती हम लोग घर में लगाते हैं, टमाटर गमलों में लगाते हैं, इन सबों में उस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हर घर में आजकल गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वाहन धोने के लिए हम लोगों को पाइप की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार ही पानी को खर्च करें और इसके साथ ही खुद तो बचाएं ही, बच्चों में बचपन से ही आदत डालें कि वो पानी को बचाएं। बहनों, जल केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि प्रकृति की अनमोल धरोहर है। जिस तरह हम धन की बचत करते हैं उसी प्रकार पानी की बचत भी जीवन की सुरक्षा है। हर परिवार अगर केवल 10 से 20 लीटर पानी भी बचा ले तो पूरे देश में करोड़ों लीटर पानी सुरक्षित किया जा सकता है। यही छोटी छोटी पहल भविष्य में बड़े परिवर्तन का आधार बनेगी। खेती किसानी में भी जल संरक्षण का विशेष महत्व है। वर्षा जल का संग्रह, तालाबों का संरक्षण, खेतों में मेड़बंदी और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई पद्धतियां पानी की बचत के साथ साथ अच्छी फसल देने में भी सहायक हैं। तो बहनों, आज की बचाई गई एक बूंद आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत बन सकती है। तो चलिए, इसी सोच के साथ आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

मैंने अभी हम बात कर रहे थे वर्षा की बूंद की जल संचयन के बारे में, तो हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल संचय करना एक बहुत अच्छी आदत है। कभी ऐसा भी होता है, याद होगा आप लोगों को, कि बाढ़ की स्थिति में पानी उबालकर भी पीना पड़ता है। उसी पानी को, बारिश का ही पानी क्यों ना हो, उसको संचय करके, उसे बॉइल्ड करके, ठंडा करके, साफ करके, कपड़े से छान

0: जानकर उसको पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। तो जब अच्छी आदत होती है तो अच्छी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो चलिए बहनों, अब आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। तो आइए सुनते हैं वार्ता।
1: नमस्कार बहनों, छोटी मुलाकात के अंतर्गत आज हूँ मैं आपकी रेडियो सखी लालती, और आज हम आपसे जो बातें करेंगे उसका विषय है बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक। प्यारी बहनों, बच्चों का टीकाकरण उनके स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की नींव है। जन्म के बाद शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए वह कई गंभीर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और उसे रोगों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। श्रोता बहनों, टीकाकरण से बच्चों को पोलियो, खसरा, तपेदिक, टिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी तथा अन्य कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। समय पर लगाए गए टीके न केवल बच्चे की सुरक्षा करते हैं बल्कि परिवार और समाज में संक्रमण के फैलाव को भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोता बहनों, टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए माता पिता को अपने बच्चे का टीकाकरण निर्धारित समय पर और सरकारी अस्पताल में ही करवाना चाहिए। टीकाकरण केवल एक बच्चे की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक है, और वार्ताकार थी लालती कुमारी। तो चलिए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जो बरसात से भी जुड़ा है और भविष्य से भी। केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। इसका संदेश है, बारिश की हर बूंद को वहीं बचाइए जहां वो गिरती है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भूजल का स्तर बढ़ाना और जल संकट को कम करना है। बहनों, यदि हम अपने घर, कार्यालय और समुदायों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें तो भविष्य के लिए पानी का महत्वपूर्ण भंडार तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जहां वर्षा का जल का संग्रह हो वहां उसकी नियमित सफाई और उचित रख रखाव भी आवश्यक है, ताकि पानी दूषित ना हो और मच्छरों के पनपने की संभावना ना बने। स्वच्छ जल संरक्षण और स्वच्छ वातावरण दोनों साथ साथ चले, तभी हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही बरसात में सेहत का ध्यान रखें, ताजा भोजन करें, कम मसालेदार भोजन का सेवन करें, कभी भी बाहर से कहीं से आएं तो हाथ और पैर को जरूर धोएं। कहने का मतलब है कि स्वच्छता का ध्यान रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बहनों, इस मौसम में मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बुरी तरह से फैलती हैं, तो ऐसे में सोते वक्त आप मच्छरदानी का प्रयोग जरूर से करें। कोशिश करें कि बारिश के वक्त घर से कम निकलें, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप बाहर निकले छाते का प्रयोग करें, और अगर इसके बावजूद भीग जाती हैं तो जितनी जल्दी हो सके शरीर को सुखा लें और भीगे हुए कपड़ों से मुक्ति पाएं, क्योंकि इससे बहुत सारी त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि रैशेज, खुजली, दाने। इन चीज़ों से बचने के लिए आप कपड़े को ज़रूर से बदल लें। बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। तो बहनों, थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम स्वयं और अपने परिवार को इस मौसम में भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम जानेंगे काजू कतली बनाने की विधि। बहनों, काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लोग गिफ्ट के तौर पर भी त्योहारों में रिश्तेदारों को, दोस्तों के घर इसे लेकर जाते हैं और घर में भी सभी इस मिठाई को बेहद पसंद करते हैं। बाजार में इसकी आसमान छूती कीमतें और मिलावट का डर अक्सर हमें परेशान कर देता है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि अब हम आपको पैसे खर्च करने नहीं देंगे तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना? तो आइए, घर में मौजूद दो चीजों से आसानी से बनाते हैं काजू की कतली। कतली यानी कि बर्फी। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए उसे लिख लें। काजू की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप चीनी, एक छोटा चम्मच घी, काजू दो कप और चांदी का वर्क ऊपर से सजाने के लिए। बहनों, चांदी का वर्क किसी भी मिठाई के ऊपर से अगर हम लोग लगा देते हैं तो वो मिठाई देखने में बड़ी खूबसूरत लगने लगती है, और जब कोई चीज़ देखने में सुंदर होती है तो बरबस ही सबका ध्यान इसकी तरफ चला जाता है और मन करता है कि चलो कितनी जल्दी चलकर खा लेते हैं उसको। त्योहारों में तो अक्सर ऐसा होता है कि जब थाल में सजाकर हम लोग मिठाई रखते हैं और बच्चे देखते रहते हैं तो कई बार तो कई बच्चे पूजा से पहले ही जाकर थोड़ा सा तोड़कर उसे मुँह में डाल लेते हैं। ये सबके घर में होता होगा ऐसा। तो चलिए बनाते हैं वैसे ही स्वादिष्ट, पौष्टिक

और देखने में बेहद खूबसूरत मिठाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग काजू को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसे मिक्सी में खूब महीन पीस लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है पीसते वक्त कि बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं जाता और मिक्सी में हम लोग बहुत ज़्यादा पीस देते हैं तो परेशानी आती है कि काजू में से तेल निकल आता है तो फिर बर्फ़ी बननी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा एक दाना उसको दरदरा रखें। पीसने के बाद आप इसको छलनी से छान लें ताकि जो भी थोड़े भी टुकड़े अगर मोटे रह गए हैं तो वो उसमें से अलग हो जाएं। इसके बाद आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। चीनी को पानी में घुलने लायक और चिपचिपी होने तक, यानी कि हमें चाशनी नहीं बनानी है पर चिपचिपी होने तक 3 से 4 मिनट तक उसे चलाते हुए पकाना है। जब चीनी घुल जाए तो गैस को गर्म कम कर दीजिए और काजू पाउडर को उसमें धीरे धीरे से मिलाते रहिए और लगातार इसे चलाती रहिए ताकि इसमें गांठ ना पड़े। अगर आपका मन है तो इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल सकती हैं। इसे तब तक धीमी आंच पर चलाएं जब तक कि यह कढ़ाई का किनारा ना छोड़ दे। इसे देखने के लिए थोड़ा सा मिश्रण हाथ पर लेकर आप रगड़े, अगर वो हाथ पर नहीं चिपक रही है तो समझ जाइए कि यह बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आप गैस को बंद कर दें और जब थोड़ा सा सुसुम जैसा, गुनगुना जैसा मिश्रण रह जाए तब एक बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा दें और इस मिश्रण को उस पर फैला दें। अच्छे से हाथ से इसको ठोक कर चिकना कर लें और फिर आप क्या करें कि इसके ऊपर एक दूसरा बटर पेपर फैलाकर बेलन से बेल दें और फिर उसके ऊपर बर्फ चिपका दें और जैसा शेप आपे पसंद है, आपको तिकोना पसंद है, जैसा भी आपको पसंद है उस आकार में इसको काट लीजिए। तो लीजिए बहनों, तैयार है शुद्ध और मुंह में घुल जाने वाली होममेड काजू की कतली। बाजार से खरीदने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में बनाकर एक बार देख लें और फिर कोई भी पूजा पाठ त्यौहार कुछ भी है तो आसानी से इसको बना लें। हर घर में काजू पिस्ता बादाम तो होता ही है तो आप आसानी से और बहुत कम समय में इसे बना सकती हैं। तो बहनों, अगर आप भी चाहें तो अपने कोई भी संदेश, कोई भी सुझाव हमारे कार्यक्रम संबंधी हमें हमारे पते पर लिखकर पत्रों के माध्यम से भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो बहनों, आज बातें तो ढेर सारी हुई, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करने में, अपनी बातों को, अपनी सोच को आपके साथ साझा करने में। लेकिन स्टूडियो में लगी घड़ी इशारा कर रही है कि चलो श्वेता, अब धीरे धीरे वक्त हो रहा है अपनी प्यारी श्रोता बहनों से विदा लेने का। तो दीजिए इसी के साथ अनुमति श्वेता को। मुलाकात होगी फिर किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया।

0: इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 1:15 पर होगा आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 2:00 आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना। कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:30 पर। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। आज आप इसमें सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम। कुछ नए फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:40 पर। शाम 6:10 पर आज आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा और विद्यापति गीत का समय होगा 6:15 पर। शाम 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद और गाम घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नन्ना मुन्ना राही शाम 6:30 पर। किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती गृहस्थी होता है शाम 7:00 और जिले की हलचल के साथ आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होता है रात्रि 8:15 पर। 8:45 पर आप सुनते हैं समाचार संध्या 9:00 न्यूज़ @9 और 9:15 पर उर्दू खबरें।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरणी। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कविता। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्रोताओं, गर्मी से काफ़ी हद तक हमें निजात मिल गई है। बारिश के मौसम ने दस्तक दी है, काफ़ी ठंडक का अनुभव हो रहा है, लेकिन बरसात के साथ साथ हमारी धरती पर जितनी हरियाली आती है, आसपास पानी और कीचड़ होने से कुछ कुछ संक्रमण होने का खतरा भी रहता है। तो इस मौसम में मौसम का लुत्फ लेते हुए अपना ढेर सारा ध्यान रखें। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपके पत्रों को और आपके फरमाइशी गीतों को शामिल करते हैं कार्यक्रम का। ये जो पहला पत्र है मेरे हाथ में, ये आया है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भाई कारी राय कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूक भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से। आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक और पंखुड़ी, कांति निकेतन, राजनगर मधुबनी से। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता, ये सुनना चाहते हैं फिल्म बरसात का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन तैयार की है शंकर जय।

किशन की जोड़ी ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, इन्होंने हमें अभिनंदन कहा है। आपको भी हमारा अभिनंदन, साथ ही पत्र भेजने के लिए धन्यवाद। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। लीजिए आप सबों की फरमाइश।

शेरपुर कलां गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। लीजिए आप सबों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बरसात से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल ही तो है। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और साथ ही गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत निर्देशन रोशन का है। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है हमारे पास बरेडी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। लेवाखेल मोहल्ला चांदोर विश्वा से आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमार चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी और वानी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। लीजिए आप सबों की फरमाइश पर फिल्म दिल ही तो है का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला पत्र आया है हमारे पास, ये है बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र और वंश प्रसाद। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का ये गीत जिसे गाया है परवीन सुल्ताना ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का है। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश आई है हमारे पास नरन स्टेट फुटानी चौक से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फोकली झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर और ललन मिश्रा। गोविंदपुर धनबाद से आप हैं शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। इन्होंने कहा है कि आप अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दीजिए, तो हम आपको शामिल कर रहे हैं फिल्म कुदरत के इस खूबसूरत गीत में। जिसके लिए एक और पत्र आया है हमारे पास, यह है पटेल नगर मलोट पंजाब से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। लीजिए सुनिए परवीन सुल्ताना की आवाज़ में फिल्म कुदरत का ये गीत।

श्रोताओं, एक सुखद संयोग है, आपको बता दें कि अभी जो हम ये गीत सुन रहे थे फिल्म कुदरत का परवीन सुल्ताना की आवाज़ में, तो आज परवीन सुल्ताना का जन्मदिन है, तो उन्हें याद करते हुए हमने ये गीत सुना आप सबों की फरमाइश पर। कार्यक्रम का अगला पत्र गोकुल चौक गंगजला सहरसा से, ये हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मंजिल फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश आई है हमारे पास महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। इन्होंने कहा है कि आप कोई भी गीत अपनी पसंद का हमें सुनवा दें, तो हम आपको शामिल कर रहे हैं फिल्म मंजिल के इस गीत में। इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से आप हैं नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासु देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सहनी। शुभंकरपुर दरभंगा से आप हैं मिट्ठू जी, रंजना जी, राजेश जी, चंचल जी, अनिकेत, शालू, साक्षी, अनमोल बाबू, मिष्टी और मौली। आप सबों की फरमाइश पर फिल्म मंजिल का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अगली फरमाइश आई है, ये है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। झंझारपुर लंगरा चौक से आप हैं हरिराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये पत्र है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मिका बिरक। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शहनाई का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत निर्देशन रवि का है।
1: न झटका ज़ुल्फ़ से

और ये फरमाइश आई है हमारे पास लाल पोखर दरभंगा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कलीम दीवाना, सोनी बेगम, रोजी परवीन, शमा परवीन, डॉली परवीन, मोहम्मद दानिश बाबू, मोहम्मद अमन बाबू, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रियाज बाबू, मेहरा परवीन, आयशा परवीन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। नाहर मंटोला से आप हैं कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद जाहिद अली। जतुका किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम और चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं हिना कैसर और मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। ये पत्र आया है हमारे पास कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सऊफ्ता प्रवीण, शाहीन प्रवीण, नेमत प्रवीण।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय भी समाप्त हो रहा है। तो श्रोताओं, यदि आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं तो पत्र लिखें हमें। हमारा पता है वही, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। हमारा पिन कोड है 8460004। प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ मुझे कविता को दीजिए अगले अंक तक के लिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आपको लिए चलते हैं अपने पटना केंद्र।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। 6 योजनाओं के प्रत्येक को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर पेंशन राशि भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिल सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सभी 5ों घटक दलों के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, विकास कार्यों की नियमित निगरानी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा

उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा की प्राइड और पिपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में तीन हजार से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया निगरानी विभाग ने पूरी कर ली है और इसमें 3035 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुंगेर जिले के भीमबांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और लगभग 8 क्विंटल चावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत टोबी चेक पोस्ट के पास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे को ओडिशा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

श्रोताओं, लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 2026 पद हैं। इसमें से, माफ कीजिएगा, कुल पद 1829 हैं। आवेदन 14 जुलाई 2026 से शुरू होंगे। आप 3 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in। आप यहां पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं।

जेकेएसएसपी 2026 कुल पद 130 हैं। आवेदन 22 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। आप 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। ऑफिशियल वेबसाइट है jkssp.nic.in।

बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ रिक्तियां हैं। कुलपद 779 हैं, आवेदन 30 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। आप 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल और अधिकतम 45 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 कुल पद 6557 आवेदन 30 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन 29 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष है। आप विस्तृत जानकारी रेलवे के वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

0: हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

की। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र

0: वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ए विकसित भारत बाय 2047। नेशनल इंटीग्रेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन एज रिलेवेंट एज एवर। सरदार वल्लभभाई पटेल जी बिलीव्ड फॉर ए रिच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ए स्ट्रांग सेंटर वॉज एसेंशियल टू मेंटेन यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में

0: के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म पारस मणि के इस खूबसूरत गीत के साथ। जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं असद भोपाली के लिखे हुए कुछ गीत।
3: वो जब याद आए

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक कलाकार हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का।

फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज असद भोपाली के लिखे हुए कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक नारी दो रूप से। गणेश के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हमने आपको आज सुनवाए असद भोपाली के लिखे हुए कुछ गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं आपको फिल्म ठाकुर जर्नैल सिंह का ये गीत आशा भोसले की आवाज में, गणेश शर्मा का संगीत निर्देशन।

आज असद भोपाली के याद का दिन था, तो उन्हें याद करते हुए आज हमने आपको सुनवाए असद भोपाली के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही अपने स्मार्टफोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी। श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:03 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारी लॉन्ड्री है, बेंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: अच्छा, 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है, बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं क्षमा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सुहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी। क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ, उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा।
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की
0: जी,
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा।
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं
0: जी,
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं
0: जी। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं।
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है तो उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको गिफ्ट मिलता है और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की
0: जी। और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं,
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले
0: जी जी जी,
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी। तो फिर
1: नहीं आता है?
0: हाँ जी।
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी
0: जी,
1: उसका माँ बाप नहीं थे तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया
0: जी। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है आँखियों के झरो के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन है।
0: क्या बात है। आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाए, और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं?
1: जी जी।
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें तो साझा कीजिए।
1: जी जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
0: जी,
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी,
1: पानी में, बारिश में, वहाँ पर
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए, आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल करती थी?
1: बारिश में भिगना,

0: पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
1: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती है, ये इस बारे में कुछ बताइए।
0: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
1: जी,
0: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
0: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं
1: जी। तो
0: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
1: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
0: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
1: तो ये बहुत

0: की हो गई मैं
1: जी, तो
0: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
1: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
0: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
1: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं दिल अपना और पीत पाई का गाना है। दिल अपना
1: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
1: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना, गृहिणी
0: बन ही जाता
1: है जी। जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया है ना,
0: कुछ भी बना। हाँ,
1: और मान लीजिए सूजी कम है तब
0: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
1: जी,
0: बहू, पोते पोती।
1: क्या बात है, भरा पूरा परिवार है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
1: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ
0: जी।
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
0: जी।
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे।
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत
1: है। नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए, अपने बारे में कुछ बता

0: ये हमें
1: एक हाउस वाइफ हो, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियां हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
0: जी।
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ।
1: हरी भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी।
1: और उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
1: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस से रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार
0: जी जी,
1: उसमें जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: है। रामचरितमानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं स्टोरी
0: जी,
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: क्योंकि वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
0: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के
0: जी।
1: और मैं सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है
0: जी।
1: स्वप्न झरे फूल से, नीत चुभे शूल से,
0: वो
1: है ना कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक ठीक ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे
0: जी,
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने की कोशिश करी और कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: जी,
1: चारों तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहाँ पर भी खूब हो रही है?
1: बहुत हो रही है।
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी
0: जी,
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
0: जी
1: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में?
1: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शौक बरकरार है, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
0: जी,
1: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं, पर मिलते हैं।
0: क्या
1: कभी
0: बात,
1: कभी कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
0: जी,
1: तो म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
0: जी,
1: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम था
0: जी,
1: पहला स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
0: जी जी जी,
1: तो बहुत खेला है, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: स्कूल पूरा, कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
0: तो अंजू जी, आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब की रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है?
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है।
1: हाँ,
0: उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से।
0: अच्छा।
1: जिला सीखे ही बहुत बनाते थे और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी जी,
1: तो मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती है? आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना।
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी,
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं तिलक मंदिर का ये प्यारा संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हमको बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें
0: जी,
1: घर पे रहें
0: जी। और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना। मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
0: जी,
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
0: अच्छा,
1: और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास,

0: जी,
1: नंदी
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा,
0: भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई,
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867 0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त

0: होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है,

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब

से संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की

आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहाँ से लौट तो आया, लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे, लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी। और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता, कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था, उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता

करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

रमेश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी के साथ।

युवाणी के सभी युवा मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे। और बढ़िया सी बात ये भी है कि देखिए, ये जो मौसम है बरसात का, लगता है कि अब पूरा हम लोगों को भिगोने के चक्कर में तो लगा ही हुआ है। और इस मौसम का अपना आनंद है, अपनी मस्ती है। एक तरह से कहें तो इस मौसम में हम लोग चाहते भी रहते हैं कि भाई कहीं से बादल आए, ठंडी हवाएं चलें और बारिश की फुहारें पड़े। क्योंकि जब गर्मी का जो मौसम होता है ना, एकदम लू वाला मौसम, तो जी हलकान रहता है, इच्छा होती है कि भाई ये मौसम कब बदलेगा। और मौसम का जो तकाजा है ना दोस्तों, वो तो यही है कि हर मौसम में जब अति हो जाती, अति कहने का मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़े तब भी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तब भी, सर्दी के मौसम में कहते हैं उफ ये सर्दी, ओहो हो, और फिर गर्मी के मौसम में हे भगवान, ये मतलब कितनी गर्मी है, कितना उमस है। तो अपने देश में तो समझिए कि जैसे भाषा की विविधता है, बोली की विविधता है, पहनावे ओढ़ावे की विविधता है, वैसे ही मौसम की भी विविधता है। वही कई तरह, हर तरह के मौसम हमारे यहाँ है। और मौसम की भी अगर व्याख्या करें तो ऋतुओं की भी बात है भाई, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, इस तरह से मतलब एक मौसम में भी अलग अलग ऋतु, यानी अलग अलग अनुभूतियाँ। भाई अपना देश तो महान है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन एक ज़रूरी बात यह भी है कि मौसम अपने के अपने साथ जो है ना, जितना आनंद लेकर आता है, जितनी खुशियाँ लेकर आता है, उतना ही हमें सचेत भी करता है कि देखो भाई, अगर गर्मी है

लू के थपेड़े चल रहे हैं तो हमसे बच के रहो, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो पूरे कपड़े पहनो, पूरे शरीर को ढक के रखो, और जब ये मौसम बरसात का है तब भी ज़रूरी बातें ये है कि जब भी तेज़ बारिश हो, ठनका ठनके यानी बिजली चमके, तो ऐसे में वज्रपात की भी संभावना रहती है। और हम युवाओं में क्या बात है ना कि एक बार निकल गए, चल पड़े तो चल पड़े, भाई है बारिश हो रही तो हो रही, बाइक चला रहे तो चला रहे किसे ख्याल है भाई, तूफानों से लड़ना हमें आता है ऐसा सोच के, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने को बचाने की ज़रूरत है। आज बहुत सारी बातें करेंगे हम मौसम पर, और ये जो बरसात के मौसम में हम अपना ख्याल कैसे रखेंगे। भाई देखिए भाई, पढ़ाई लिखाई और जो परीक्षाओं की तैयारियां हैं, ये सारी चीज़ें ठीक से तब चलेंगी जब हम बिल्कुल अपने को दुरुस्त रखेंगे। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहा, हम रुग्ण हो गए, हम बीमार हो गए, तो फिर इसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, इसका असर सिर्फ हमारे मन मस्तिष्क पर ही नहीं पड़ता है, हमारी स्टडी पर भी पड़ता है, हमारे अध्ययन पर भी पड़ता है। और अगर ये चीज़ें प्रभावित हो गई तो फिर से रिस्टोर करने में, अपने आप को ठीक करने में, अपनी पढ़ाई को फिर सुचारू करने में भी समय लग सकता है। देखिए, अच्छे से मौसम की बात करते करते कहाँ से कहाँ चले गए हम, चलिए ना लोकगीतों की तरफ, मीठे मीठे लोकगीत सुनते हैं। पहला गीत विभा सिन्हा के स्वर में सुनवाते हैं आपको, कजरी है ये लोक कंठों में बसे हुए गीत, जिसमें देखिए मौसम भी है, सुनते हैं ये गीत।

विभा सिन्हा की गाई कजरी के बाद संतोष यादव का ये स्वर था। सुन रहे थे देवी गीत लोढ़ी लोढ़ी फूल। देखिए दोस्तों, हमारे जो ये लोकगीत है ना, ये कहाँ से आए? अरे ये कहीं से आए नहीं है, ये परंपरा से आए हुए गीत हैं जो हमारे पुरखा गाते रहे हैं। और आज अगर कोई गीत लोकगीत बनाया भी जाता है ना, कुछ लोग लिखते हैं बड़े अच्छे, बड़े मनभावन, फिर उसे जो हमारा जो लोक संगीत है उन संगीत से उसे पिरोते हैं और फिर अपनी अगली पीढ़ी को दे देते हैं। हालांकि हर युग में संगीत पर जो वर्तमान होता है ना, वर्तमान समय का असर थोड़ा तो पड़ता ज़रूर है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन लोक कंठों में बसे ये लोकगीत बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मधुर होते हैं, बड़े मनभावन होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम आपको आगे भी गीत सुनवाएंगे, लेकिन बरसात की चर्चा हम कर रहे थे ना, हमने ये भी बात कही थी कि देखिए अगर अतिशय वर्षा है, अगर ज़्यादा बरसात की बात है, ठटका ठटकने की बात है, तो फिर हमें थोड़ा सा सचेत रहने की भी ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा बारिश हो, जब वज्रपात की स्थिति हो, तो आपने गौर किया होगा आपके मोबाइल पे अलर्ट आता है। बिल्कुल ये आपदा विभाग जो है ना ऑटोमेटेड है, ये संदेश उस क्षेत्र के लोगों को एक तरह से, देखिए एक समय था जब समंदर में जब बड़ी ज्वार भाटा की स्थिति होती थी बहुत ज़्यादा, या फिर सुनामी का खतरा होता था, तो एक ज़माना था जब एक बार सुनामी आ जाए ना तो लाखों लाख लोग, मैं सैकड़ा और हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, समुद्री तट पर बसने वाले लाखों लाख लोग काल कवलित हो जाया करते थे। और वो समय बड़ा भयावह होता था, समुद्र में बह जाने वाले लोगों की जो है ना स्थिति, वो बड़ी हृदय विदारक होती थी। और कई दिनों तक डेड बॉडी मिलने की बातें होती थी, कितने लोग गायब हो जाते थे। लेकिन आज सूचना तकनीक जो है, सूचना तकनीक ही नहीं बल्कि मौसम को लेकर के जो पहले से कयास लगाए जाते हैं, हालांकि हर बार 100% यानी पूरा का पूरा जो है ना अनुमान सही नहीं भी होता है, लेकिन इस तरह की त्रासदियों में जो संभावना व्यक्त की जाती है, तो समय रहते दो चार दिन पहले से ही एकदम से चेतावनी दे दी जाती है कि भाई इस एरिया में, इस क्षेत्र विशेष में मौसम पूर्वानुमान में जो त्रासदी की बात होती है ना, वो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और इस तरह से लोग पहले से सचेत हो जाते हैं, समंदर में जो मछुआरे होते हैं, मछली मारने वाले या फिर अन्य कार्य में लगे हुए लोग, वो तटों पर वापस आ जाते हैं, या सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उसे कर लेने की स्थिति होती है। लोग घरों में रहते हैं उस अवधि में, और जान माल की हानि जो है पहले की तुलना में अब बहुत कम हो गई है। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है हमारी आधुनिक तकनीक की वजह से, ये हुआ है हमारे सचेत रहने की वजह से, और ये हुआ है हमें जागरूक किए जाने की वजह से भी। तो हम समय समय पर एक सूचना जो है हमेशा दिया करते हैं, समाचार के माध्यम से भी सूचनाएं दी जाती हैं, अन्य जो समाचार के विकल्प हैं उससे भी, अखबारों से या फिर मोबाइल पे मैसेज से, वहाँ से आपको सूचनाएं मिल जाती हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन वज्रपात की जो स्थिति होती है वो कहा नहीं जा सकता है कि ये कहाँ पे गिरेगा। तो लेकिन बिजली गिरने की जो बात है वो यही है कि ऊँची इमारत, ऊँचे पेड़, ये सब जो है ना वो एक तरह से बिजली को न्योता देते हैं अर्थिंग की वजह से। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ऊंचे पेड़ों की छांव में चले जाते हैं, उसके नीचे चले जाते हैं, या फिर ध्यान नहीं देते।

हैं कि हम हैं कहाँ, तो इस तरह जो दिक्कत आती है तो इन सब से तो बच के रहने की स्थिति होती है। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि बरसात के मौसम में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उसको लेकर के भी हमें सचेत रहना चाहिए। लेकिन जब बिजली की बात हुई है तो एक बात और भी है कि हम ऐसी जगह पर शरण लें जहां पर खतरे कम हों। अगर तेज बारिश हो रही हो तो, अगर वज्रपात की संभावना हो तो, और दूसरी बात कि टीन वाले जो छत होते हैं ना, वो शेड, अमूमन उन सब से हमें बच के रहना चाहिए। जो ताड़ के पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं, इस तरह के पेड़ या बहुत ऊंचे बड़े पेड़ हैं उसके नीचे कहीं भी शरण लेने की स्थिति होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, देखिए अभी ये जो मौसम है धान रोपनी का है, तो कई बार आप सुनते होंगे, देखते होंगे अखबारों में कि धान रोपने के क्रम में बरसात के समय वज्रपात की वजह से कई किसान जो है ना उसकी चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो भाई उस तरह की स्थिति में अपने को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ तक हो बच के रहें, और जो सुचालक है, जो अर्थिंग को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो घरों में वज्रपात से बचने के लिए जो अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है, कॉपर वायर या रॉड लगाए जाते हैं, या जो ऊंची बिल्डिंग है उसमें भी इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि कम से कम क्षति हो। तो दोस्तों बातें होंगी लेकिन लोकगीतों का भी सफ़र चलता रहेगा। दीपक कुमार झा के स्वर में ये मैथिली गीत सुनते हैं।

ब्रजेश कुमार सुमन का ये स्वर था, सैया नादान है हमर हे सजनी। देखिए लोक गीतों में जो है ना वो सिर्फ श्रृंगार की बातें नहीं है, सिर्फ किसी विधि की बात नहीं। विधि कहने का मतलब जो विध होता है ना, विवाह या मुंडन उपनयन जो संस्कार होते हैं, सिर्फ उनकी ही बात नहीं होती है, बल्कि सामाजिक रूप से अगर कुछ विकार है, अगर कोई समस्याएं हैं, तो फिर उनको लेकर के भी लोग जो है ना कुछ न कुछ गीत बनाते हैं ऐसे, जिसमें समाज में जागरूकता भी आए और एक संदेश जाए लोक गीतों के माध्यम से, लोक कंठों के माध्यम से, और उसका असर हमारे सामाजिक परिवेश पर भी पड़े, और असर कहने का मतलब अच्छा असर पड़े। तो और भी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातचीत अपने स्वास्थ्य को लेकर कर लेना, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में हम थोड़ा सा अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, इस मौसम में क्या होता है ना कि रातों में हम गर्मी में उमस में सोते हैं, और सोई अवस्था में जब हम गहरी नींद में होते हैं, अचानक से बादल घेर आते हैं, तेज ठंडी हवा चलने लगती है, बारिश की फुहार आ जाती है, और हमें बड़ा खुशगवार अनुभव होता है, अच्छी नींद हम सोते हैं। लेकिन उसी अवधि में जो हमारा जो शरीर का जो विन्यास है, जो तंत्र है, वो तापमान को लेकर थोड़ा सा अपने को एडजस्ट यानी अपने को सामान्य नहीं रख पाता है कभी कभी, और अक्सर हम में से कुछ लोग मौसम परिवर्तन को लेकर थोड़ा सा हलकान हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं, और कई बार हमें बुखार हो आता है, कई बार हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उस समय कभी तेज़ बुखार, देह हाथ में दर्द, नाक से पानी का बहना, सर्दी लग जाती है, और उस वजह से हम पीड़ित हो जाते हैं। कई बार ये समस्या जो है वो थोड़े से परहेज के बाद, दो तीन दिनों के बाद, चार पांच दिनों के अंदर स्वतः ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा कार्य करती है, और हम धीरे धीरे अपने को रिस्टोर कर लेते हैं। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है, जो रहने वाला बुखार, रहने वाला सरदर्द, रहने वाला बदन दर्द, ये लगातार बना रहता है, फिर हमें डॉक्टर चिकित्सक की शरण लेनी पड़ती है, और फिर कुछ दवाएं लेनी पड़ती है, और हम ठीक भी हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम परहेज क्या करें। तो देखिए, मौसम परिवर्तन को लेकर थोड़ा सा हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। कपड़े उतने ज़रूर पहने कि हमें ठंड न लगे। अगर बारिश में हम भीग जाते हैं तो घर आते ही हम उसे कपड़ों को बदल लें, ऐसे कपड़े पहने जो एक मतलब शरीर के साथ थोड़ा सा हवा का जब कुछ का जो आदान प्रदान है वो भी हो, ढीले ढाले थोड़े से वस्त्र हो तो और अच्छा है। दूसरी बात, सिर्फ सर्दी खांसी बुखार ही इस मौसम में नहीं होता है दोस्तों। इस मौसम में अक्सर जो समस्या होती है वो है क्या कि फंगल इन्फेक्शन स्किन में, वो भी हो जाता है उंगलियों के बीच में, या फिर जांघों के बीच में जो संधि स्थल है उस जगह, कुछ लोगों को कांख में बगल में, वहाँ भी जो है ना, कुछ लोगों को आर्मपिट में, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती है, कुछ लोगों को दाने निकल जाते हैं, और ये भी पीड़ादायक होती है। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा डॉक्टर बताते हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि उन स्थल को थोड़ा सा हम लोग सूखा रखें, और एंटी फंगल जो वाइंटमेंट है या दवाएं हैं वो डॉक्टर की सलाह पर हम उसका इस्तेमाल करें, तो फिर इन सब चीज़ों से बचेंगे। लगातार भीगने की स्थिति न हो इसका भी ख्याल रखें, छाता का उपयोग करें, रेन वियर का

उपयोग करें और ऐसे ही नहीं निकल जाएं, बल्कि अगर मौसम पूर्वानुमान है कि भाई आपके एरिया में बारिश की संभावना है तो तैयारी के साथ निकलें तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी बात कि इस मौसम में अक्सर बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए हम दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि फिसलन होती है सड़कों पर, कई बार जल जमाव होता है, इतना ज़्यादा होता है और जल के नीचे, पानी के नीचे जो धरती है, जो सड़क है, वो उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। कई बार गड्ढे हो जाते हैं उसके भीतर और ऐसे में दुर्घटना हो जाती है और कई बार हम घायल भी होते हैं और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस मौसम में थोड़ा सा सचेत होकर वाहन चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते अगर हम लोकगीत का आनंद ले लें तो ये और भी बढ़िया है। सुनवाते हैं ये लोकगीत।

संत कुमार झा के स्वर में ये कजरी हम सुन रहे थे हमारे युवा दोस्तों। और देखो देखिए भाई, देखिए देखो निकल गया हमारे मुँह से, लेकिन सही बात है, हम उम्र में तो देखो निकल जाता है, कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन

देखने वाली बात यह है कि हम युवाओं को अगर ये कहा जाए कि भाई हम जो भी करें, जो भी पढ़ाई लिखाई करें या जो हम में कुछ हुनर है तो हम उसे ऐसे मांझे जो हमारे लिए रोजगार का जो एक साधन है वो भी हो। तो इस क्षेत्र में अगर हम कौशल विकास की बात करें तो कौशल विकास जो है युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है दोस्तों, बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। इस बार हेलो जिंदगी जो परसों दिन में 11 बजे आप सुनेंगे उसका जो विषय है ना, हम युवाओं के ऊपर ही है। विषय है युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य। हेलो जिंदगी का ये विषय होगा और बतौर विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में आमंत्रित होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो परसों यानी रविवार को दिन में 11 से 12 बजे हेलो जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोफेसर मुनेश्वर यादव से युवाओं में स्किल को लेकर, कौशल विकास को लेकर अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा हो तो व्यक्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए जो संपर्क के लिए नंबर है, फ़ोन नंबर, वो हम आपको बता देते हैं 06272-222-481, 06-272-222-481 और दूसरा नंबर है 9430029353 9430029353। हेलो जिंदगी का समय याद रखें इस रविवार दिन में 11 बजे कार्यक्रम हेलो जिंदगी, विषय होगा युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य। सुनिएगा जरूर और हिस्सा भी बढ़िएगा। आज की युववाणी से यही हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत। सुनते हैं कुछ नई फिल्मों से लिए गए चुनिंदा गीत।

हीर एक्सप्रेस। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सबीर कौर और नवी शरण की आवाजों में। हरमनजीत का लिखा यह गीत था, संगीतकार थे अवि सराफ। और अब लीजिए कार्यक्रम का यह अगला गीत सुनिए। यह आवाज जुबिन नौटियाल की है, फिल्म का नाम है रेड टू। मनोज मुंतशिर का लिखा यह गीत है, रोचक कोहली का संगीत है।

अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज़ों में। कैसर उल जाफरी का लिखा गीत अब सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी मेट्रो इन दिनों। लीजिए अब सुनिए फिल्म गदर 2 का ये गीत। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है, मिथुन का संगीत है और ये आवाज़ अरिजीत सिंह की है।

0: फिल्म भोला के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। जावेद अली का गाया ये गीत था, इरशाद कामिल का लिखा और रवि बसूर का संगीतबद्ध किया। ये आकाशवाणी दरभंगा है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के

0: छलो कीचड़ में।
1: और सबसे नीक तो लागे छले ओ जखन अपना सबके माथ पर धोकड़ी बना के देल जाय छले जे भीजी हन
0: नै हां मुदा हमरा लोकन बाधवन में जाय छलो हां ओकरा उतार के फेंक देलो आ फुही पर रहल हा आ खूब पान के आनंद लो।
1: लेकिन बोरा के बनायल ओ धोकड़ी ओजका छत्ता से बढ़िया रहे छले आहा के देह भुइया नै दित रहे
0: ओतबे नै बस हवा बसात से होने लगे छल आसस भाई। तो ये हमार सबक जे दिन जो छे जे आब हमरा सबके याद आब रहल छे तब एना ही उतार चढ़ाव होत रहे छे जिंदगी में। तो हमरा लोकन सुने चलो है बाल गीत भने ननपन के दिन रसगुल्ले छे मृदुला मिश्रा के स्वर में सुन लो। आब हमरा लोकन के कार्यक्रम के फिर आगे बढ़ाबी आशुतोष भाई।
1: हाँ हाँ
0: तो हमरा लोकन सुने छे एक धियापुता के लिए जो लाल छे किसले वो आये छे हे कौक मध्य विद्यालय लहरिया सराय दरभंगा संकलन वाचन निर्माण में सहयोग क्षेत्र आशुतोष कुमार झा और प्रस्तुति असद दाऊद के।
1: तो सुनो
2: धियापुता जय।

0: नेनपनके दिन
1: रसगुल्ले छे। हयो हमरा लोकन के त उ दिन हमरो सब याद आब रहल या जखन हमहु सब धिया पुता रही आ जहन माय बाबू जहन हाट बाजार जाय तो कहियो माँ हमरा लेल बड़ी लिखे है कचरी लिखे है मिठाई लिखे है
0: और संगे संग
1: हमरा खुशी भेटे छल
0: निश्चित रूप से। और बरखा बुन्नी के दिन के मुन पारू जे थाल किचो में जे अपना सब बाहर जाए तो कते अपना सब का सुनो पड़े छल
1: सुने पड़े छल चौर चाकर से जहन लटा के आवे

0: बौआ अपना सभक जिंदगी हर लम्हा किछ ने किछ सिखाबैत अछि, हरेक तजुर्बा से नव उम्मीद जगाबैत अछि। अहाँके हरेक पल सिखबाक हुनर अगर आबि जाए तो फेर देखियो न नव करिश्मा से जिंदगी अहाँके की देखाबैत अछि। आजुक किसलाई कार्यक्रम अछि हेकॉक इंस्टीट्यूशन मध्य विद्यालय से।
1: एत बहुत रास धियापुता बैसल छथि, बहुत किस सुनाबे चाहे छथि, आओ आप हिनके सबसे गपशप करी। बौआ की नाम छी अहाँके?
2: हेमा कुमारी।
0: आजुक कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु
0: सुनो
2: यह सभी मेरे साथ सुनाई।
0: बौआ की नाम छी अहाँके?
2: आरती ज्योति।
3: विद्या कुमारी।
4: साजदा परवीन।
5: नंदिनी कुमारी।
0: अहाँ सब मिलकर सुंदर सन गीत सुनाबे चाहे छी, सुनो।
6: सुबह

0: वो की नाम छे के
1: नंदिनी कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में की सुनावा चाहे छे
1: गांधी जी के बारे में कुछ
0: सुनाओ।
2: मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं हैकॉक इंस्टीट्यूशन मध्य विद्यालय कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय गांधी जी पे है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। सत्य स्नेह कर्तव्य निष्ठा का मिश्रित एक प्रकार है। साधारण से सर्वोत्तम का एक उदाहरण अनुपम है। सुख मिले सकल जनमानस को गांधी वह व्यवहार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। क्षेत्र नहीं कोई था ऐसा जो रहा अछूटा गांधी से। ताकत ऐसी कोई न थी जो लड़ सके भयंकर आंधी से। बनकर पर्याप्त अहिंसा का सभी शक्तियां बौनी कर दी। जिसके समक्ष कोई न टिका गांधी वह प्रहार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। भेद मिटाया दोनों का, जूझ रहे जो

0: कष्टों से थे, कष्ट मिटाया उन दिनों का। इस समाज की बीमारी जो लाइलाज है वर्षों से, उस असाध्य बीमारी का गांधी एक उपचार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। धन्यवाद।
1: वो की नाम छी अहाँ का?
2: हेमा कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: दोस्तों को समर्पित।
1: सुनो,
3: आज का मेरा विचार सारे दोस्तों को समर्पित है। मैंने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि यह मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा तेरी आवाज मैंने सेव कर रखी है नंबर तुम चाहे कितने भी बदल लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे तेरी आवाज से ही पहचान लूंगा। ये सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही सुंदर कविता याद आ गई। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत पर, तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है ये, वरना जनाजा और बारात एक ही है। धन्यवाद।
1: वो की नाम छिया का?
4: सिमरन कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में की सुनावा चाहे जी?
4: कविता।
1: सुनो,
4: उमड़ उमड़ कर आसमान में वह

बाद। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडे पर आया छाया, प्यारा शामन भाया बादल आया, बादल आया बादल। वन उपवन

0: से कुछ रंग मांग कर इंद्रधनुष रच लाया, बादल आया बादल आया बादल, धन्यवाद।
1: की नाम से यहाँ का
2: यास्मिन बानो।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
2: कविता
1: सुनो।
0: मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न पाता।
1: बुआ की नाम से यहाँ का
3: स्नादा प्रवीण।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
3: दिस इज द वे वी वॉच आवर फिश, wash our fish, wash our fish, this is the way we wash our fish, this is the way we clean our teeth, clean our teeth, clean our

0: Where are our clothes? This is the way we wear our clothes.
1: बुआ की नाम से यहाँ का
2: सत्यम कुमार
1: आज कार्यक्रम आ की सुनावा चाहे जी
2: कविता
1: सुनो
3: आना मेरे गांव में नदी किनारे गांव है मेरा बैठ के आना नाव में गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाव में सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में यहाँ नकपोई हाट सिनेमा घूमे खेत बगान में जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाव में भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं ना गांव में मस्ती उस दिन धमा चौकड़ी बेला जब हो गांव में जब भी लगे गांव में मेला आना प्यारे गांव में
1: बुआ की नाम से यहाँ का
2: नंदिनी कुमारी
1: आज कार्यक्रम अहाँ के सुनाबा जाए
2: लोकगीत
1: सुना।

0: बुआ की नाम छे अहाँके?
1: करुणेश।
0: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे छी?
1: कविता।
0: सुनो।
1: नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, अब कोई न अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। इस कविता से ये संदेश मिलता है कि बेटी बेटा पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ।
0: बुआ की नाम छे यहाँ का?
2: हेमा कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में हकी सुनाबे चाहे छी?
2: मानव बनो कविता।
0: सुनो।
2: है भूल करना प्यार भी है भूल यह मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आस

0: जबरा, मानव बनो मानव जरा, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा, उफहाई कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो विश्व को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा।
1: बुआ की नाम छी अहाँ का?
2: अभिजीत।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनावा चाहे?
2: कविता।
1: सुनो।
2: एत रहे रे तन तन ते दू टाटा टबारा माते बेटे दिरते भाई भाई हम तारे हिंदू तारे मुस्लिम तारे ती इता हम मंदी मंदी दितना अपने अपनी धरती अपन मनन तन तन ते दू टू टाटा।
1: बुआ अपना सबक जीवन में अगर क्यों असल पथ प्रदर्शन करेत है तो वो किताबे है, देखल जाए तो किताबक सीधा सीधा संबंध अपना सबक व्यक्तिगत सफलता से है, मुदा इहो निश्चित है जे केवल पढ़े टा लेला से सफलता नहीं भेट जाए छे, संगे ही संग कर्म सेहो करिए टा पड़े छे। किताब हुनका सबक लेल मीलक पाथर होइ छन जे व्यक्ति कर्मठ छथि आ कर्मे पर विश्वास करै छथि, कियाकि नीक पुस्तक सदैव कखन की आ केना करबाक अछि नीक जगह बुझाबैत अछि सिखाबैत अछि। ई बात सदैव याद राखी जे पाथर के मूर्ति बनेनहार मूर्तिकार अपन हथौड़ा के अनगिने चोट मारि मारि के मूर्ति के निर्माण करैत अछि। ई निर्माण कोनो एकेटा चोटक परिणाम नहि बल्कि बेर बेर लगातार पड़ल सधल चोटक परिणाम अछि जे मूर्ति के पूर्ण आकार दैत छै। कहबाक तात्पर्य इएह जे कामयाबी रूपी मूर्ति के आकार देबाक वास्ते शिक्षा ग्रहण कऽ जिंदगी के लक्ष्य पर बस चोट मारे जाए सफलता अवश्य भेटबे करत। एकरे संग हम आजुक कार्यक्रम के विराम दै छी, एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लाइक संग धियापुता जय।

0: हाँ श्रोता लोकन अखन है कॉक मध्य विद्यालय लहरिया सराय दरभंगा से हमारा लोकन धियापुता के मुख से ही किसले सुनल छलो संकलन वाचन और निर्माण में सहयोग छला आशुतोष कुमार झा प्रस्तुति असद दाऊद के एक संग कार्यक्रम के फिर आगा बढ़ाबी आब हमारा लोकन चले छी कार्यक्रम खेती गृहस्थी में
1: अब बेर भोगेल हाँ जे आब खेती गृहस्थी में अन्नदाता किसान लोकन का स्वागत करियन उनका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार
0: हमू करे छियन कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त किसान श्रोता लोकन स्वागत करे छियन और नमस्कार करे छियन आ चले छी तनी बाधबंदी
1: एकरा बिना तो अपना सब रहियो नहीं सके छी मुदा एकटा गप कहब साझक समय छे टॉर्च लइए लेब किया कि बरखा बुन्नी में तो देखबे कलो हां आयरे आयर पानि अछि
0: हयो वहाँ तो मनक बात बुझत रहे छी आशुतोष भाई
1: केना नहीं बुझबे यो
0: एहि दुआरे खास कक अखिनका जो समय में खास कक जे वर्षा बुन्दी में जे हमारा लोकन के सतर्क सेहो बहुत विशेष रूप से रहबाक चाही
1: निश्चित निश्चित
0: कवितो छै जे सतर्कता गेल आ दुर्घटना भेल तै दुआरे बरखा बुन्नी में जे समय में जो छे माने कीट व्याधि के समस्या जो छे आशुतोष भाई बेसी से बेसी बढ़ जाए छे ओना ही हमर किसान श्रोता लोकन जखन बाध वन दिस जाए छथिन तो ओना तो हमर सबक आदत छे कि काठ में एकटा लाठी लेके चलू आ एकटा चरबत्ती टॉर्च लेके
1: देखियो अपना सबके इजोत गमछा लाठी तीनू संगे हरदम राखी हाँ। बहुत बेसी जरूरी छे साँझ के समय में न ओनहियो अपना सबके जे अछि से निगरानी रखनाय खेती में बहुत आवश्यक काज मानल जाइत अछि केवल लगा के छोड़ देबे त खेती किमरो से किमरो चल जात
0: देखियो फसिल कोनो तरह चेक नहीं लगाबे छी मुदा हमरा सबके आवश्यकता अछि जोका समय समय पर जो छै न देख रेख करत रही और जो समय समय पर देख रेख करत रहबे न आशुतोष भाई तो होइ छै कि जे तिमन तरकारी भेल या कोनो तरह फसिल जो छै नीक होइ छै आ जो मान लिया कि खेती कर दिलिए ओकरा समय समय पर देख रेख नहीं
1: नहीं भ सकले
0: तो कहबी तो छे जे धन के धन गेल नहीं बुझलिए
1: निश्चित रूप से एक छोटका गाछो लगा दे छी अगर कात में कतो अगर ओकरा समय समय पर पानि नहीं देबे हाँ। तो ओहो सुखा जाए छे
0: ते दुआरे हमरा लोकन के धियापुता जका जो छे कोनो तरह पेड़ पौधा के लगाबे छी कोनो तरह फसल के लगाबे छी तो ओकरा समय समय पर देख रेख करत रहियो
1: देबू भाई अपना सब बहुतो प्रकारक खेती करै छी नहीं जैसे अनेकानेक अपना सब लाभ ले
0: आई तो गप सप करब आशुतोष भाई

0: ओना तो हमार सभक जे आई एहन फसिल के आई हमरा लोकन गप सब करब जकर मांग सदखन हाट बाजार में होत रहत अछि, हाटे बाजार में नहीं पूजा पाठ में सेहो कर काज में आबत रहत अछि। तो आई हम गप करब मूंगफली के उन्नत खेती पर।
1: अरे वाह, ये तो अपना सभक एकटा प्रमुख तिलहन फसल में से अछि और एकरा अपना सभक बादाम सेहो कहल जाइत अछि।
0: हाँ हाँ, नकदी फसल में सेहो आबत अछि। एकर निक जका खेतीबाड़ी क के बेसी से बेसी जे छै आमद हमरा लोकन प्राप्त कर सकते।
1: देबू भाई, एकरा में प्रोटीन, तेल, विटामिन आ खनिज जे होइत अछि से प्रचुर मात्रा में पाओल जाइत अछि। और मूंगफली जे अहाँ गप केलहुँ हैं एकर उपयोग जे अछि से खाद्य तेल, अपना सब भुजलाहा, दाना, मिठाई, नमकीन संगहि पशु आहार बनेबा में सेहो करै छी। एकर बढ़ैत मांग और नीक बाजार जे दाम अछि ओकरा कारणे किसान भाई के लेल लाभदायक फसिल बनि चुकल अछि।
0: तो हमरा लोकन खेती जखन करब मूंगफली के आशुतोष भाई, तो सबसे पहले तो हमरा लोकन के सोचबाक चाहिए आवश्यकता है जे एकर उन्नत प्रभेद के हमरा लोकन के खेत में लगाब।
1: केना लगाब?
0: किएक तो उन्नत प्रभेद जखने लगाब ना तखने बुझू जे मनवांछित जे आमद होत हमरा लोकन के प्राप्त भ सकत,
1: बेसी उत्पाद और नीक आय अपना सबके भेटत। ठीक है,
0: तै दुआरे हमरा लोकन के एकर खेती करबा से पहिने मूंगफली के उन्नत प्रभेद के चुनाव क ली। एकरा एकर जे मुख्य रूप से दूटा जे प्रभेद अछि जाहिमे पहिल अछि गुच्छेदार प्रभेद आ दोसर अछि फैले वाला प्रभेद। गुच्छेदार प्रभेद के औसतन उपज क्षमता के जँ गप करी आशुतोष भाई, तो 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फसिल तैयार हेबाक अवधि 100 से 105 दिन, तेलक मात्रा के जँ गप करी तो 49% एकरा भ जात अछि आ एकर खेती सम्पूर्ण बिहार में कैल जा सकत अछि।
1: अच्छा, तो बुआई से पहले के अगर गप करी देबू भाई, तो बुआई से पहले खेत के 2 से 3 बेर नीक तरह जोताई कऽ के माटि के भुरभुरा बना देबाक चाही। अंतिम जोताई के समय गोबर के सरलाहा खाद वा फिर कंपोस्ट 8 से 10 टन जे छै से प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में मिला देबाक चाही। ई लाभदायक होइत अछि, एहिसँ माटिक उर्वरता बढ़ैत अछि और पौधा सभक विकास सेहो नीक होइत अछि।
0: संग संग बिया दर के तऽ सेहो ना ध्यान रखबै यौ एकदम
1: यौ निश्चित।
0: तै दुआरे बिया दर जे छै जे 80 से 90 किलोग्राम पुष्ट बिया प्रति हेक्टेयर दर से हमरा लोकन के व्यवहार करबाक चाही।
1: आयकर कतार से कतार के दूरी के अगर गप करी देबू भाई, तऽ कतार से कतार के दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर आ पौध से पौध के दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखबाक चाही। समय पर बुआई केला से नीक पैदावार अपना सबके होइत अछि।
0: संग संग जे छै बाग के समय सेहो ध्यान रखबाक चाही जे अखन समय बहुत उपयुक्त अछि, तऽ बाग के समय ठीक 15 जून से 10 जुलाई धरि।
1: ठीक है,
0: संग संग आशुतोष भाई बीजो उपचार कके जे छै कोनो तरह फसल जे खेत में लगाबै छी
1: तऽ अपना सबके बाद में जे अछि से बेसी फायदा सेहो भेटैत अछि। संगे संतुलित उर्वरक प्रबंधन सेहो आवश्यक अछि। माटिक परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटास के प्रयोग करबाक चाही। संगहि जिप्सम के प्रयोग फूल एवा के समय अपना सब अगर करै छी तऽ दाना के विकास नीक होइत अछि और उपजा में वृद्धि होइत अछि। आवश्यकता के अनुसारे पटौनी करी, क्या कि देखते छी वर्षा बुन्नी तऽ होइते रहैत अछि। विशेष कऽ के फूल एवा पर आ फल बनबाक अवस्था में नमी बना कऽ रखनाइ आवश्यक अछि। खेत में जल भराव कखनो नहि हुअ दी। संगहि देबू भाई, खर पतवार नियंत्रण समय समय पर निकौनी कमौनी ई सब जरूरी अछि। आवश्यकता पड़वा पर कृषि विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त खर पतवार नाशिक उपयोग कयल जा सकैत अछि।
0: है यौ आशुतोष भाई, सब कुछ करबे करबे आ जहन समय समय पर जो छै खर पतवार नियंत्रण नहि करबै तऽ हम जे फसिल में जो पोषक तत्व दै छियै ओ तऽ बुझू जे सबटा खरे पतवार जो छै ओकरा जो छै
1: चूसि लै छै। ठीक है,
0: हम कहबित नहि छै जे खर पतवार जेना बिना बुलायल मेहमान के अहाँके जहन दरवाजा पर आबि जाइए ठीक ओनाही हम लगाबै छी फसिल।
1: हुनका उचित आदत माने आदर सरकार कऽ के हुनका वापस पठा दी।
0: हाँ।
1: नहीं माने खर पतवार अगर एबो कैल तो अपना सब हुनका कटनी छटनी कऽ के
0: कमठा
1: हटा दी।
0: हाँ, तो तखने ना हमारा जे छै फसिल जे छै आगे आगे बढ़त
1: निश्चित रूप से। तो आखिर में हम यह कहबनि जे अपना सबके श्रोतागण छथि जे उन्नत किस्म के चयन, संतुलित पोषण, समय पर बुआई, पटौनी जे अहाँ कहलहुँ हँ, खर पतवार आ

0: रोग कीट नियंत्रण एहन वैज्ञानिक तकनीक के अपना कर किसान भाई मूंगफली के खेती से नीक उत्पादन आ नीक लाभ प्राप्त कर सके छथि। ई फसिल न केवल किसान भाई के आय बढ़बत अछि बल्कि देश में खाद्य तेल के आवश्यकता के पूरा करवा में सेहो महत्वपूर्ण योगदान देत अछि।
1: जँ एहि तरह हमरा लोकन खेती बाड़ी करब तऽ अवश्य अछि जे नीक से नीक आमद प्राप्त होयत। तऽ आशुतोष भाई
0: किया नहि आब बरखा बुनी के समयो अछि आ गीतो नाद नहि होय
1: बुझि रहल छी अहाँके गप तऽ किएक नहि हमरा लोकन के जे किछु रमन चमन भऽ जाय
0: तऽ सुनल जाय ई सुंदर संगीत।

0: सुनु हे सजनी, श्यामल पहुन माबिनु, राधा मोहन मिश्र से अपना सभी सुंदर सन गीत सुनलो, बड़ा निक लागल
1: लागल। आशा करै छियनि श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतनि। आब जो छै आशुतोष भाई,
0: एकटा कार्यक्रम संबंधी सूचना अछि। श्रोतागण, कौशल विकास युवा लोकन के सुचारू रूप से काज करबा में सक्षम बनेबाक नहि केवल एकटा प्राथमिक साधन अछि, बल्कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी के चुनौती से निपटवा में सेहो सहायक अछि। युवा सब में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य यह अछि। आकाशवाणी दरभंगा का फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगला अंकक विषय विशेषज्ञ हता प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल फोन नंबर है 0627222481, एकटा आन नंबर 9430029353। समय मून राखी रवि दिन 12 जुलाई का दिन का 11 बजे।
1: एकरे संगी सूचना संपन्न भेल
0: और आब एकटा अपना सब भेंट वार्ता सुन ली। धान का उन्नत खेती पर भेल बातचीत, भेंट वार्ताकार छथि ऋषि यादव और हिनका से भेंट कर रहल छथि देव नारायण यादव। तो सुनी गपशप।
2: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी बहेरी प्रखंड बेलगाम गाम में। ई गाम बच्ची पंचायत के अंतर्गत आबैत अछि। एतौ के जे किसान के जे देख रहल छी काफी कर्मठ छथि, मेहनती छथि और काफी जुझारू छथि। देख रहल छी जे चौ चाकर में जे हमर किसान श्रोता लोकन छथि काफी मेहनत के संग जे खेती बाड़ी कऽ रहल अछि। आओ वही प्रसंग में एतौ के किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने की नाम भेल? ऋषि यादव जी, अहाँ खेती बाड़ी करै छी? कौन कौन फसल के खेती करै छी?
3: गेहूँ
2: और धान के खेती करै छी। तो अखन जो गेहूँ के तो फसल नहीं छे, धान के फसल अहाँ कर रहल छी, तो एकरा लेल जो छे धान के खेती करवा से पहले अहाँ तक खेत के तैयारी सेहो करत होबे? केना करै छी खेत के तैयारी?
3: ट्रैक्टर से जोतेली या की नाम कहै छी कोदारि से जे है सारी कोना बनेली।
2: अच्छा, मतलब अखन अहाँ जो है आरी कोना अहाँ बना रहल छियै, खेत के तैयारी कऽ कर रख रहल छियै आ जखन ऊपर से जहन वर्षा होते, भगवान वर्षा जखन देथिन तऽ अहाँ जो छै अपन रोपनी करबै। बहुत सुंदर। अच्छा, अपने के जो धान के जो फसल लगाबै छियै तऽ अहाँ के तरफ से बिचड़ा के जे छै सेहो चुनाव करने होबै, तऽ अहाँ कोन कोन धान के जे छै बिचड़ा अहाँ लगेने छियै या आब लगेबै?
3: नहीं, बिची लगेने छियै।
2: बीबी ग्यारह सौ लगेने छियै। तो ई नयका धान छै कि पुरना धान छै?
3: नयके धान है, 2 साल से चले।
2: ई जो छै तो अहाँ से बिचड़ा के गप कहलियै जे ओकरा उपरांत जो छै अहाँ के जो छै जे खेत पथार में जो छे आनो किसान श्रोता लोकन के देख रहल छे जे काफी मेहनती के संग खेती कर रहल छे, तो एकरा संग जो छे आनो इत अहाँ ते बीबी ग्यारह के गप कर लिए, आनो किसान सब जो छे सेहो अलग अलग बिचड़ा खसाबी होते, तो सबके अपन अपन बिचड़ा खसाबा के जो छे अलग अलग जो छे तरीका छे। अहाँ के जो छे खेती बाड़ी जो करे छे तो खेती बाड़ी के जो छे धान के फसल अखन तक लगेलो है, संग संग खर पतवार के सेहो बेसी समस्या देख रहल छे, तो खर बार निवारण के लिए अहाँ खेत के जे छे की करे छे?
3: ट्रैक्टर से जोतेबे?
2: ट्रैक्टर से जोता देबे, ओकरा बाद कदबो विधि कदबा सेहो करबे?
3: कदबा
2: सेहो करबे। त कदबा जो करे छे त कथी से करे छे, हल बैल से या
3: ट्रैक्टर से?
2: ट्रैक्टर से करे छे। त ट्रैक्टर से जो खेती करे छे या हल बैल से? अखिनका समय में जो तकनीकी दौर भ गेल है, वैज्ञानिक दौर भ गेल है, कि एक तो हल बैल में ज्यादा से ज्यादा लागत लगे छे और ट्रैक्टर से खेती कैला से जो छे कम समय में बेसी से बेसी निक उपजा होइ छै। तो ट्रैक्टर से खेती करबा में अहाँ के केहन की लगैया?
3: ठीक लगे है।
2: अच्छा, हमर किसान श्रोता लोकन अखन के देख रहल छियै जे बेसी से बेसी ट्रैक्टरे के दिस भाग रहल छै, ट्रैक्टरे से खेती करै छै, हल बैल के से कम।

0: खेती करे छे, एकर पाछू की कारण छे?
1: हल बलद मतलब जे की यहाँ है ये नहीं, आप सब बरद बेच लेल के आ केना पूंजी फसा के रख ले, तो बरद की बेसी मेहनत पड़े, खाना पीना गोबर करसी हटाना।
0: अच्छा तो अहाँ जो खेती करे छे, तो खेती में तो अहाँ खाद उर्वरक तो सेहो डालत होबे?
1: सभे चीज दे छी ने।
0: अभी जो छे देख रहल छे जे खास कर के जो छे अखन रासायनिक खाद के हमार जो छे किसान श्रोता लोकन बेसी से बेसी व्यवहार करे छथिन, मुदा जेकर प्रभाव होय छे कि रासायनिक खाद करवा से माने मानव जाति पर छे, मानव स्वास्थ्य पर जो छे जेती बेसी से बेसी प्रभाव पड़ रहल छे, देख रहल छे जे बेसी से बेसी लोग जो छे जे अनेको तरह रोग व्याधि के समस्या भ रहल छे, तो अखनका समय में जे खास करके जो छे जे लोग जैविक खाद के बेसी से बेसी बढ़ावा दे रहल छे, क्योंकि जैविक खेती जो पहनो होय छलै कि हमर पूर्वज सब सब खेती करे छलखिन हा, तो रासायनिक खाद के व्यवहार नहीं कह के जे खाद उर्वरक जैविक खेत के व्यवहार करे छल, जेना नीम कुटी डीजा भेल, माल मवेशी के गोदौस दे छलै, सरल गोबर के खाद दे छलै, तो अहाँ तो माल मवेशी तो बेच देलिए, तो ओकरा जो छे केना अहाँ पूर्ति करे छी खेत में?
1: खेतमे पूर्ति करै छियै, यूरिया खाद दै छियै, डीएपी दै छियै।
0: डीएपी दै छियै
1: जी,
0: माने जैविक खाद के जे छै व्यवहार अहाँ नहि करै छियै? तऽ जैविक खाद के व्यवहार करबा के लेल जे छै जैविक खेत के व्यवहार करियौ अहाँ, जैविक खेत के जे व्यवहार करबै ने तऽ अवश्य अछि जे मानव कल्याण के लेल नीक रहतै। ओनाहियो तऽ देखि रहल छियै रासायनिक खाद के व्यवहार कयला से जे अनेको तरहक अशुद्धता के अभाव भऽ रहल छै, पोषक तत्व जे भेटबाक चाही से नहि भेट पा रहल छै, तऽ एहि लेल जे छै जैविक खेती के जे छै अपनो करू आ संग संग आनो किसान कोई के जे छै सलाह देबाक चाही, तऽ आन किसान के लेल यह कहबै कि ज्यादा से ज्यादा छै जैविक खेती के बढ़ावा दियो, माल जाल के जे छै बेसी से बेसी पालू। तो माल जाल के जे छै रखने छियै?
1: हाँ रखने छियै।
0: ई गर्मी मास में कोना अहाँ बचाव करै छियै?
1: बचाव कोना, पंखा लगल है, धोय छियै,
0: धोय छियै। कोन कोन माल मवेशी पालने छियै?
1: भैंसी रखने छियै।
0: भैंसी रखने छियै, बकरियो सेहो रखने हो?
1: नहि, बकरा बकरी नहि।
0: अच्छा, दूध होइया?
1: ना।
0: अच्छा, गाभिन छे की? अच्छा, बहुत सुंदर ऋषि यादव जी, अपने के से गप सब कह के बहुत निक लागल, ए लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देवू भाई अखन अपना सब सुन रहल छलहुँ ई भेंटवार्ता, विषय छल धानक उन्नत खेती पर भेल गपशप। भेंटवार्ताकार छलथि ऋषि यादव, हिनका से गप कऽ रहल छलथि देवनारायण यादव, और बहुत नीक गपशप छल, कतेक बुझा बुझा के कहलथि हँ। और आब मौसम संबंधी किछ सूचना अछि तऽ किसान भाई लोकनि को सूचना दऽ दियनि।
3: हाँ हाँ, दऽ दियनि।
2: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 11 जुलाई से 15 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसारे उत्तर बिहार के अधिकांश स्थान पर 11 से 13 जुलाई के बीच मध्यम वर्षा हेबाक अनुमान अछि। समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण आ पश्चिमी चंपारण जिला के किछ स्थान पर 11-12 जुलाई के लगपास भारी वर्षा हेबाक संभावना अछि। वर्षापात के समय कतौ कतौ ठनका सेहो खसि सकैत अछि, संगहि तेज बसात बहबाक सेहो संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि में बेसी दिन में आकाश में हल्लुक से घनगर मेघ छाओल रहि सकैत अछि। वर्षा के गतिविधि सभक कारण एहि सप्ताह अधिकतम तापमान पिछला सप्ताहक तुलना में कम रहबाक संभावना अछि। अधिकांश जिला में बेसी तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के लगपास रहबाक अनुमान छै, जखनकि बेगूसराय, वैशाली और सिवान जिला में ई 34-36 डिग्री सेल्सियस के लगपास रहि सकैत अछि। न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान छै। भोर में सापेक्षिक आर्द्रता 90-95%, दुपहरिया में 50-55% के बीच रहबाक अनुमान अछि। एहि दौरान बसात मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा से 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलबाक सेहो संभावना अछि।
0: ई छल मौसम संबंधी सूचना,
2: तऽ कनी बचि के रही, खास कर 11-12 जुलाई के लगपास अपना सबके जे इलाका में अछि
0: सतर्कता के संग किसान सुधार लोकन से यही आग्रह
2: करबै, बरखा छै ते दुआरे कनी बचि के रही,
0: खेती बाड़ी करथिन मुदा सतर्कता के संग, माधवन दिस जखन जाय छी तऽ सतर्क भ के जे छै खेती बाड़ी मौसम के देखत,
2: खास कर ठनका जहन खसैत अछि तऽ अपना सबके जे सावधानी रखबाक चाही ते पर अपना सब पूरा पूरा ध्यान दैत रही, कियाकि अपना सबके रेडियो पर सेहो सूचना लगातार प्रसारित होइत रहैत अछि ने,
0: तै हमरा लोकन सतर्कता रखबाक चाही। और एकरे संग देखू आशुतोष भाई, जे खेती गृहस्थी के समय सेहो सम्पन्न भ रहल अछि,

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर और खेती गृहस्थी। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में पटना से होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
1: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: इस बीच भाजपा ने उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
2: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। भाजपा के श्रेयसी सिंह ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास पर भी चर्चा हुई।
3: और निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बैठक थी। किस तरह से बिहार के विकास को सरकार और संगठन के समन्वय को बनाया जाए।
0: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और मंत्री संजय सिंह ने बताया कि बैठक में जिले के प्रभारी मंत्रियों को एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ महीने में एक बार बैठक करने को कहा गया।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जितने भी सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप लोग अपने तरफ से सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो। वहीं उन्होंने माननीय मंत्री को कहा है कि जब आप जितने प्रभारी मंत्री हैं आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप लोग भी अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं, एनडीए के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथ बैठे और वहां की उनकी जो समस्याएं हैं, जो सहयोग शिविर में नहीं हो पाती है उसके ऊपर की जो समस्या है उसको आप लोग समाधान करने का काम करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी हो उनको बुलाकर आप लोग निर्देश दें।
0: बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति कयाची में विधायकों के लिए आयोजित हो रहे 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन कर

0: करेंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा विपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
1: माननीय सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली विभिन्न पहलुओं विषय पर विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट जो है उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इससे संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल एवं कार्यपालिका की जवाबदेही, आधुनिक तकनीक एवं ई निर्भा का उपयोग, विधायी तथा बजटीय प्रक्रिया, विशेषाधिकार का प्रोटोकॉल तथा संसदीय समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल।
0: उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि अंतरित की। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपए की राशि जारी की। योजना की 6 श्रेणियों के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रूपये का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि उनके जीवन यापन में सहायता मिल सके।
2: महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत विकास शिविर भी होते हैं। इन तीनों कार्यक्रम में एकदम हर हालत में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करे, सैनिटाइज करे, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं जिनको पेंशन देने की जरूरत है। सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर सभी दिव्यांगजन, विधवा बने और हमारे जो वृद्धजन हैं, 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। नालंदा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे होने के कारण चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर प्रभावी होगा। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्पन्न होगा।
3: सभी 6 पदों के लिए चुनाव होना है। मैं सभी पदों के लिए 24 ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी। लोगों को सहूलियत भी होगा, वोट देंगे ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी गलती के लिए उसमें गुजारिश नहीं रहेगी। तो ये नया लेखन बनेगा, साथ ही साथ आरक्षण के रोस्टर लागू हुए और आरक्षण का रोस्टर भी इस बार लगा है। इस तरीके से होता है, अभी वही वैसे ही होगा। इसके लिए अगर
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 3035 ऐसे नियोजित शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने फर्जी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। इस मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
1: निगरानी विभाग ने इस जांच को कंक्लूड किया है और ये पाया है

0: 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी तरह से और कड़ा एक्शन के साथ इसका प्रस्ताव बनाया जाए और शिक्षा विभाग ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई इस प्रकार का हिम्मत नहीं जुटाए। और दूसरी बात कि आगे से जितनी भी बहालियां होंगी उन सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच पहले हो, ऐसी व्यवस्था करें। और अभी भी उस जांच पेंडिंग है, सारे विषयों की जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। कोई भी फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त शिक्षा विभाग नहीं करेगा।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण होगा और उसके बाद शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन की तिथि जारी की जाएगी।
0: विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। वो हमारा ई शिक्षा कोर्स का कल ट्रेनिंग होगा, बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पे करना, और इसके लिए आपको डेट आएगा, उस डेट में सभी शिक्षक आवेदन देंगे और उसके बाद प्रक्रिया के अधीन उनका ट्रांसफर।
1: प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सभी प्रारंभिक स्वीकृतियों को अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बांका के भेतिया और शंभूगंज तथा सिवान का तरोली शामिल है। तकनीकी कारणों से फिलहाल नवादा के रजौली को निर्धारित लक्ष्य से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थलों की तकनीकी स्थिति, भूमि और जल उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि अगले 12 महीनों के भीतर भूमि, जल आवंटन, बोरहोल ड्रिलिंग की अनुमति और अन्य आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए, ताकि परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति ली जा सके। समीक्षा के दौरान ये बताया गया कि नवादा के रजौली के निकट चिन्हित स्थल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, इसी वजह से इस स्थल को परियोजना से बाहर कर दिया गया है। बैठक में ये जानकारी दी गई कि दो 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि और प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। उपयोग के बाद रिसाइकिल्ड और रेडिएशन फ्री जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया 6 लेन पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के तकनीकी अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अनुसार अनुरक्षण कार्य के दौरान पुल पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया।

पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: रोहतास जिले में मानसून सक्रिय है, जिससे जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कैमूर वन जीव अभयारण्य के झरनों और पहाड़ी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से जोखिम वाले स्थानों पर न जाने तथा रील और सेल्फी बनाने से बचने की अपील की गई है। इधर जिले में खरीफ मौसम के तहत धान की रोपनी ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि इस वर्ष करीब 2,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 10% रोपनी पूरी हो चुकी है। श्रावण मास में जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। धाम परिसर और गुफा क्षेत्र में बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, पर्याप्त ऑक्सीजन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत शेरशाह सूरी मकबरा, माझर कुंड और धुआं कुंड क्षेत्र के लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। वहीं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस माह आयोजित पहले चरण के शिविर में जिले के सभी प्रखंडों, 65 पंचायतों और 32 शहरी वार्डों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इधर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोहतास जिले में 1,06,000 से अधिक संदिग्ध और प्रभावित लोगों का निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। समय पर जांच, निःशुल्क दवा और निश्चय पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर

0: राज रंजन ने 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बीते दिनों जिले के जमुहरा स्थित गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जिले में चल रही रोजगार सृजन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोहतास जिले की राज्य में बेहतर रैंकिंग की सराहना की। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने से परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। बीते दिनों जिले के सभी 229 ग्राम पंचायतों में पहली बार पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायतों को विकास की सबसे मजबूत इकाई बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्त होने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुँच सकेगा। सासाराम स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 बच्चे शास्त्रीय गायन, कथक, भरतनाट्यम, हारमोनियम और तबला का निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि यह केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। रोहतास जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सखी वार्ता और दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह निषेध तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
1: रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं परवीन सुल्ताना के गाए कुछ चुनिंदा गीत।

फिल्म कुदरत का ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं परवीन सुल्ताना के गाए कुछ चुनिंदा गीत। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा है नौशाद ने, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

अनमोल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे रानी मलिक का लिखा गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में। आइए परवीन सुल्ताना का गाया ये गीत सुनते हैं फिल्म 1920 से। समीर के बोल है, अदनान सामी का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे परवीन सुल्ताना के गाए कुछ चुनिंदा गीत। जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वो फिल्में थीं कुदरत, पाकीज़ा, अनमोल और 1920। इन गीतों के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, रानी मलिक और समीर, संगीतकार आर डी बर्मन, नौशाद, राम लक्ष्मण और अदनान सामी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज रात 10 बजे आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गानों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना से हम आपको अवगत करा दें। श्रोताओं, आज कौशल विकास को लेकर कहा जा रहा है कि कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव,

विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026 दिन में 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दरभंगा है। लीजिए अब प्रस्तुत है मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगारहार।

स्वागत अछि अपने सब गोटे के आजुक अंक में। अपने लोकन जनित छी जे आधा घंटाक ए साहित्यिक कार्यक्रम में हमरा लोकन अपन गाम समाजक गप करे छी, अपन सांस्कृतिक धरोहर विषय में गपसप करित छी आ सबसा विशेष रूप से त साहित्यिक गपसप करित छी। आ ताहो में कहियो कोनो पुस्तक पर गप करित छी, कोनो साहित्यिक पुस्तकक विषय में चर्चा परिचर्चा करित छी, त कहियो कोनो साहित्य लेखकक विषय में गपसप करित छी। आ सब दिन से हमरा लोकन ई कार्यक्रम में अपन किछ ठेठ शब्द पर सेहो गप करै छी, ओहन शब्द सब जे आब बिसरा रहल अछि वा कहि जे ओकर अर्थ की होइ छै से नव तुर के बुझबा मे नहि अबै छनि, तेहन तेहन शब्द सब से प्रयास करै छी जे ताकि ताकि कऽ आनी आ ई सब तक करिते छी। आ संगहि संग से मैथिली गीतक आनंद सेहो लै छी। समय रहिए त कथा आकि कविता पाठ सेहो हम अपने लोकनि के सुनबैत छी। साहित्यक एहि विशेष कार्यक्रम के अहाँ सब अपन रेडियो सेटक संग संग मोबाइल फोन पर सेहो सुनि सकैत छी न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम सँ। एहि कार्यक्रम के लऽ कऽ उपस्थित भऽ गेल छी हम सोनू, तऽ सबसँ पहिने तऽ कयल जाय स्वीकार हमर नमस्कार। विद्वान लोकनिक कहब छनि जे साहित्य समाजक ऐना होइत अछि, से ठीके होइत अछि। ऐना में सेहो लोक अपन मुँह कान देखैए, माने अपन चेहरा देखैए, जेहन रहैत छै तेहने देखाइत छै, से साहित्य सेहो सैह होइत अछि। ओहिमे सेहो समाज में जे घटना परिघटना घटैत छैक से भेटैत छैक ओहि क्षेत्रक साहित्य में। से एना जे ओ जे समाज में घटना परिघटना सब घटैत अछि तकरा साहित्य लेखक अपन साहित्यक माध्यम सँ फेर सँ समाजक सोझा में रखैत छथि आ देखबैत छथि जे देखो ई अछि अहाँक समाज। ततबे नहि, ओ जे घटना परिघटना घटैत छै समाज में तकर जे प्रभाव आकि कुप्रभाव समाज पर पुनः वापस पड़ैत छै ताहि सँ सेहो साहित्यकार लोकनि से आम जन के अवगत करेबाक प्रयास करैत छथि। असल में साहित्यक मुख्य उद्देश्यो तऽ सैह होइत छैक जे

समाज के असत्य पथ पर जयवासँ रोकै आ समाज के जे सत्य पथ छे, जे नीक मार्ग छे, ताय पर चलबाक प्रेरणा दऽ सकै आ से साहित्य करितो अछि। देखै छी हमसब जखन कोनो उपन्यास पढ़ैत छी आकि कोनो कथा पढ़ैत छी तऽ देखै छियै जे ओहिमे कोनो क्षेत्र विशेषक घटना से रहै छै, भने ही से दिन तारीख आकि व्यक्ति स्थान से बदलल रहित छैक, मुदा बात जे ओहिमे कहल गेल रहित छैक से यथार्थ रहित छैक आ तकर प्रभाव सेहो हमरा लोकनि देखैत छियै जे समाज पर पड़ैत छैक। अब से कहब कोना पड़ैत छैक तऽ कने पाछू चलू ने आ उल्टा कऽ देखू ने अपन साहित्यके, उल्टा कऽ देखू ने यात्रीजीक बूढ़ बड़के आ विलापके, कि जे बात बूढ़ बड़मे कहल गेल अछि आइयो समाजमे बात छैक। जँ ओ बात नहि छैक तऽ निश्चित ओकर जे सकारात्मक प्रभाव छलै से समाज पर पड़लैक आ ओ पढ़लासँ से हमरा लगैत अछि जे ओहि समयमे जे स्थिति छलै से केहन छलै सेहो ओ पढ़लाक बाद ओकर चित्र स्पष्ट भऽ जाइत अछि। तऽ साहित्यक जे काज छै, जे उद्देश्य होइत छै समाजके एकटा नव दिशा देखायब, नव रास्ता पर लऽ चलब जे ओकरा भविष्यमे या ओकर जे समाजक जाहिसँ कल्याण होइ, तऽ से काज तऽ साहित्य करिते अछि। आ एकटा बात आर छैक, समाज नीक कखन हेतै, जखन गाछ कोनो नीक केहन हेतै, बढ़िआँ कखन हेतै, जखन ओकर बीया से निरोग हेतै, तऽ निश्चिते गाछ सेहो बढ़िआँ हेतै। आ गाछ जखन नीकसँ हेतै, बढ़तै, चतरतै, तऽ ओ निश्चिते फूलेतै आ फूलेतै तखन ओ फड़तै आ ओकर जे फर छै ताहिसँ से आमजन तऽ तृप्त हेबे करतै। इएह बात से हमरा अहाँ जे मनुष्यक जीवन अछि ताहिमे सेहो इएह बात अबैत अछि। समाज नीक हेतै तखन जखन हमर जे नेना अछि ओकरा नीक बात, नीक रास्ता से बुझायल जाय, तखन वह नेना जखन काल्हि पैघ होइत अछि तऽ ओकरासँ हमर गाम, हमर समाज से आशा अपेक्षा राखत जो गाम समाज लेल नीक करत। आ यह एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्तिसँ जोड़लासँ तऽ समाज बनैत अछि। तऽ मूल बात भेल जे हमरा सबके अपन जे नेना अछि तकरा सबके से परिष्कृत करब, ओकरा सतमार्ग देखायब से उद्देश्य हमरा सबके रहित अछि। किएक तऽ हमरा लोकनि जनैत छियै जे नैना लोकनिक जे मस्तिष्क होइत अछि ने, ओ एकदम सादा कागत जकाँ होइत अछि। ओहिमे एक बेर जे अंकित भऽ गेलै ने, ओ आजीवन ओकर मस्तिष्कमे अमिट छाप बनि जाइत छैक, ओ कखनो मेटाय नहि छैक। नेनाक कोमल मोन पर

लिखायल प्रत्येक शब्द प्रत्येक लाइन से पाथरक रेख बन जाइत अछि जे कहियो मिटाय नहि छैक। असल में नेनपन जो होइत छै ने ई प्राकृतिक अनुपम उपहार होइत छै जे वर्तमान आ भविष्यक बीच में एकटा पुलक काज करैत अछि। ओ होइत अछि बाल साहित्य नेना लोकनिक साहित्य ई एकटा पुलक काज करैत अछि, ओकरा जोड़बाक काज करैत अछि, ओकरा पाटबाक काज करैत अछि, ओकरा नीक मार्ग तक चलबाक रास्ता देखेबाक काज करैत अछि। जहन मोन ओकर नीक

एखन राधा मोहन मिश्र सँ कर्णप्रिय मैथिली गीत हमसब सुनि रहल छलहुँ हैं। हमसब गप कर रहल छलहुँ हैं नेनाक साहित्य परमे, मने बाल साहित्यक सन्दर्भमे। असलमे छै कि जे नेना लोकनि जे होइ छथि ने, ओ स्वभावसँ खिस्सा प्रिय होइत छथि। नेना लोकनि लगमे जखन अहाँ बैसबै वा नेना लोकनि जखन अहाँ लगमे एता बैसता, अपन दाय बाबा माय बाप कि नाना नानी आ कि आन जे कोनो बूढ़ बुजुर्ग बैसै छथिन, तऽ ओ एक बेर आग्रह जरूर करै छै जे तखन एकटा कहियौन ओ की भेलै, ओकरा खिस्सा सुनबाक आग्रही होइत अछि, ओकरा आनंद भेटैत छैक खिस्सा सुनिकऽ। ओकर जे रहस्य सब होइत छै, ओहिमे जे बात सब कहल जाइत छै, से ओकरा गुदगुदबैत छैक, ओकरा नीक लगैत छैक। आ ई सब जे पौराणिक जे पहिले हमरा सबके खिस्सा कहल जाइत छलै, आब मोन पड़ैत अछि जखन नेनामे हमहूँ सबसे खिस्सा सुनी ने, तऽ ओहिमे जे बात कहल जाइ ने, तऽ आब लगैए जे ओ तऽ एकटा ज्ञान वर्धक होइ छलैए ओहि खिस्साक माध्यमसँ। तऽ बाबी ई बात कहबाक प्रयास कयने रहथिन, बातो सह रहित छैक। ओ खिस्सा खिस्सा नहि होइत अछि, ओहि खिस्साक बहने ओहि खिस्साक माध्यमसँ लोक अपन नेनाके बुझेबाक प्रयास करै छथि नीक नीक बातके। ई खिस्सा सब तऽ पहिले अहिना मौखिके होइत छलैए, लोक एकठाम सुनलक, एक गोटेसँ सुनलक आ फेर दोसरके कहलक, फेर दोसर ओकरा सुनलकै, फिर तेसरके कहलकै, आ ई क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी अहिना चलैत रहैत छलैए। बादमे आबिके की भेलै जे एकरासँ लिपिबद्ध सेहो कयल जाय लागल, मने ई लिखै लगलै। जखन से लिखै लगलै तऽ ओहिमे ऐतिहासिक पौराणिक लोकगाथा महापुरुषक जीवनी सब पर आधारित कथा आदि सब सेहो आबऽ लागल एक कथा खिस्साक माध्यमसँ। आ ई सब तऽ लिखै लगलिक, बहुत रास से जे लोक कथा छल, जे सुनल पौराणिक खिस्सा सब छलैए, आरंभमे ओ सब लिखित रूपसँ आबऽ लगलै, मने लिखै लागल, लिपिबद्ध हुअ लागल। आ फेर बादमे आबिके से बहुत बादमे आबिके पछाइत कहि सकै छियै जे जखन मैथिली साहित्यमे नेना लोकनिक लेल से मौलिक रचना सेहो हुअ लागल, आ ई रचना जखन हुअ लगलै ने, तऽ बाल साहित्यमे बाल साहित्य लेखनमे से लोकक रुचि बढ़लैक। आ से ई रुचि जे बढ़लैए से विशेष कऽ कऽ जखन साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा ओहि क्षेत्रमे मने बाल साहित्य लेखनक

क्षेत्र में पुरस्कार देब आरंभ कयल गेल। तकर बाद सँ त बाल साहित्य लेखनक क्षेत्र में लगातार श्रीवृद्धि होइत रहल आ आइयो भ रहल अछि। गपक आरंभ में हम कहलहुँ जे जखन हम सबसे एहिठाम अबैत छी, मने ई साहित्यिक कार्यक्रम हमर अछि सिंगरहार, ई लऽ कऽ जखन हम एतऽ अबैत छियै तऽ एहिमे हमसब प्रयास करै छी साहित्यिक गप करी, कोनो साहित्य पुरोधाक विषयमे गप करी वा कोनो जे हमर साहित्य पुस्तक अछि ताहिपर किछु गप करी। एहि क्रममे जखन आइ हमरा लोकनि किछु नैना सभक गप कऽ रहल छी, नैनाक साहित्य गप कऽ रहल छी, तऽ किएक ने हमरा लोकनि से नैनाक साहित्य मने बाल साहित्यक जे एकटा पोथी अछि ताहिपर से गप कयल जाय। तऽ हम आइ गप करब वर्ष 2019 ईस्वीमे साहित्य अकादमिक बाल साहित्य पुरस्कार सँ सम्मानित पोथी जकर नाम अछि ई फूलक गुलदस्ता। एहि पुस्तकक विषयमे आइ हमरा लोकनि किछु गपसप करब। एहि पुस्तकक लेखक छथि ऋषि वशिष्ठ। जेनाकि पुस्तकक नाम अछि ताहि अनुसारे एकरा में, चूँकि एहिमे एकर नामे छै ई फूलक गुलदस्ता, माने फूल छै विभिन्न गुलदस्ता जखन बनै छै तऽ ओहिमे तब विभिन्न किस्मके से फूल रहै छै एकटा गुलदस्ता में। तऽ से तहिना ई जे किताब अछि एकर जे अध्याय सब छै से लगैत अछि जेना विभिन्न फूल सब एहिमे से सजायल छैक। एकर जे अध्याय सब छै तकरा से उद्यान कहल गेल अछि। उद्यान मने बगीचा जाहिमे से फूल रहै छै। तऽ से कहबाक ई अछि जे एहि उद्यान सबमे जे चारिटा उद्यान अछि ताहिमे जहन घुमबै ई चारू उद्यानक जे कथा सब छै से जहन पढ़ब तऽ लागत जे ई नैना लोकनिके जे मोन छै तकरा ताजगी भरबाक से भरपूर प्रयास छै ई ओहि फूलक गुलदस्तामे। हुनका लोकनिक मोनक जे विकास छै, हुनका लोकनि मने नैना लोकनिक जे मस्तिष्कक विकास छै से ई पुस्तक पढ़लाक बाद अवश्य हेतै, फरीच हेतै ओकर दृष्टिकोण, ओकर दृष्टि निश्चिते पहिले सँ से बेसी हेतै। से जेना कि पहिल उद्यानमे एकर जे पहिल उद्यान छै एहिमे 7 गोट कथा अछि जाहिमे पहिल कथा छै प्रधानाध्यापक द्वारा वृक्षारोपण करवाओल जाइत अछि आ ओहिसँ आ बुझियो जब जखन फूलक गुलदस्ता छै तऽ बच्चा सबके से समाजक एकटा पैघ काज छै वृक्षारोपण, ओकरा दिस ओकरा प्रेरित कयल जाइत छै बच्चा सबके आ ओकरासँ वृक्षारोपणसँ की लाभ हेतै से बुझायल गेल अछि एक कथाक माध्यमसँ। ई से नीक एकटा बढ़िया बात से कहल गेल अछि। तहिना एहिमे जे आन कथा सब सेहो अछि सेहो सब उपदेशात्मक कथा सनक अछि, बच्चा सबके उपदेश देल गेल अछि। तहिना दोसर जे उद्यान छै ताहिमे 2 गोट कथा अछि जाहिमे दुनू पौराणिक कथा अछि। तऽ तेसर उद्यानमे 3 गोट कथा अछि जाहिमे काल्पनिक आ रहस्यमयता से बेसी अछि जे बच्चाके ओकर जे कल्पना शक्ति छै तकर विकास होइ छै। आइ तऽ गवर्नमेंट
हमरा सबके कहित अछि स्कूलक माध्यमसँ बच्चा सबके ओकर कल्पना शक्तिके विकास करबाक लेल।

विभिन्न योजना सब स्कूल में देल जाय छे से ओहि किताब में सेहो आयल अछि। तहिना जे एकर जे चारिम अछि से अछि सामाजिक सरोकार सँ जुड़ल कथा सब अछि। एहिमे जे नेना लोकनि के सामाजिक जीवन में कोना जियल जाए और सामाजिक जीवन में की सब हेतै से सिखेबाक प्रयास कयल गेल अछि। पहिने कहलहुँ जे मनुष्य सामाजिक प्राणी छै, ओकरा लेल ओकरा से एतै सँ मने निर्णय सँ बुझबाक प्रयास कयल जाइत छैक, बुझेबाक प्रयास कयल जाइत अछि। तऽ ई सब दृष्टिकोण सँ जखन देखैत छियै तऽ ई फूलक गुलदस्ता जे बाल साहित्यक पोथी अछि से एकटा उत्कृष्ट पोथी अछि जे नेना लोकनिके निश्चित पढ़बाक चाही आ हमरो लोकनिके चाही जे अपन नेनाके ई पुस्तक पढ़ाबी। आ देखू जे गप करैत करैत हमसब कार्यक्रमक अंत धरि आबि गेल छी, तऽ किएक ने जल्दी से हमरा लोकनि से अपन जे किछु शब्द अछि ताहि पर पहिने गप कऽ ली। एकटा शब्द अछि करीन। करीन कहल जाइत अछि पानि उपछबाक लेल काज कयल जाइत छल, खेत पटेबाक लेल पोखरिसँ या डबरासँ पानि उपछि कऽ जे खेतमे देल जाइत छल, लकड़ीके एकटा लम्बा सनक नाव जकाँ बनल रहैत छै अछि जकरा करीन कहल जाइत अछि। आ ढेंग कहल जाइत अछि लकड़ीक जे पैघ मोट सन जे भरिगर वजनगर लकड़ी रहैत अछि तकरा ढेंग कहल जाइत अछि, छोट लेकिन मोट रहैत अछि बेसी। आ कोकनल मने भेल लकड़ी तऽ रहैत अछि मुदा ओहिमे कोनो जान नहि रहैत छै, ने तोड़बै तऽ खटसँ टूटि जायत, ओकरा कोकनल कहैत छैक। तऽ देखू जे हमसब गपशप केलहुँ, शब्द विमर्श केलहुँ, मुदा मोन सब कनि छटपटा रहल अछि जे किएक ने कने अपन मोनके संगीत दिस लऽ चली। लेकिन संगीत दिस से लऽ चलितौ मुदा देखियो जे घड़ी इशारा कऽ रहल अछि जे एखन जे हम संगीत दिस लऽ जायब तऽ समयक अभाव भऽ जेतै। तऽ हमरा विचारसँ जे किएक ने एखन से हम एक कार्यक्रमके समेटबाक प्रयास करी आ से एकटा कार्यक्रम संबंधी जे सूचना अछि जे विशेष आवश्यक अछि अहाँ सबके बुझब, अहाँ सब तक हमरा ई पहुँचायब, तऽ ओहि पर कने ध्यान देल जाय। कौशल विकास युवाके सुचारू रूपसँ काज करबामे सक्षम बनेबाक ने सिर्फ एकटा प्राथमिक साधन अछि बल्कि बेरोजगारी आ अल्प रोजगारक चुनौतीसँ निपटबामे सेहो सहायक अछि। एहि जे विषय अछि एकर विषय विशेषज्ञ हेता स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगाक। ई कार्यक्रम प्रसारण होयत रवि दिन 12 जुलाई 2026 11 बजेसँ। एहि सङ्ग आजुक सिंगारहारक समय सम्पन्न भेल। सुनूके चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

सिंगारहार। अभी आप सुन रहे थे मैथिली में हमारा ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दरभंगा है। संध्या के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा

0: आयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से।
1: और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

0: चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक

0: सिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investment.

0: सुंदरतम ऋतु है वर्षा। साहित्य तो मानो इस ऋतु का सबसे बड़ा गवाह है, जिसने शब्दों के माध्यम से मौसम के मिजाज को जन जन में फैलाया है और सरोबार किया है। संस्कृत साहित्य में अगर कालिदास के वर्षा ऋतु के वर्णन को सबसे अनुपम पक्ष माना जाता है, तो वजह यही है कि कालिदास ने वर्षा को जिया है। पानी की फुहारों से लेकर यौवन को भिगो देने वाली बारिश में मन कैसे उल्लास और उमंग से कुलाचे मारता है, या इस ऋतु में किसी विरह पक्ष की प्रेम पीड़ा कैसे उमड़ती घुमड़ती है, उसका रोचक वर्णन भारतीय साहित्य में देखने को मिलता है। श्रोताओं, चाहे वो हिंदी साहित्य का मध्ययुग हो, जिसमें तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों ने पावस ऋतु का सुंदर और सरस चित्रण किया है, या आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा द्वारा लिखी वर्षा संबंधी कविताएं हों, या आज के लेखकों की आधुनिक लेखन क्षमता में वर्षा हो, सबने जैसे साक्षात बारिश को जीने के गुर दिए हैं। सच मानिए, साहित्य में वर्षा ऋतु वाले हिस्से ने पाठकों को अंतस तक भिगोया है। आपको अगर सचमुच साहित्य में रुचि है, तो निश्चित ही वर्षा ऋतु आपको अपनी गोद में बैठा कर सावन के झूले जैसा आनंद देगी और आप स्मृतियों के सागर में गोते लगाते हुए उसकी धारा को न केवल छुएंगे, बल्कि आपको कई मोती भी प्राप्त होंगे। यही तो आपका साहित्य का असली प्रसाद है। साहित्यकी में अभी आप सुन रहे थे संपादकीय। अब प्रस्तुत है मिथिलांचल के साहित्य पर मुरारी कुमार सिन्हा से शंकर कैमूरी की बातचीत।
1: श्री मुरारी कुमार सिन्हा जी, आप एक पत्रकार हैं और साहित्य और पत्रकारिता में एक संबंध है। पत्रकार जो होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, वो विविध क्षेत्रों का ज्ञान रखते हैं, और आज एक साहित्यिक विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। जो मिथिलांचल का हमारा क्षेत्र है, वो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सुसंपन्न है, तो हम जो इसकी संपन्नता है वो उसमें, और इसकी जो सांस्कृतिक छवि है और सांस्कृतिक जो छटा है, निश्चित रूप से काफ़ी मनोरम और मनोहर है। हम सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं कि जो मिथिलांचल में जो साहित्य है, जो जिस भी तरह का साहित्य हो, तो उस साहित्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि मिथिलांचल की जो धरती है, साहित्य की धरती है, साहित्यिक धरती है, कलात्मक धरती है, सांस्कृतिक धरती है, और एक के परंपरा की धरती है, विद्वता की धरती है, पौराणिकता की धरती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं कहना चाहता हूँ कि मिथिलांचल का जो साहित्य है, सो सबसे मैंने पूरे विश्व में जग जाहिर है इसका, और इसमें महान कवि का भी हुआ, कवि भी हुए और साहित्यकार भी हुए, और मैंने यहाँ के जो मिथिलांचल के जो लोक गायिका भी बहुत सारे हुए, और ये इसका ख्याति पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इसका ख्याति है, और आज भी मिथिला पेंटिंग वगैरह यहाँ की जो सबसे बड़ा विरासत है वह पूरे विश्व में जग जाहिर है, और उसको लोग नाम कमा रहे हैं, मिथिलांचल के नाम से जाने जाते हैं। महाकवि विद्यापति जी का जो जन्म है बिस्पी में हुआ था, और ये महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, और महाकवि मैंने इनके यहाँ एक कहावत है कि मैंने कहा गया कि पौराणिक कथा है, धरती पर विद्यापति के महादेव, उगना महादेव के रूप में विद्यापति के यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे, और साक्षात महादेव रह करके, यह भी बहुत बड़ी मैंने बात है हमारे धरती में और मिथिलांचल में और विश्व में जग जाहिर है, उगना महादेव के नाम से जाने जाते हैं, आज मंदिर है वहाँ, और उसी के वियोग में विद्यापति अंत मैंने विलीन हो गए महादेव, तो आज भी मैंने मरिएगा जिसके नाम से विद्यापति धाम हुआ है अभी जो है समस्तीपुर जिला में। उसके बाद सर और भी है, नागार्जुन भी यहाँ, महाकवि नागार्जुन का भी जन्म हुआ 10 जून 1911 को, जो आजकल तरौनी प्रखंड बनने के लिए मैंने ललायत है और उस पर प्रक्रिया चल रही है, और उसमें मैंने नागार्जुन बाबा जो नागार्जुन जो हैं वह बहुत बड़े कवि थे, जिसमें यात्री नाम से हिंदी और मैथिली में उपन्यास लिखने का काम किया, और उनको जैसे 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार से मिला उनको। उसके बाद एक नाम आता है सर, राम चतुर मल्लिक, जिनका जन्म 1906 में हुआ, और ध्रुपद गायक के मैंने जैसे बहुत बड़े मैंने गायक थे जिन्होंने जिनका

साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, साहित्य के आज के इस अंक में आप सुनेंगे मिथिलांचल के साहित्य पर मुरारी कुमार सिन्हा से शंकर कैमूड़ी की बातचीत। इसके बाद काव्य पाठ आप सुनेंगे मनोज कुमार झा और पप्पू राय से, लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, प्रकृति की सबसे

0: नाम जो है सो देश विदेश में इनका गाया गया। उसके बाद एक कवि आते हैं महाकवि कालिदास, वो मधुबनी के उच्चैठ स्थान में मैंने उनका जन्म हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह जैसो कालिदास जी का मैंने बहुत बड़ा महाकवि, देश विदेश में उनका नाम गया और उनका आज भी पुस्तकालय है, उसको बिहार सरकार अनुमोदन के लिए दिया है कि उसको प्रोत्साहन किया जाए और बढ़ाया जाए उसको। उसके बाद एक लोक गायिका आती है मिथिलांचल में जैसो शारदा सिन्हा, जो मैथिल में मिथिला के मैंने जैसे मिथिला कोकिला कहा जाता है, उनको गायन में देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुआ और यह मैंने शादी ब्याह का जब भी इस एरिया में जैसे मैंने गाना गाया जाता है तो शारदा सिन्हा का नाम परमा जाता है। और भजन औरत में इसमें यह समस्तीपुर के इनका जो है सो विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर भी रही है, संगीत की प्रोफेसर भी रही है और फिल्मी दुनिया में भी मैंने प्यार किया और माई सिनेमा मैंने जो है सो इनका स्वर भी आया मैथिल कोकिला के। उसके बाद एक नाम और आता है दू में जिस मिथिलांचल में एक दो चीज़ और भी है सबसे विख्यात, जो दो दो यूनिवर्सिटी का मैंने जो है सो विश्वविद्यालय का यहाँ मैंने है मिथिलांचल में, जो यह मैंने कहूँ है नहीं है पूरे मैंने इंडिया में नहीं है, विश्व की महत्व मैंने इंडिया में नहीं है, जो एक ही जगह दो दो यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एक कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक मिथिला यूनिवर्सिटी है जो जनरल स्टडी के लिए जाना जाता है। ये भी अपने आप में मिथिला का परम्परा अलग अलग। उसके बाद है मिथिला में एक चीज़ है सर, यहाँ का परंपरा है मिथिलांचल में कि एक यहाँ का जो मिथिलांचल में अतिथि का स्वागत जो है सो बहुत ही मैंने सम्मान से किया जाता है, किसी कोई भी जाति है कोई भी आवे किसी के यहाँ जाए अगर मिथिलांचल में आ गया तो उसको मैंने जैसे बहुत ही मैंने इसका यहाँ का जो परम्परा है सो अतिथि को अतिथि देवो मानते हैं और उसको जो है सो मैंने मुख्य रूप से यहाँ माछ पान मखान से मुख्य रूप से उसको स्वागत किया जाता है, मिथिला के परंपरा है। उसके बाद यहाँ का मिथिलांचल में एक जगह है सर अहिल्या स्थान, जो मैंने गौतम ऋषि मुनि के उनकी जैसे धर्मपत्नी थी जो श्रापित होकर के उनको जो है सो पत्थर की नारी बन गई थी, जो भगवान राम जो है सो जब जाने लगे इस कर्म में रास्ते में तो उनके चरण धूली से वह नारी बन गई थी, वह अभी अहिल्या स्थान भी मिथिलांचल में दर्शनीय स्थान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सर मिथिलांचल में एक देवघर, मिथिलांचल का देवघर कहा जाता है जिसको कुशेश्वर स्थान, जो मिथिलांचल में देवघर जैसे देवघर झारखंड में है उसी तरह से मिथिलांचल का देवघर कुशेश्वर स्थान को कहा जाता है। यहाँ मैंने जो है सो सावन में और भादव में बहुत सालों भर से भीड़ रहता है लेकिन सावन भादव में मैंने जो है सो ज़्यादा भीड़ रहता है और साक्षात महादेव का यहाँ मैंने जो है सो मंदिर है। उसके बाद है सर उगना महादेव का भी मंदिर है यहाँ भवानीपुर मधुबनी में पंडौल प्रखंड में पड़ता है।
1: मुरारी जी सचमुच बहुत अच्छी आपसे बातचीत हो रही है, आप एक तरह से जो मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत से भी आप परिचय करा रहे हैं और जो साहित्यिक जो अवदान हैं इस क्षेत्र के उस क्षेत्र के बारे में और उस अवदान के बारे में भी आप चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत जो है, मिथिलांचल की जो साहित्यिक विरासत है, साहित्यिक जो संपदा है, बौद्धिक जो संपदा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप एक पत्रकार भी हैं और समझिए कि साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं, तो जो मुख्य रूप से जो ये पत्रकार की जो भूमिका हो जाती है और जो साहित्यिक क्षेत्र में भी जो उनका योगदान होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसके बारे में कहना चाहेंगे कि मिथिलांचल का जो हम लोग का जो परंपरा है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके हमारे जो पत्रकार बंधु हैं या जो साहित्यकार हैं उनको भी मैं थोड़ा सा अपने आप से मैं मार्गदर्शन देना नहीं चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ छोटे भाई के नाते कि इसको विरासत को बचाए रखने में उन लोग का भी सहयोग होना चाहिए, हम लोग का भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जब भी लिखते हैं या जब भी सोचते हैं मिथिलांचल के बारे में तो एक नज़र सर उसके बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ का जो धरोहर है उसको विरासत को बचाए रखने में भरपूर योगदान दे चाहे जैसे भी हो, इसमें अहम रोल होना चाहिए साहित्यकार का भी और पत्रकारिता को भी रखना चाहिए कि मिथिलांचल की धरती है या परम पुण्य और विश्वविख्यात है और माँ जगत जननी की धरती है, माँ जगत जननी की धरती है, सीतामढ़ी में माँ का जन्म हुआ और विश्वविख्यात है, आज भी माँ सीता को जगत जननी में जानते हैं, इसीलिए इस पावन जगह को पावन धरती को नमन करता हूँ और आने वाले जो भी मैंने जो हमारे भाई लोग हैं जो लोग लिखते हैं व्यंगकार हैं जो भी हैं उसको परंपरा को बचाए रखने के लिए भरपूर सहयोग करें, मेरी एक विनती है उनसे कि मिथिलांचल का जो धरोहर है उसको बचाने में भरपूर सहयोग।
1: श्री मुरारी कुमार सिन्हा जी आप आए और मिथिलांचल की साहित्यिक विरासत सांस्कृतिक

0: सियासत के बारे में आपने जानकारी दी और अपना बहुमूल्य समय भी आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मिथिलांचल के साहित्य पर मुरारी कुमार सिन्हा से शंकर कैमूरी की बातचीत। लीजिए अब प्रस्तुत है काव्य पाठ मनोज कुमार झा से।
2: पहली कविता है मिट रही बाल्य की आभा। मिट रही बाल्य की आभा, ये हमारे पितामह के बचपन के दिन नहीं है, ये हमारे पिता के भी बचपन के दिन नहीं है, ये हमारे बचपन के दिन नहीं है, पर पता नहीं क्यों लगता है कि ये हमारे बच्चों के भी बचपन के दिन नहीं है। क्या मेरे बच्चों को पेड़ इतना हरा दिख पा रहा है जितना कि उसे दिखना चाहिए? ये हमारे पितामह के बचपन के दिन नहीं है, ये हमारे पिता के बचपन के दिन नहीं है, ये हमारे बचपन के दिन नहीं है, पर पता नहीं क्यों लगता है कि यह हमारे बच्चों के भी बचपन के दिन नहीं है। क्या मेरे बच्चों को पेड़ उतना हरा दिख पा रहा है जितना कि उसे दिखना चाहिए? क्या सुबह की रोशनी उसे उतनी कोमल छू रही है जितनी कोमल बच्चों के लीलाड़ को माँ की उंगलियाँ छूती हैं? क्या सुबह की रोशनी उसे उतनी कोमल छू रही है जितनी कोमल बच्चों के लीलाड़ को माँ की उंगलियाँ छूती हैं? क्या वह पितामह के साथ सूरज डूबना देख पाएगा जैसा कि मैं देखता था जब पितामह कहते थे कि वो खेत मेरे नहीं हैं पर उस पर जो लालछुआ पानी चढ़ा है वह हम सबका है? इस पृथ्वी का भी बचपन बीत रहा है और क्या कोई भी लगा नहीं सकता विराम? तो क्या यह ब्रह्मांड की हरी पुतली हो जाएगी रक्तवर्णी और फिर कहीं नहीं बचेगी बाल्य की आभा? कविता का शीर्षक है मिट रही बाल्य की आभा। ये हमारे पितामह के बचपन के दिन नहीं हैं, ये हमारे पिता के बचपन के दिन नहीं हैं, ये हमारे बचपन के दिन नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों लगता है कि यह हमारे बच्चों के भी बचपन के दिन नहीं हैं। क्या मेरे बच्चों को पेड़ उतना हरा दिख पा रहा है जितना कि उसे दिखना चाहिए? क्या सुबह की रोशनी उसे उतनी कोमल छू रही है जितनी कोमल बच्चों के लीलाड़ को माँ की उंगलियाँ छूती हैं? क्या वह पितामह के साथ सूरज डूबना देख पाएगा जैसा कि मैं देखता था जब पितामह कहते थे कि वो खेत मेरे नहीं है पर उस पर जो लालछुआ पानी चढ़ा है वह हम सबका है? इस पृथ्वी का भी बचपन बीत रहा है और क्या कोई भी लगा नहीं सकता विराम? तो क्या यह ब्रह्मांड की हरी पुतली हो जाएगी रक्तवर्णी और फिर कहीं नहीं बचेगी बाल्य की आभा? दूसरी कविता रक्षा भूमि। कविताओं में मैं प्रेमिकाओं को बचाना चाहता था, कविताओं में मैं प्रेमिकाओं को बचाना चाहता था, दर्शन में उन्हें बचाना कपड़ था। भावनाएं जो थोड़ी बची थीं वो बारों की तरफ सरक रहे जानवरों की तरफ भाग रही थी। इतिहास में उन्हें ढूंढा तो कई वृद्धाश्रमों में रो रही थी, कई कांप रही थी प्रसूति गृह में। कविताओं में ही उनके बचने की आशा थी और मुझे अक्सर लगा कि प्रेमिकाएं कमजोर कविताओं में भी बच सकती थी। रक्षा भूमि। कविताओं में मैं प्रेमिकाओं को बचाना चाहता था, दर्शन में उन्हें बचाना कपट था। भावनाएं जो थोड़ी बची थी वो बारों की तरफ सरक रहे जानवरों की तरफ भाग रही थी। इतिहास में उन्हें ढूंढा तो कई वृद्धाश्रमों में रो रही थी, कई कांप रही थी प्रसूति गृह में। कविताओं में ही उनको बचने की आशा थी और मुझे अक्सर लगा कि प्रेमिकाएं कमजोर कविताओं में भी बच सकती थीं। इस जीवन में पुनर्जन्म नहीं। रोज सोता हूँ सविनय कि सब कुछ भूल जाऊँ, लोग भी भूल जाएं, फिर से नाम रखे कोई, तेल हल्दी जाए फल हो। रोज सोता हूँ सविनय कि सब कुछ भूल जाऊँ, लोग भी भूल जाएं, फिर से नाम रखे कोई, तेल हल्दी जाए फल हो। मगर रोज उठता हूँ वैसे ही दांत का दर्द थोड़ा और बढ़ा हुआ। इस जीवन में पुनर्जन्म नहीं। रोज सोता हूँ सविनय कि सब कुछ भूल जाऊँ, लोग भी भूल जाएं, फिर से नाम रखे कोई, तेल हल्दी जाए फल हो। मगर रोज उठता हूँ वैसे ही दांत का दर्द थोड़ा और बढ़ा हुआ। पक्ष द्वितीय। पक्ष द्वितीय। वो जो लचकते चमकते लट्टू बिजली के, वो एक काटते हैं कालिमा करते मावस को छीणगात। या वे मात्र अंधेरे के चरण छूते हैं और पूर्णिमा सहती है अधिक गहरी चोट, ठहर जाती है चांदनी ऊपर आकाश में, नीचे लट्टुओं से चमकते मकान दुकान। वो जो लचकते चमकते लट्टू बिजली के, वे काटते हैं कालिमा करते मावस को छीणगात। या वे मात्र अंधेरे के चरण छूते हैं और पूर्णिमा सहती है अधिक गहरी चोट, ठहर जाती है चांदनी ऊपर आकाश में, नीचे लट्टुओं से चमकते मकान दुकान। कविता है एक रात बारिश। बारिश से रोशनी भींग रही है, रोशनी से बारिश भींग रही है। धरती पर गिर रही रोशनी को बारिश मथ रही है, गिर रहे जल को रोशनी मथ रही है। दूर खड़ा अंधियारा मुस्कुरा रहा है कि यह दुनिया खुली सराय है, इसमें कितना भी खिलो खेलो, एक दिन मेरे आंचल में गिर पड़ोगे। बारिश से रोशनी भींग रही है, रोशनी से बारिश भींग रही है। धरती पर गिर रही रोशनी को बारिश मथ रही है, गिर रहे जल को रोशनी मथ रही है। दूर खड़ा अंधियारा मुस्कुरा रहा है

0: यह दुनिया खुली सराय है, इसमें कितना भी खिलो खेलो, एक दिन मेरे आंचल में गिर पड़ोगे। एक कथा, इस कथा का कोई फल नहीं, इस कथा का कोई फल नहीं, अंत में जो बचता है पात्र उसे अपने संग कर लो। इस कथा का कोई फल नहीं, अंत में जो बचता है पात्र उसे अपने संग कर लो। उसने भी जितनी कथाएं सुनी हैं उनका कोई फल नहीं, इस संगी के साथ घूमो देश प्रदेश, देखो तो कितना दुख है कितना क्लेश। ऐसे में एक कथा का क्या फल मिलेगा। इस कथा का कोई फल नहीं, अंत में जो बचता है पात्र उसे अपने संग कर लो। उसने भी जितनी कथाएं सुनी हैं उनका कोई फल नहीं, इस संगी के साथ घूमो देश प्रदेश, देखो तो कितना दुख है कितना क्लेश। ऐसे में एक कथा का क्या फल मिलेगा। जल ज्यों कूप में डूब रहा, अपना जीवन अपने ही जीवन की छाया बन जाती है। नदी ने जैसे छेड़ दिया सहेज नासह नदियों का जल, छोड़ दिया हुलसकर समुद्र में वन्ना विराट, अपना है विस्तार बना रहा यह जीवन। टहनियाँ ज्योतने के गर्भ में ही अकुलाती, सोखता फूल अपनी सुगंध, रोकता प्राग कण का प्रसार। जब चला था तो एक चकमक था, जब चला था तो एक चकमक पत्थर था, आसन अग्नियों का गुच्छा, फिर कब बन गया आग का अवश गोला, खाता जाता अपना ही ताप और प्रकाश। अपना जीवन अपने ही जीवन की छाया बन जाती है। नदी ने जैसे छोड़ दिया सहेज नासह नदियों का जल, छोड़ दिया हुलस कर समुद्र में वन्ना विराट, अपना ही विस्तार बना जा रहा है यह जीवन। टहनियाँ ज्योतन के गर्भ में ही अकुलाती, सोखता फूल अपनी सुगंध, रोकता पराग कण का प्रसार। जब चला था तो एक चकमक पत्थर था, आसन अग्नियों का गुच्छा, फिर कब बन गया आग का अवश गोला, खाता जाता अपना ही ताप और प्रकाश। छाया, मुकुट की तरह परा रहता तो लोग सिर ढूंढते या ढूंढते उसे उचित कहते। मुकुट की तरह परा रहता तो लोग सिर ढूंढते या जो ढूंढते उसे उचित कहते। सिर नहीं मिलता तो पता करते किस सदी के राजा की है, कीमत कितनी होगी अब इसकी, कहाँ रखें कैसे रखें। मुकुट की तरह परा रहता तो लोग सिर ढूंढते या जो ढूंढते उसे उचित कहते। सिर नहीं मिलता तो पता करते किस सदी के राजा की है, कितनी कीमत होगी अब इसकी, कहाँ रखें कैसे रखें। पादुका भी होती तो पूछताछ होती, कहीं रखा जाता कहीं कोई बचाता धूल से। पादुका भी होती तो पूछताछ होती, कहीं रखा जाता कहीं कोई बचाता धूल से। मैं परछाई हूँ विशुद्ध वर्तमान भारहीन, मैं परछाई हूँ विशुद्ध वर्तमान भारहीन, लांगते लोग जा रहे भागते, भागती शाम रही आ रही इधर, रात आएगी और डूब जाऊँगा। मुकुट की तरह परा रहता तो लोग सिर ढूंढते या जो ढूंढते उसे उचित कहते। सिर नहीं मिलता तो पता करते किस सदी के राजा की है, कि कितनी कीमत होगी अब इसकी, कहाँ रखें कैसे रखें। पादुका भी होती तो पूछताछ होती, कहीं रखा जाता कहीं कोई बचाता धूल से। मैं परछाई हूँ विशुद्ध वर्तमान भारहीन, लांगते लोग जा रहे भागते, भागती शाम आ रही इधर ही, रात आएगी और डूब जाऊँगा।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ मनोज कुमार झा से। कुछ और काव्य रचनाएं सुनिए पप्पू राय से।
2: मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है अपराजिता। हर इंसान के दिल में बसने वाली अपराजिता होती है नारी, कोई कुछ भी कहे घर की लक्ष्मी होती है नारी। कभी ममता की मूरत कभी चंदा की सूरत, कभी माँ काली कभी माँ दुर्गा, समय समय पर अपना रूप दिखाती है नारी। अपने स्नेह के पावन धागे से सबको एक करती है नारी। हर इंसान के दिल में बसने वाली अपराजिता होती है नारी। खुद वक्त की धूप में जलकर अपने बच्चों को आंचल तले मीठी नींद सुलाती है नारी। खुश रहे सदा उनके बच्चे, यही दुआ करती है नारी। हर इंसान के दिल में बसने वाली अपराजिता होती है नारी। अप्रतिम जिसकी सूरत होती है वह होती है नारी। आसमान की परी हिमालय की गंगा, पूजने के काबिल होती है नारी। जिनका पूरा जीवन हो ग्रंथ, ऐसी पठनीय होती है नारी। कोख से लेकर गोद तक अपना फर्ज निभाती है नारी। घर की लक्ष्मी अपराजिता होती है नारी। हर इंसान के दिल में बसने वाली अपराजिता होती है नारी। नाम दुनिया में रहे वरदान उसको भी मिले, जो वतन पे मर मिटे सम्मान उसको भी मिले। नाम दुनिया में रहे वरदान उसको भी मिले, जो वतन पे मर मिटे सम्मान उसको भी मिले। कर रहा है आज जो सीता हरण का वाकिया, कर रहा है आज जो सीता हरण का वाकिया, अब सजाए मौत का फरमान उसको भी मिले।

हादसा क्यों दामनी, हादसा क्यों दामनी या निर्भया के साथ हो माँ भवानी की तरह, सम्मान उसको भी मिले, नाम दुनिया में रहे वरदान उसको भी मिले। दफन माँ की कोख में हो रही है बेटियाँ, दफन माँ की कोख में हो रही है बेटियाँ, जानकी के देश में स्थान उसको भी मिले, जानकी के देश में स्थान उसको भी मिले। कौरवों के राज में लाचार अर्जुन भीम है, कौरवों के राज में लाचार अर्जुन भीम है, चाहती है द्रौपदी भगवान उसको भी मिले, चाहती है द्रौपदी भगवान उसको भी मिले। कर्ज माँ के दूध का, कर्ज माँ के दूध का उसने चुकाया खून से, आ गया है वक्त अब पहचान उसको भी मिले, आ गया है वक्त अब पहचान उसको भी मिले। मेरी अगली कविता है, फिर किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, फिर किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, देर से ही सही मानसून दरवाजे पे खुद आई है, देर से ही सही मानसून दरवाजे पर खुद आई है। दस्तक दी है सर्द हवाओं ने, खिड़की खोल कर देखा तो बाहर चल रही जोड़ों की आंधी है, बूंदें टपक रही है नब से बादलों की इनायत है, फिर किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है। तपती धरती को चंद लम्हों में आराम मिला, विश्राम कर रहे मजदूरों को एक नया काम मिला। रोमांचक होते हैं जीवन के वो पल जब रोटी कपड़ा और मकान मिले, मन में उठती है कुछ उमंगें जब रिश्तों की बात चले, छटपटाता है फिर सारा जीवन अपनी जिम्मेवारी के बोझ तले। तब कहते हैं जवानी की मस्ती से बचपन के थे वो दिन भले, बचपन के थे वो दिन भले। खेत खलिहानों में नंगे पैर दौड़ना, संग दोस्तों के खेलना, मूसलाधार बारिश में नहाना, कागज का नाव चलाना, बहते पानी में चलाना, फिर पीछे पीछे दौड़ लगाना। काश लौट आए दिन बचपन के, दिल करता है घर आंगन में शरारत खुलेआम करूं, फिर किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, देर से ही सही मानसून दरवाजे पे खुद आई है। अगली कविता है, जमी है बंजर खामोश है अंबर, जमी है बंजर खामोश है अंबर, अहंकार भर चुका है मानव के अंदर, सूख रही है गंगा यमुना, सूख रही है गंगा यमुना, गहरा हो रहा है समंदर। ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है। प्रकृति से मुख मोड़ रहे हो अंजाम उसका भुगत रहे हो, प्रकृति से मुख मोड़ रहे हो अंजाम उसका भुगत रहे हो। ओजोन पर्वत भी सिमट रहा है, घातक किरणों का प्रहार सह रहे हो। ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है। वक्त है आखिरी अब संभल भी जाओ, वक्त है आखिरी अब संभल भी जाओ, अपने पौराणिक परंपराओं में ढल भी जाओ, नई पीढ़ी के लिए आदर्श प्रेरक बन भी जाओ, पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक कर इस समाज को एक मिसाल बन भी जाओ। वक्त है आखिरी अब संभल भी जाओ, ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है। आग बरस रही धरा पे, काट दिया जब खुद ही जंगल को, आग बरस रही है धरा पर, काट दिया जब खुद ही जंगल को, निगल गए खुद बादल को और खोज रहे सावन भादो को, निगल गए खुद बादल को और खोज रहे हैं सावन वादों को। ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है। सब तरस रहे हैं पानी को और खोज रहे हैं सावन वादों को, पहले जल जमीन जंगल की रक्षा, पहले जल जमीन जंगल की रक्षा, तब होगी संभव मानव की रक्षा। मानव जीवन का रंग ढंग प्रकृति के अनुकूल रहे, मानव जीवन का रंग ढंग प्रकृति के अनुकूल रहे, तब प्रकृति भी जीवन के अनुकूल रहे। जब तक श्रद्धा भक्ति और विश्वास रहे, मानव जाति कल्याण हेतु ब्रह्मांड भी तैयार रहे, मानव जाति के कल्याण हेतु ब्रह्मांड भी तैयार रहे। ऐ मानव क्या महसूस किया है तुमने, प्रकृति खुलकर अब क्या कह रही है। अगली कविता है, हर साल बारिश खुशहाली ही नहीं लाती, कभी कभी बदहाली भी लाती है, हर साल बारिश खुशहाली ही नहीं लाती, कभी कभी बदहाली भी लाती है। फूस के छप्पर से टपकता हुआ पानी, फूस के छप्पर से टपकता हुआ पानी, कहता है एक अभागन की कहानी, करता है उजागर बदनसीबी की कहानी, एक टूटी खटिया और पुरानी चटाई। फूस के छप्पर से टपकता हुआ पानी, भूखे पेट

0: दुखियारी को नींद कहाँ आती, भींग गई बासी रोटी और दिया सलाई, भींग गई बासी रोटी और दिया सलाई, पर वह स्वाभिमानी नहीं किसी को अपनी परेशानी बताती, पर वह स्वाभिमानी नहीं किसी को अपना परेशानी बताती, हर साल बारिश खुशहाली ही नहीं लाती, कभी कभी बदहाली भी लाती है। जवान बेटा खोकर शहीद की माता कहलाई, जवान बेटा खोकर शहीद की माता कहलाई, सरकार से मिली राशि पति के इलाज में गवाई, आखिर मौत को भी उस पर तरस न आई, अंधेरे में कुल के इकलौते चिराग नन्हे पोते को बरसाती ओढ़ाकर बारिश के कहर से बचाती, सीने से लगाकर सर्द हवाओं से छुपाती, मर गई थी माँ जिसकी अपने सुहाग की याद में, दुनिया वालों ने दादी पोते की खबर फिर बाद में नहीं ली, जवान बेटा खोकर शहीद की माता कहलाई। साल में एक बार विजय दिवस मनाने से, शहीद की माँ कहलाने से, चंद मेडल भावाही से, आंखों में चमक कहाँ आती है, बुढ़ापे में बिना हाथ जलाए पेट की ज्वाला कहाँ बुझ पाती है, बुढ़ापे में बिना हाथ जलाए पेट की ज्वाला कहाँ बुझ पाती है, जब साक्षात सेवा करने वाला ना रहे तो सारी दुनिया सारी दौलत फीकी पड़ जाती है, अपना अपना ही होता है, बुढ़ापे में ये एहसास होता है, शाम को चूल्हा फूक नहीं पाती, इसलिए बूढ़ी दादी बारिश की बूंदों के साथ साथ अपने आंसू बहाती है, कुछ हकीकत दुनिया में यूं ही गुम रह जाती है, फूस के छप्पर से टपकता हुआ पानी कहता है एक अभागन की कहानी। अगली कविता है अलविदा। अलविदा चुपचाप सबको कह गया, अलविदा चुपचाप सबको कह गया, कर्ज माँ के दूध का तो रह गया, मर्ज इतना बढ़ गया मासूम का, आखिरी दम तक तरपता रह गया, थाल में भरपूर रोटी दूध के, लोभ में हर तलख बातें सह गया, अलविदा चुपचाप सबको कह गया, है गनीमत गैर से मतलब नहीं, दर्द के सैलाब में खुद बह गया, देखकर हालात दानिश मौन था, फैमिली का एक खंभा ढह गया।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ पप्पू राय से। इसी के साथ साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कुसुमाकर दुबे के साथ अमलनाथ ठाकुर को दीजिए विदा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम साहित्यिकी का पूर्व प्रसारित अंक। ये आकाशवाणी दरभंगा है। हमारे अगले कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का थोड़ा इंतजार करें।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव 231.5 मीटर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गानों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,

तेरी मोहब्बत का जो एक हमको सहारा मिल गया, तेरी मोहब्बत का जो एक हमको सहारा मिल गया, कश्ती को तूफान में कोई जैसे किनारा मिल गया, पाजेब में कैसी खनक उतरा है कानों में शहद, पाजेब में कैसी खनक उतरा है कानों में शहद, किसकी ये मौसीकी है जिसमें सुर हमारा मिल गया।

0: पुराने सदाबहार फिल्मी नगमों की महफिल सजाने शुक्रवार की रात 10 बजे एक बार फिर आपके अपने ही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में शिरकत करने की गुजारिश लेकर आपका अपना ही संजय आपको दे रहा है आवाज। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब से लेकर 11 बजे तक इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं फोन के माध्यम से। नंबर हम बता देते हैं 9430029353 9430029353। 11 बजे तक का समय है इस कार्यक्रम का, फोन लगाइए, हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर आएगी आपकी फरमाइश किसी बहुत ही अच्छे सदाबहार फिल्मी गाने की। और देखिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले से ही हमारे बहुत से जो श्रोता है ना, वो फ़ोन के माध्यम से जुड़ने लगते हैं। किन्हीं का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, किन्हीं की आवाज़ ठीक से नहीं आती है, तो माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इस समय जो हमारे एक श्रोता फ़ोन लाइन पर बने हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो,
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं भैया?
1: हम शहाबुद्दीन बोल रहे हैं, नार मुंटोला से भैया।
0: कैसे हैं भैया शहाबुद्दीन जी, अच्छे हैं?
1: ठीक ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है। क्या बोलते हैं, आम के बागान में बैठे हुए हैं, बहुत हवा खा रहे हैं, गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा।
0: बारिश नहीं हुई क्या आज आपके इलाके में नार मुंटोला में?
1: नहीं भैया बारिश नहीं हुआ है हम लोग।
0: अच्छा, लेकिन बारिश की संभावना तो है, इम्कान तो है, हो सकता है कि बारिश हो, है ना? और मौसम पूर्वानुमान में तो बताया गया है कि दरभंगा ज़िले और मधुबनी ज़िले के इर्द गिर्द के ज़िलों में भी बारिश की संभावना तो इन दिनों बनी हुई है। मानसून की आमद हो गई है तो बारिश भी होगी ही। वैसे शहाबुद्दीन साहब
1: जी,
0: घर परिवार के लोग सब अच्छे हैं?
1: सब अच्छे हैं, बाल बच्चा ठीक है भैया। अब और अपना सुनाइए, आप ठीक हैं ना भैया?
0: हम भी बड़े मजे में हैं, और आपसे बात हो गई तो और अच्छे हो गए। शहाबुद्दीन जी बताइए, क्या फरमाइश है आज?
1: खुशी से रहा नहीं जा रहा है भैया, क्या बतावे। कॉल आज शुरू में कॉल इसलिए लगाए भैया कि मेरा कॉल लग जाएगा, ऐसे तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे भैया, एक महीना से कॉल नहीं लग रहा था।
0: शहाबुद्दीन जी, इंदौर से एक कॉल था, एक कॉल और भी थे, मतलब दो लोग लगातार जुड़ रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में ही, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर आपका कॉल आया है। क्या फरमाइश है ये बता दीजिए
1: भैया। आज हमको सुना दीजिए, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले दो घड़ी।
0: अच्छा, क्रांति फिल्म का गाना आप सुनेंगे, है ना?
1: जी भैया और एक और बात कहना चाहेंगे तो मेरे एक चचा है, आप तो जानते होंगे, वो भी कोशिश कर रहे हैं लगाने के लिए, और मेरे एक अकबर भाई है, वो भी कोशिश कर रहे हैं।
0: देखिए भैया, नाहर मन टोला जो है ना, हम समझते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रमों के प्रति जो आप लोगों का रुझान है, नाहर मन टोला के लोगों का, तो हम कैसे भूल सकते हैं भाई, कादिर अली साहब, साबिर परवाना साहब, शहाबुद्दीन साहब, और भी लोग हैं आपके नाहर मन टोला में भाई, है ना? और एक बात कह सकते हैं, नाहर मन टोला के लोग बड़े उस्ताद हैं कॉल लगाने में, इसमें हमें ये कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गुरेज भी नहीं है। ये बात तो है। क्रांति फिल्म का वो गाना सुनना चाहते हैं आप, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत है, है ना?
1: हाँ भैया मेरे एक अकबर भाई है, उसको कलकत्ता से आए, उसको सुनाना चाह रहे हैं खास करके।
0: अच्छा, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं। देखिए हम तो कहेंगे कि भाई जितने लोग इस गाने को सुने, बड़ा ही बढ़िया गाना है, और संतोष आनंद साहब के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, क्रांति फिल्म, और शहाबुद्दीन साहब नाहर मन टोला मधुबनी से उनकी ये फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू भैया, बहुत बहुत
0: बहुत धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद भैया,
0: सुना जाए।

0: शहाबुद्दीन साहब की फरमाइश थी भाई, और क्रांति फिल्म का ये गीत था। अब सुनते हैं कि अगली फरमाइश के साथ हमारे अगले श्रोता कौन है। जी नमस्कार। हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नाहर मंतोला जिला मधुबनी बिहार के।
0: साबिर भाई, अभी मैंने शहाबुद्दीन जी को कहा कि देखिए नाहरमन टोला से जो है ना आकाशवाणी दरभंगा का लगाव इतना ज़्यादा है कि अक्सर वहाँ से लोग फ़ोन लगा लेते हैं। साबिर परवाना साहब हैं कहाँ? आप नाहरमन टोला में हैं या कहीं अपनी मतलब कर्मभूमि?
1: दो तारीख को आ गए दिल्ली।
0: अच्छा, तो अभी आपने दिल्ली से फ़ोन लगाया है ना?
1: जी जी।
0: हाँ, लेकिन शहाबुद्दीन साहब तो नाहरमन टोला से थे। कैसे हैं साबिर भाई, दिल्ली आ गए आप? कितने दिनों पर आए हैं? देखिए घर द्वार छोड़ के आना तो बड़ा थोड़ा दुखदाई तो होता है ना? हाँ, अपने कुटुंब को छोड़कर अपने घर परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, अपने दोस्त है ना, दोस्तों को छोड़कर आना।
1: हाँ,
0: लेकिन अब रोजी रोटी है तो रोजी रोटी के लिए तो लोगों को जाना पड़ता है, ये तो बात सही है। और सब लोग अच्छे हैं? बढ़िया है। आपने अपने अपना काम ज्वाइन कर लिया फिर से दोबारा से, जहां आप काम कर रहे थे?
1: जी जी, 3 तारीख से।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कैसे गए आप दिल्ली? आपने कहा कि 2 तारीख को चला गया था, 3 को आपने ज्वाइन कर लिया।
1: 1 तारीख को वाली गाड़ी पकड़े, 2 तारीख को दिल्ली उतरे।
0: अच्छा अच्छा, ये बात तो है। तो साबिर साहब, आज क्या फरमाइश है, क्या सुनवा दें आपको, ये बताइए।
1: आज बरसात का गाना सुना दीजिए, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का।
0: बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा गीत है भाई। रमेश शास्त्री का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। लता मंगेशकर की बड़ी मधुर आवाज है और बड़ा अच्छा गाना है। मौसम के मुताबिक भी है, थोड़ा हवा में उड़ता जाए, बरसात है फिल्म का नाम। तो
1: अगर
0: अच्छा अच्छा हाँ भाई, देखिए मानसून को लेकर जो बरसात के गीत है ना, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं मौसम के मुताबिक, है ना? ये तो बात है। तो देखिए पुराने फिल्मी गानों की जहाँ तक बात है साबिर भाई, तो हर मूड के गाने आप देख ले कि जीवन में, जीवन के जितने पहलू हैं उन कहानियों पर फिल्में बनती थी पहले। और दिल को छू जाने वाली कहानी, दिल को छू जाने वाली वाले बोल, है ना? और ऐसे ही गीत भी और ऐसा ही संगीत भी। बहुत अच्छी फरमाइश आ गई है, सुनवाते हैं साबिर परवा।

0: ना भाई, लेकिन ये कहते हुए सुनवाते हैं कि आज नाहरमन टोला से शहाबुद्दीन और फिर लगातार दूसरा ही कॉल साबिर परवाना साहब का दिल्ली से, लेकिन रहने वाले तो नाहरमन टोला से।
1: कादिर अली का भी आ जाए?
0: नहीं भैया, हम तो कहते हैं कि अगर कादिर अली साहब का भी फोन आ जाए या आ गया तो समझिए कि हमारी तो बाकी जो श्रोता है ना, वो उनके मन में दूसरे तरह के भाव आने लगेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिनका भी कॉल आता है हम रिसीव करते हैं और वो शिरकत करते हैं। हम किसी को रोकते नहीं, हम किसी को टोकते नहीं। दिल की बात है, कार्यक्रम दिल से दिल तक का ये सफ़र है, और जिनका फ़ोन लग जाता है तो लग जाता है। लेकिन हम ये
1: ज़रूर
0: जी बोलिए,
1: जैसे कादिर का कॉल लग गया तो हम जब हम करते हैं तो परवाना जी अभी तो आप कॉल किए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: नहीं सर, मेरा भाई था वो।
0: ये बात है। लेकिन और भी हमारे श्रोता जो है ना, जिनका फोन नहीं लग पाता है ना, कभी कभी उनके लिए भी जगह देनी चाहिए, ये भी बात है। जरूर, ठीक है,
1: विराम दीजिए बात को, गाना सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, विराम देते हैं और गाना शुरू करते हैं, मतलब गाना सुनवाना शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं और हमेशा सुनवाते हैं पुराने सदाबहार नगमे। और अब देखते हैं कि हमें जो कॉल किया है ये हमारे श्रोता कौन है और कहां से बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: नमस्कार सर जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।

0: जी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, जरा बता दें।
1: चांद अधूरा है चांदनी के बिना, आसमान अधूरा सितारों के बिना, और हम अधूरे आकाशवाणी दरभंगा के बिना।
0: अच्छा अच्छा, कौन साहब हैं?
1: मोहम्मद रफीक मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से।
0: रफीक, मोहम्मद रफीक।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: पालदा नाका इंदौर।
0: कहाँ से, आपकी आवाज कट जा रही है।
1: पालदा नाका इंदौर से।
0: इंदौर से बात कर रहे हैं आप, है ना?
1: क्या हाल चाल है सर?
0: बिल्कुल दुरुस्त है, बढ़िया है। आप कैसे हैं ये बताइए।
1: जी हम भी बहुत ठीक
0: है। अच्छे हैं
1: जी, जी जी।
0: तो साहब, इंदौर की बात कर रहे थे ना आप, है ना?
1: हाँ,
0: भाई देश में सबसे साफ सुथरा शहर है और वहाँ के रहने वाले हैं रफीक साहब, है ना? अच्छा, वहाँ के रफीक साहब, इंदौर में सफाई को लेकर क्या लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता है ना? लोग बहुत जागरूक है सफाई।
1: हाँ,
0: अच्छा अच्छा,
1: निखार आ जाता है अगर अपन बाहर को भी अपना ही समझेंगे।
0: अच्छा, ये बात है ना,
1: अपने घर के एरिया को अपन समझते हैं, उसी तरह बाहर के एरिया को भी अपना ही समझना।
0: देखिए, कई जगह तो लोग हैं ना सफाई को लेकर के समझते हैं कि सरकार का काम है, हमारा काम है ही नहीं, है ना?
1: नहीं नहीं, काम अपना ही है।
0: सही बात है। तो और कई बार तो लोग क्या करते हैं कि घर की गंदगी जो है ना, वो घर से निकाल के सड़क पे यत्र तत्र फेंक दिया करते हैं। मतलब एकदम से कोई जगह कूड़ेदान का भी इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, वो भी नहीं करते। ये समझते हैं कि चलो भाई, हमने तो ये काम कर दिया, अब जाने। ये बात है। क्या सुनवा दें रफीक साहब आज?
1: ये लाल बंगला फिल्म का गाना है, जान को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चक्कर।
0: किस फिल्म का?
1: लाल बंगला।
0: लाल बंगला, यही तो हम थोड़ा सा, लाल बंगला का ये गाना है, उषा खन्ना का लिखा, नहीं इंदिवर का लिखा है, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है ये।
1: अच्छा
0: जी जी, हम कोशिश करते हैं कि ये गीत आप तक पहुंचा दें, और कोशिश करने वालों की हार तो होनी नहीं चाहिए, ये तो बात है। ठीक है, लाल बंगला थोड़ा खोज तो ले कि ये गीत है कहाँ। चांद को क्या मालूम, मुकेश साहब की आवाज़ है, ठीक है ना? ठीक है रफीक साहब, आपकी फरमाइश हम पूरी किए देते हैं, लाल बंगला का ये गीत आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहते हैं कि रफीक साहब दोबारा भी शिरकत करें इस कार्यक्रम में, हेलो आकाशवाणी, है ना?
1: जरूर करेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी नमस्कार।
0: हेलो
1: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
0: हमारा भी आपको नमस्कार
1: जी नमस्कार, बताया जाए कौन बोल रहे हैं?
0: सर। सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ सर।
1: मुकेश कश्यप साहब, कैसे हैं ये
0: जी
1: बताइए।
0: सर
1: बढ़िया हैं।
0: जी सर, हम बहुत अच्छे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, छत पर बैठे हैं और आपका
1: अच्छा,
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं सर।
1: तो मौसम भी ऐसा है, मौसम भी अच्छा है और
0: जी सर,
1: कार्यक्रम भी अच्छे से पहुंच रहा है ना आपके पास।
0: हम आपका प्रोग्राम मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे हैं सर, रेडियो तो नहीं पहुंचा हमारे यहाँ।
1: हाँ, ये तो है, मीडियम वेव पे जो ट्रांसमिशन है उसकी जो पहुंच है बहुत दूर तक तो नहीं होती है, लेकिन ऐप के आ जाने से ये माध्यम बड़ा सशक्त हो गया है और हर हाथ
0: क्लियर
1: में।
0: आवाज आ रही है सर।
1: बिल्कुल सही बात है। मुकेश कश्यप साहब, क्या करते हैं आप?
0: सर हम खेती बाड़ी भी करते हैं और सर मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी चलाता था
1: अच्छा, चलिए बढ़िया बात है।
0: सर। प्रोग्राम
1: क्या फरमाइश है, आज क्या सुनवा दें आज प्रोग्राम में आपको?
0: आपसे इनकी जिंदगी में मोहब्बत करी थी
1: लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है,
0: सर।
1: शाहिर के बोल हैं और रवि का
0: नाम बोल
1: संगीत
0: सकते
1: है।
0: हैं,
1: जी सर जी, नहीं
0: नाम बोल सकते हैं सर।
1: डेडिकेशन तो हमारे यहाँ से बंद है, लेकिन हम चाहते हैं और हम समझते भी हैं कि मुकेश कश्यप साहब को चाहने वाले जानने वाले जितने भी लोग हैं वो इस गाने को सुने जरूर, है ना?
0: सर एक संदेश दे दे, संदेश सर
1: हाँ बिल्कुल, संदेश तो दे ही सकते हैं, बस डेडिकेशन बंद है।
0: मेरे सर, संदेश मेरा ये है सर, जैसे
1: जी
0: बरसात चल रही है तो रात में जो पानी पीने के लिए उठते हैं या शौचालय के लिए उठते हैं तो
1: बिल्कुल।
0: सर उठने से पहले हाथ में टॉर्च और पैरों में चप्पल जरूर रखेगा।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुझाव है और बढ़िया सुझाव है ये। बरसात के दिनों में, ऐसे भी रात में जब अंधेरा हो, जब हम जगते हैं उठते हैं किसी भी कार्य से, तो रोशनी बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? जब भी पांव नीचे करें तो पहले।
0: मैं खुद उठता
1: हाँ
0: हूँ सर, पानी पीने भी उठता हूँ और शौचालय के भी लिए उठता हूँ तो मैं सबसे पहले चप्पल पहनता हूँ
1: सही
0: तो
1: बात
0: जाता
1: है।
0: हूँ जो बाहर में जाता हूँ।
1: और ये बड़ा दुखद होता है ना मुकेश कश्यप साहब की,
0: जी
1: सर्पदंश हो जाए, कीड़े मकोड़े काट लें और जो
0: जी
1: विषैले सर्प होते हैं ना वो, उसको लेकर के लोग गांव घर में झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं और जो कीमती समय, जो जरूरी समय इलाज के लिए होना चाहिए वो गंवा बैठते हैं। तो ये भी
0: जी
1: बातें
0: सर,
1: पहले
0: ये
1: तो
0: दिक्कत जो आती है बरसात के मौसम में आती है ज्यादा सर।
1: बिल्कुल ज़्यादा होता है, गर्मी के मौसम में भी होता है, लेकिन बरसात में चूंकि बिलों में जो पानी भर जाने की वजह से वो अपना आश्रय ढूंढते हैं और घरों की तरफ, फिर चूहे की तरफ उनका रुझान होता है। तो बिल्कुल सही सही बात है आपकी तरफ से ये मशविरा, है ना? तो लोग ध्यान दें कि बिना रोशनी के बाहर न निकलें और अंधेरे अंधेरे में तो चले ही नहीं, और चप्पल हो पैर में तो बेहतर है, होना ही चाहिए, लेकिन जब भी उठें रात में तो बिना रोशनी के नहीं। और कई लोग तो शौच के लिए जब निकलते हैं बाहर ना, तो अक्सर देखा जाता है कि शौच के समय, बाहर निकलते समय या शौच के समय ही सर्पदंश की घटनाएं ज़्यादा होती है, खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, देहात के क्षेत्रों में। तो कहना यही है कि अगर कभी सर्पदंश हो दुर्भाग्य से, तो सीधे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें जहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था है, उसका लाभ उठाएं। मुकेश कश्यप साहब, देखिए बातें जी। हेलो, हाँ बढ़िया संदेश है, आपको धन्यवाद हम देते हैं अच्छे संदेश के लिए और अच्छे से गाने के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। गीत की जो फरमाइश आ गई है ना आखिर फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, सुनवाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते।

मुकेश कश्यप साहब की फरमाइश थी और आंखें फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, पुराने फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम है। आपकी फरमाइश पर हम कोई पुराना फिल्मी गाना पेश करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए जो फ़ोन नंबर है वो हम आपको बताते हैं 9430029353 9430029353। कार्यक्रम का समय 11 बजे तक का है और हमारे एक श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं, लेकिन उनसे गुजारिश करते हुए, आग्रह करते हुए कि बस एक मिनट का समय दें ताकि हम एक कार्यक्रम संबंधी सूचना अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। श्रोताओं, कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति।

0: विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 06272224 81, 06272222481 और दूसरा नंबर 9430029353 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी का विषय याद रखिए, युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य। विशेषज्ञ प्रोफेसर बुढ़ेश्वर यादव और प्रसारण का समय इसी रविवार 12 जुलाई को दिन के 11 बजे। ये सूचना समाप्त हुई, लेकिन अब सुनते हैं कि हेलो आकाशवाणी में ये जो वाणी है, ये जो आवाज़ है, वो हमारे किस श्रोता की है। जी नमस्कार, हेलो।
1: हेलो, नमस्ते नमस्कार संजय भाई, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, नमस्ते नमस्कार हमारी तरफ से भी आपको, लेकिन नाम बता दीजिए कौन है।
1: जी मैं मिथिलेश कामत बोल रहा हूँ, ग्राम भैयापट्टी बासोपट्टी जिला मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: मिथिलेश कामत जी
1: आपका पुराना श्रोता।
0: बिल्कुल पुराने श्रोता हैं और आवाज की खनक बता रही है कि आप कितने खुश हैं। है ना,
1: खुशियों से भर उठता है सर
0: एकदम से। खनक आपकी आवाज की जो खनक है ना, वो बता रही है कि मिथिलेश भाई एकदम खुश हैं और आपके साथ हम भी खुश हैं। क्या सुनवा दे मिथिलेश कामत जी आज हेलो आकाशवाणी में?
1: आपका आवाज के हम लोग एकदम कायल है सर, इतना अच्छा आवाज, विविध भारती जैसे बोलते हैं आप, विविध भारती आपको होना चाहिए सर।
0: भैया विविध भारती नहीं, सारी भारती मतलब सब कुछ तो आप है, श्रोता है आकाशवाणी दरभंगा। सुनने वाले हमारे जो श्रोता है ना, बस समझिए बस उन्हीं का कार्यक्रम है, उन्हीं की आवाज है। हमारी आवाज कुछ नहीं है भाई, आपकी आवाज मिल जाती है तो ये अंदाज जो है वो सामने आ जाता है आपके सामने। फरमाइश बतला दीजिए मिथिलेश कामत जी। और बता देते हैं ना कि हम जब मेरी तारीफ होती है ना, कोई एकदम सामने से तारीफ करते हैं तो हम थोड़े असहज हो जाते हैं भैया। ये अच्छी बात है,
1: लेकिन मनोरंजन हमारा रेडियो है सर, अभी भी रेडियो से सर सुन रहे हैं प्रोग्राम।
0: बिल्कुल, रेडियो जो है वो किसी कार्य में बाधक नहीं होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो करते रहिए, रेडियो भी चलता रहेगा, वो भी सुनते रहिए, है ना। लेकिन
1: हम लोग 16 रेडियो सर बदल चुके हैं, ओहो, रेडियो रखे हुए हैं सर, जवान रेडियो।
0: देखिए आपने इतने सारे रेडियो सेट बदल लिए हो, लेकिन आकाशवाणी दरभंगा को आपने नहीं बदला, तो हम तो आपके शुक्रगुजार हैं भाई। मिथिलेश कामत जी एकदम, ये मोहब्बत और ये प्यार, ये जो प्रेम है ना, वो बना रहे, हम यही चाहते हैं। और कार्यक्रम के प्रति जो आपका लगाव है, वो आपकी आवाज़ में खनक जो है वो चली आती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मिथिलेश कामत जी क्या सुनवा दें आज, फरमाइश बता दीजिए।
1: सर फिल्म का नाम है महबूब का मेहदी और गाने का बोल है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द लिया करते हैं सर।
0: देखिए भाई,
1: मंगेशकर जी का आवाज है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आनंद बख्शी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, महबूब की मेहदी फिल्म का नाम है, मिथिलेश कामत जी की फरमाइश है। और इतने प्यारे गीत, इतने अच्छे गीत की जब फरमाइश आ जाती है तो हम भी बड़े बड़े खुश होते हैं भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है।
1: पुराने गीतों का सर मैं बहुत शौकीन हूँ, नया से पुराना ज्यादा हम लोग सुनते रहते हैं, हमेशा संगीत सर चलता ही रहता है, जिंदगी में हमारा पार्ट बन गया सर।
0: तो सुनवाते हैं बगैर देर किए हुए मिथिलेश कामत जी महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: नमस्ते नमस्ते,
0: वेरी गुड नाइट
1: सभी श्रोताओं को, सादर नमस्कार
0: आपको भी।

0: हेलो हेलो।
1: नमस्कार भैया।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं कादिर अली बोल रहे हैं, नाहर मंटोला जिला मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: देखिए भाई, कादिर अली साहब आ ही गए आप कार्यक्रम
1: जी
0: में, है ना। देखिए आज तो भाई नाहर मन टोला वालों की तो बनाई है। शहाबुद्दीन साहब आए, फिर दिल्ली से नाहर मन टोला के रहने वाले साबिर परवाना साहब, जो आपके भाई साहब है संभवतः, वो तो आ गए। और उस समय चर्चा हो,
1: अधिकार
0: उन्होंने चर्चा की थी कि कादिर भी ट्राई कर रहे होंगे और आप भी पहुंच ही गए। देखिए लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। हाँ लग गया, ये तो बात सही है, लेकिन जो बाकी लोगों के दिल पे लगी होगी बात कि भाई ये नाहरमन टोला वाले कौन सी जुगत जानते हैं कि फोन लगा लेते हैं और हम लोग

0: एकदम से इंतज़ार करते रह जाते हैं, प्रयास करते रह जाते हैं कादिर अली साहब। चलिए जल्दी से फरमाइश बता दीजिए, हम आपको तो कहेंगे नहीं। हाँ कहिए ना।
1: प्रयास करने पर हार नहीं होती है, ये भूल लीजिए आप।
0: ये तो बात सही है, ये हम बार बार बताते हैं अपने सुनने वालों को कि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। हाँ ये बात अलग है कि कई बार आदमी लगातार प्रयास करने की वजह से ऊब जाते हैं, खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हमने तो इसी कार्यक्रम में कई लोगों से सुना है कि उन्होंने अपने रेडियो तक पटक दिए हों। ये भी वादे गुस्से। चलिए कोई बात नहीं, आपने लगाया, कॉल लगाया, आप
1: छोड़ देंगे तो नहीं लगेगा तो।
0: सही बात है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कादिर अली भाई इस कार्यक्रम में लग गया है, तो आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि अगले अंक में जो है ना मंडे को, सोमवार को थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा भाई हमारे अन्य भाई साहब सबको, है ना, तो उससे बेहतर है ना। क्या सुनवा दें कादिर अली भाई, क्या सुनवा दें?
1: सिंदूर फिल्म का सुना दीजिए।
0: सिंदूर फिल्म का कौन सा गाना?
1: कौन गाना है उसमें सिंदूर फिल्म में?
0: बहुत सारे गाने हैं, नाम सारे
1: सुना दिए, नाम सारे मुझे
0: भूल जाने लगे। और भी गाने हैं, पतझड़, सावन, बसंत बहार, एक मौसम,
1: कौन सा नाम सारे मुझे भूल जाने लगे।
0: अच्छा, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और कादिर अली भाई साहब की फरमाइश है। देर नहीं करते हैं, सुनवाते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: सिंदूर फिल्म का ये गीत कादिर अली साहब की फरमाइश पर थी। और अब सुने कि कार्यक्रम के आखिर तक आते आते ये कौन हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो।
1: नमस्कार सर। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राम पट्टी बिहार से।
0: कैसे हैं शुभ नारायण महतो जी? अच्छे हैं
1: जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हूँ सर। अभी तो मौसम हो गया है, से जो गर्मी का मौसम में पूरा गर्म मौसम सही हो गया है अभी फिलहाल।
0: देखिए मौसम अगर बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन धान की फसल अगर एकदम से हरियाली छा जाए तो, और धान के खेत में पानी आ जाए, तब समझिए कि मौसम की रवानी आ गई, ये बात है ना। लेकिन एक बात शुभ नारायण जी एक बात कहूँगा, अक्सर आपका फ़ोन जो है ना एकदम आखिर में आके लगता है भाई। अब बताइए, हम आपकी फरमाइश लें, आपसे बातें करें कि गाना सुनवाएं, आपकी फरमाइश पर ये बता दीजिए। मन तो होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत और हालचाल पूछ ही लेते हैं, लेकिन समय बिल्कुल कम है, जल्दी से बताइए कौन सा गाना प्ले कर दें। चलिए अच्छी बात है, फरमाइश बता दीजिए जल्दी से।
1: आज मुझे फिल्म समझौता का गीत सुना दीजिए, मोहम्मद रफी और मुकेश साहब के स्वर में।
0: बड़ी दूर से आया हूँ शुरू।

0: गाना बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये गाना पहुंचे जहां तक पहुंचे, है ना। अच्छे गाने की फरमाइश आपने दी है शुभ नारायण महतो जी, आगे भी कॉल लगाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है,
1: धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ हेलो आकाशवाणी के आज के अंक से हम आपसे विदा चाहेंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
3: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
4: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं

0: तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज़ वेल।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Sayoi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
1: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the